करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से

0: बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियां बहुत प्रचंड रूप अपना ले चुकी हैं। बारिश भी है, लेकिन गर्मियों ने अपना पूरा प्रारूप दिखाई दिया है। तो आइए, गर्मियों में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो कि हम हमेशा से आपके लिए लेते आए हैं और आपको बताते आए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि गर्मियों में हम अपने आप को कैसे हाइड्रेट रखें, हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें, हम अपने मूड को किस तरीके से अच्छा रखें। तो सबसे पहले तो जितना हम सर्दियों में खा लेते हैं, पी लेते हैं, वही उसका जो असर है ना, वो गर्मियों में निकलता है। मैं बताऊं कैसे। सर्दियों में हम जितना गर्म चीजों का सेवन करते हैं, उसी का असर उतनी ही स्वेटिंग हमें गर्मियों में होती है। लेकिन गर्मियों में हमने जितना पानी पी लिया होता है, सर्दियों में अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं तो काम चल जाता है। आपने एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे आपने ऊंट के बारे में सुना होगा, ऊंट को कहा जाता है कि वो 1 महीना लगातार पानी पीने के बाद में वो 3 महीने पानी नहीं पीता है। यानी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 3 महीने तक उस पानी को स्टोर करके अपने अंदर रह सकता है। इसीलिए उसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ठीक ऐसे ही हम मनुष्यों में भी ये चीज पाई गई है। सर्दियों में अधिकतर लोगों को प्यास कम लगती है, सर्दी के कारण से या फिर ज्यादा ऑयली खाने से। लेकिन गर्मियों में जस्ट इसका अपोजिट होता है। पानी की प्यास बहुत लगती है, पसीना हमारे बॉडी से निकलता है। इसका मतलब होता है कि हमें पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो जो हमने खाया होता है गर्मियों में गर्म चीजें, वो पसीने के रूप में निकलती हैं। लेकिन जो हमने पानी पिया होता है, वही पानी स्टोर हो करके हमें सर्दियों में हाइड्रेट रहने के लिए काम में आता है। इसीलिए गर्मियां हैं तो पानी का महत्व आज हम आपके लिए बताने आए हैं। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में पसीने के रूप में बहुत सारा पानी और खनिज तत्व जैसे मिनरल बाहर निकल आते हैं। ऐसे समय में पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं होता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन जाता है। योग और सही मात्रा में पानी का सेवन मिलकर शरीर को अंदर से संतुलित रखते हैं। जैसे शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए ये सबसे ज्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा से थकान, कमजोरी एंड डिहाइड्रेशन होता रहता है, उसके लिए पानी पीना अति आवश्यक हो जाता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जरा सा कुछ हैवी खा लिया, जरा सा कुछ ऑयली खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो गर्मियों में पानी कम और खाना ज्यादा खाते हैं। पाचन तंत्र को हमेशा से बेहतर बनाने के लिए भी पानी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है हमारी स्किन हमेशा से जवा रहे, हम 45, 46, 47 की एज में भी 25 की लगे, तो उन महिलाओं को भी पानी की मात्रा को अपने जीवन में बढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारी स्किन में निखार और ताजगी हमेशा बनाए रखता है। मांसपेशियों और जोड़ों के सही कार्य में ये सहायक होता है। अब आते हैं योग के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाने रखने के लिए भी पानी का महत्व। योग को करते करते यदि हमें प्यास लग जा रही है, योगा को करते करते अगर हमें बीच में पानी की प्यास लग जा रही है, तो थोड़ा सा विश्राम करके हम पानी ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि योग के साथ साथ पानी को भी हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। योग करने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, एंड योग के तुरंत बीच में पानी बिल्कुल न पिए, थोड़ा सा बचे। योग समाप्त करने के बाद धीरे धीरे पानी पिए। बहुत ठंडा पानी तुरंत पीने के बजाय सामान्य तापमान का पानी बेहतर रहता है। गर्मियों में हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक छोटे से योगासन है, जिसको करने से साथ ही साथ हमें पानी को पीने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। पूरे शरीर का व्यायाम एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से हो जाता है। शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ाता है। दूसरा आता है ताड़ासन। शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। उसके बाद आता है भुजंगासन, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में सहायक होता है। और उसके बाद आता है वज्रासन, भोजन करने के बाद किया जाने वाला सबसे आसान यह आसन होता है जो पाचन में मदद करता है। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हमने आपको कई बार बता के रखा है कि मन को शांत करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। शीतली प्राणायाम, जो बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा आवश्यक होता है गर्मियों में, जिसको करने से गर्मी में शरीर को ठंडक और मानसिक शांति देने वाला यह प्राणायाम माना जाता है। सुबह उठकर सामान्यता से पानी पिएं, फिर हल्का योग और प्राणायाम करें, ये एक स्वस्थ दिनचर्या होती है। दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी लेते रहें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, प्यास, थकान, कमजोरी। यदि आपको याद न रहे तो थोड़ा सा अपने लिए सचेत हो जाएं, यानी कि टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी शरीर की जरूरत है और योग शरीर व मन का संतुलन, दोनों का साथ गर्मियों में हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और प्रसन्न बनाए रखता है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के लिए हम फिर से मिलेंगे एक नए योग सीरीज में। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की उपाशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए, जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें, योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं, फल सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें, जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए, हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें, तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

जी हाँ। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग घोड़ा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है, नमन है और वंदन है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशलीट 9.6 FM। यह है गोड़ा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग घोड़ा। तो सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई अधिष्ठान सविता जी, सुप्रभात आपको भी। और इसके पश्चात वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये गीत आपको पसंद आया जी। तो गुड मॉर्निंग, अच्छा मॉर्निंग को गुड कैसे किया जाए? सबसे बड़ी बात तो ये होती है भाई कि हमारी जो मॉर्निंग होने वाली है वो अगर गुड हो जाए तो वास्तव में पूरा दिन अच्छा हो जाता है। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने किसी काम को अच्छे ढंग से शुरू कर दिया तो इसका मतलब आधा खत्म कर दिया। और यही हमारे दिन के साथ भी होता है, मतलब हमने अगर दिन की शुरुआत शानदार तरीके से कर दी, समझिए कि आधा काम हमने कर दिया। तो क्या कुछ कर सकते हैं हम सुबह अपनी मॉर्निंग को खास बनाने के लिए? उठते ही क्या कर सकते हैं, किन किन पहलुओं पर हमारी नज़र जानी चाहिए, उन सब पर बात करेंगे। जी हाँ, आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की, आज के सुविचार हमारे क्या हैं उसकी बात करेंगे, गीत की बात करेंगे, संगीत की बात करेंगे, दुनिया की जहान की बात करेंगे, उस परमपिता परमेश्वर की, भगवान की, जी इन सब पर बात करेंगे आप सभी से। और आइए अब हमारे साथ सचिन शुक्ला जी हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत सुप्रभात आपको भी। और प्रीति शुक्ला जी बहराइच से हैं। मनोज सर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीति बहन जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी होंगी जी। तो चलते हैं थॉट ऑफ द डे की तरफ। सबसे पहले जिंदगी, जीवन, हयात, जो कुछ आप कहें, अगर कोई पूछता है कि जीवन क्या है तो मेरा उत्तर होता है कि लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू अस। 10% जिंदगी वो है कि हमारे साथ क्या होता है, एंड 90% ऑफ हाउ वी रिएक्ट टू इट। और 90% जिंदगी वो है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, वो घटेंगी, यू कैन नॉट प्रिवेंट देम, आप उनको रोक नहीं सकते, लेकिन आप रिएक्ट कैसा करते हो, आपका रिएक्शन कैसा होता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये डिफाइन करती है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी जी। तो

हो गई। अब 90% में बात यह है कि आप कितनी देर गिरे रहना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप 5 सेकंड गिरे रहें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, या फिर उठना ही न चाहे। तो जिंदगी 10% वो है जो आपके साथ घटित होती है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं। वो होना है, वो होकर रहेगा। व्हाट विल बी, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण आपका किस पर है? आप रिएक्ट कैसा कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो घटनाएं नहीं महत्वपूर्ण होती जिंदगी में, प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ, इस मुद्दे पर आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं भाई, सुबह का समय है। तो हमारे साथ विशाल बेदर्जी जी भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मनु जी। गुड मॉर्निंग आपको भी। और चलिए, सुबह है तो क्यों ना सुमिरन के साथ, प्रभु के सुमिरन के साथ आज के कार्यक्रम को अब करते हैं शुरू। जी हाँ, सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपका दिन हो सके बहुत खास। जी हाँ, लेकिन पहले ये प्यारा सा भजन आप सभी के लिए।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन वंदन नमन स्वागत और वंदन। बढ़ते हैं जिंदगी की तरफ और आज बात करते हैं जिंदगी के कई सारे पहलू होते हैं और उन कई सारे पहलुओं में अपने आप को बचाना, विषम परिस्थितियों से अपने आप को निकालना और फिर से खड़े हो जाना, ये शायद एक अच्छा लम्हा होता है। और यहाँ पर अगर दुनिया में लोग आए हैं तो हर इंसान चाहता है कि वो प्रगति करे, तरक्की करे। अच्छा, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इंसान प्रगति करता है, प्रोग्रेस करता है, तरक्की करता है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत सहारा उसे किस्मत का भी चाहिए होता है। कहीं कहीं आपने महसूस किया होगा कि 99% तक काम हो गया, जो आपका काम था उसमें आपने अपना 100% दिया, लेकिन 1% कहीं ना कहीं तकदीर हल्की सी रूठी और सफलता थोड़ी सी दूरी पर रह गई। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। वो बात है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। तो अगर आप भीड़ का एक हिस्सा बने हुए हैं तो शायद रास्ता मुश्किल होगा आपके लिए। आपको अपने रास्ते थोड़े से अलग करने होंगे। कहा जाता है, हिंदी कहती है कि लीक लीक ती नहीं चले, कायर कूत कपूत, और बिना लीक ती नहीं चले, शायर सिंह सपूत। तो जो बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं वो तीन लोग हैं, कायर डरपोक, कूत मतलब कुत्ता, और कपूत मतलब बुरा बेटा। और बिना लीक ती नहीं चले, जो अपने रास्ता खुद बनाते हैं, वो कौन से लोग हैं? शायर कवि। वो देखता है जो उसके पहले किसी ने नहीं देखा, सिंह शेर। कभी भी वो दूसरों के बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता, दैट्स व्हाई ही इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। और तीसरा सपूत, अच्छा बेटा। तो अगर हम भीड़ का हिस्सा बने हैं और चाहते हैं कि कामयाब हो जाएं तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं एक कविता पढ़ता हूँ जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बहुत अच्छे अमेरिकन पोएट है। तो जो कवि है वो एक रास्ते पर चलते हैं और वो रास्ता आगे चलकर दो तरफ मुड़ जाता है, डायवर्जन है। तो एक तरफ देखते हैं कि पत्तियां ज्यादा हैं मतलब इस पर कम लोग गए, इसलिए उस रास्ते पर पत्तियां अधिक हैं। सबकी हिम्मत नहीं हुई, कठिन रास्ते को वैसे भी कौन चुनना चाहता है। और दूसरा रास्ता वो है जिस रास्ते पर पत्तियां कम है, मतलब इस पर ज्यादा लोग गए। आप जहां पर चलते हैं तो वहां की घास कुचली हुई होती है, दबी हुई होती है, और जहां नहीं चला गया वहां पर देखिए घास ज्यादा जमी रहती है। तो जिस रास्ते पर पत्तियां ज्यादा हैं मतलब वहां पर कम लोग गए हैं, इसलिए पत्तियां ज्यादा हैं। और जिस रास्ते पर पत्तियां कम हैं, जो आसान रास्ता है,
उस पर पत्तियां बहुत कम है। तो कभी खड़ा होकर के सोचते हैं, सोचता है कि क्या करना चाहिए, किस रास्ते की तरफ बढ़ें। ये रास्ता है जो थोड़ी सी कठिनाई भरा है, मुश्किलात हैं, इनमें समस्याएं हैं, ज़्यादा हैं। दूसरी ओर वो रास्ता है जो आसान है, बड़ी उधेड़बुन में पड़ते हैं और फिर वो उस रास्ते को चुनते हैं जो रास्ता कठिन है, जिस रास्ते पर पत्तियां ज़्यादा हैं, जिन रास्ते पर कम लोग गए हैं। कुछ दूर चलने के बाद वो ठिठकते हैं और सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन फिर कहते हैं, नहीं, अगर मैं यहाँ पर अब रुकूंगा और ये सोचूंगा कि मैंने कहीं रास्ता गलत नहीं चुन लिया, तो मेरा आत्मबल कमज़ोर होगा। और कहा भी जाता है कि चेंजिंग ऑफ पाथ कैन नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम बिकॉज प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज ऑन द वे। रास्ता बदल देना किसी समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि समस्याएं हर रास्ते पर हैं। एग्जाम्पल के लिए, घर में जो व्यक्ति कमाता है वो सोचता है मेहनत किस में है, कमाने में है। सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं, पसीना जाकर कहीं बहाऊं तो घर चलाऊं। उनका अपना संघर्ष है। लेकिन 40 डिग्री के सेंटीग्रेड के तापमान पर गैस के सामने खड़े होकर रोटी बेलना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। ये संघर्ष है, ये भी है।

अगर गेहूं खरीद कर लाने में और पिसाने में मेहनत है तो रोटी बनाने वाले की भी अपनी मेहनत है। हर इंसान का संघर्ष अपना अलग अलग होता है। हम अपने दौर के संघर्ष की बात करेंगे और आज के दौर के संघर्ष की बात करेंगे। हमने क्या संघर्ष किया और आज लोग क्या संघर्ष करते हैं। हमारे पिताजी के टाइम पर उनका संघर्ष क्या था कि वो जहाँ रहते थे वहाँ से जो विद्यालय था वो 5 किलोमीटर की दूरी पर था और वो पैदल जाते थे। ये उनका संघर्ष है। हमारा संघर्ष क्या है? हमारा विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर है लेकिन हमारे पास साइकिल है और हमारे जो मित्र हैं उनके पास मोटरसाइकिल है। तो हमको लगता है हम संघर्ष करते हैं, उनके लिए तो आसान है। और अगर आप ऐसे बच्चे से पूछेंगे जिसको 4 व्हीलर छोड़ने आती है तो जो बाइक वाला बच्चा कहेगा संघर्ष मेरा बताओ, इतनी धूप में आना पड़ता है। एक ये लड़का है बेहतरीन कार में बैठ करके आता है, 4 व्हीलर में एसी में बैठ करके आता है। ये देखिए इसकी लाइफ, संघर्ष। हर व्यक्ति ये मानता है कि वो संघर्ष कर रहा है लेकिन वास्तव में कौन कर रहा है और क्या है? जी हाँ, इस पर बात करेंगे इस प्यारे से संगीत में अंतराल के पश्चात। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, और आइए अब आते हैं अपने रंग में और आपको हेमंत कुमार की आवाज़ में सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आज आपकी सुबह हो सके थोड़ी सी और खास। जी हाँ, पीतीश भर ने लिख दिया है, हकीकत बयां करता हुआ आसम थाट, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिश्चंद सप्ता जी हैं, वेरी नाइस सॉन्ग। कायनात जी जुड़ चुके हैं, इम्तियाज अहमद जी जुड़ चुके हैं, क्या बात है भाई, गुड मॉर्निंग आपको भी। और जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। जी हाँ, इस पर इस पहलू पर बात करेंगे, लौटते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के इस संगीत में अंतराल के उस पार। latest update

0: जी हाँ, तो बात कर रहे थे व्यक्ति, तकदीर और सफलता। और इन तीनों का अपना अपना महत्व है। बात की थी मैंने कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आंच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया। और उरोज, उरोज मतलब होता है उच्चतम बिंदु पर, उरोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां। इंसान की जब इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है कि उसकी तकदीर उसका साथ देती है, तो वो मट्टी को छू ले तो सोना हो जाए। और उसी इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है कि वो अगर सोना छू ले तो मट्टी हो जाए। तो रोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो जमी से भी फिसल गया। जी हाँ, अगर नसीब से गड़बड़ाए तो फिर जमी से भी इंसान फिसलता है, और अगर समय आपका साथ दे रहा है तो क्या बात है भाई, आप वहां तक पहुंचते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई प्रमुख कुमार जी सावस्ती से। गुड मॉर्निंग, बहुत ही सुप्रभात आपको। और मनीष शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित हैं, हरिश्चन सविता जी हमारे साथ हैं भाई, और विकास तिवारी उन्नाव से हैं। हेलो एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। और दीपांशु तिवारी जी, गुड मॉर्निंग। मनु सर जी, ये क्या बात है, ये चाय जो आपने हमको ऑफलाइन भेजी है, यही चाय अगर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होती तो मज़ा आ जाता दीपांशु जी, लेकिन क्या बताएं। चलिए बहुत आपकी इस ऑनलाइन चाय को हम स्वीकार करते हैं जी। विकास त्रिवेदी जी हैं उन्नाव से, आज मैं उनसे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी भाई, और इसके पश्चात भाई क्या बात है, चाय के साथ दिल कैसे दिया जाता है, लिया जाता है। मैंने सुना है जिसके पास दिल नहीं होता वो इंसान बहुत जल्दी मर जाता है, फिर कैसे दे दिया। ओहो, तुझे दिल दे दिया, तेरा दिल ले लिया, क्या बात है। मतलब ये तो इंसान जब अपने जीवन में व्यक्तिगत अनुभव करता है तो उसे पता चल जाता है। और जी हरिचंद सत्या ने लिखा, वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को सुप्रभात, आपको भी भाई सुप्रभात। और आशु मिश्रा जी प्रणाम करते हैं, साथी सिर्फ वो नहीं होता जो जीवन भर साथ निभाए, साथी तो वो भी होता है जो जीवन के कुछ पलों में ही जीवन भर का साथ निभा जाए। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग बहन जी, कैसी हैं आप। पॉल जी आइए, मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब धोखा, तेरा फरेब होंठ पे लाया नहीं गया। ए मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, ए मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। रखता है कौन किसको यहाँ मर जाने के बाद, रखता है कौन किसको यहाँ मर जाने के बाद, कुछ बात थी जो उसको भुलाया नहीं गया। जी हाँ, किसी इंसान में कुछ खास बात होती है। आइए बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं, आवाज़ जरा पहचान कर बताइए कि इस गीत को गाया किसने है, और आपसे मिलते हैं इस गीत के उस पार। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमन और इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रेस लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा। जी हाँ, आइए बात करते हैं बदलते हुए वक्त की, संघर्ष की। जहाँ हमारे जो बुजुर्ग, हमारे वालिद वालिदैन, माता पिता, इंसान गरीबी के पश्चात अमीरी देखता है, कभी कहता है कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था, हमें है याद अब तक वो लड़कपन का ज़माना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का ज़माना था, बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी, सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, कभी पापा छुपा लेते थे हमको अपने दामन में, कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, मतलब खाना नहीं मिला खाने को, कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया दो चार रोटी पर, कभी नहीं मिला, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था, हमें उस मिट्टी के छोटे से घर में बांध रखा था, सभी सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल के रहते थे, गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल के रहते थे। ये एक पहलू हुआ। अब दूसरा पहलू, अमीरी आई, अमीरी आई, खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, फकत चेहरे नहीं दिल जहन और जज्बे बदल डाले, मका सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे, हमारा घर बड़ा है, हमारा घर बड़ा है और घर में है कई माले, मगर पुख्ता घरों ने दिल हमारे सख्त कर डाले, कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं, अगर है भाई गरीब तो उसे नौकर बताते हैं। जी अगर भाई गरीब है तो कहते हैं कि नौ नौकर है। मैंने एक चीज़ देखी अपनी ज़िंदगी में, अगर आप कामयाब होते हैं तो लोग आपके साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, और अगर आप नाकामयाब होते हैं तो लोग आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ते हैं। तो आपके साथ लोग रिश्ता जोड़ेंगे या तोड़ेंगे ये इस पर निर्भर करता है कि आप कामयाब हैं या नहीं। जी हाँ, शायद ये कड़वा सच है। अशु मिश्रा जी मेरे साथ है, भाई क्या बात है, प्यारी प्यारी प्याली की चाय आ चुकी है। और जी कायनाथ जी ने कहा है गाने बहुत सुंदर बज रहे हैं। जी हाँ, बहुत दिन हुए देखे हुए तुझे यार। जी हाँ, विपिन सचदेव ने गाया है, बिल्कुल सही कहा आपने। और जी सुपर सांग बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी भाई क्या बात है, आप कहाँ गायब होते हैं रहते हैं भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। शैलेंद्र जी आज आपको बुधवार को बाहरी गज़ल में आना है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। जी जी नाइस सांग बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत रफ़ी जी बिल्कुल, अब मेरी रानी ले जा छल्ला निशानी, आहा क्या बात है। जी हाँ, मुस्तफ़ा सऊदी हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग गोंडा। अरे वाह मनुसर जी, हाँ जी हाँ मैं हूँ। और इसके पश्चात चले चलते हैं
और अब आपको एक गीत और सुनाते हैं और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन और स्वागत। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। जी, हमने कई सारे मौजूआत पे बात की, वतन की बात की, मिट्टी की बात की, जिंदगी की बात की, जिंदगानी की बात की, और अब बात करते हैं माँ की। बात यहां से शुरू करते हैं कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता।

तो किसी का भी प्यार माँ के प्यार को की बराबरी नहीं कर सकता। शायर ने कहा कि बुलंदी कब किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अगर तूफान आया है साहब तो जो छोटी इमारतें हैं वो बच जाती हैं, लेकिन जो बड़ी इमारतें हैं ना वो उनका बचना मुश्किल होता है। जो पेड़ आंधियों में झुक गए, फ्लेक्सिबल हो गए, विनम्र हो गए, वे बचे रह गए, और जो तने थे वो गिर गए। तो मैं बात कर रहा था कि जो माँ का प्यार होता है वो हर परिस्थिति में बच्चे के साथ है, और भगवान स्वयं भी कहते हैं कि करहुं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। मैं जो मेरे शरण में लोग हैं मैं उनकी रक्षा उसी प्रकार से करता हूँ जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो दृश्य ही बदल चुका है, वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं, सब अपनी अपनी ज़रूरत बताते रहते हैं, ये बच्चे माँ बाप की ज़रूरत कहाँ समझते हैं। जी हाँ, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं भाई, अरे क्या बात है। और जी तिवारी ने कहा, बहुत सही सर कहा आपने, अमीरों के आँखों में पट्टी बन जाती है गरीबों को देखने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुकेश यादव जी भाई, क्या बात है, क्या बात है सर, आज मेरे भतीजे का बर्थडे है, वेरी नाइस ड्रीम सॉन्ग। जी हाँ, कल आपने कहा कि आप हमारे फैमिली के बारे में जानते हैं, कैसे हम भी जानना चाहेंगे। अच्छा भाई, ये बात है। तो सबलू सावन जी हैं भाई, गुड मॉर्निंग आर जे मनु जी। जी हाँ, तो आपके भतीजे का बर्थडे है, चलिए इस गीत के बाद एक गीत डेडिकेट करते हैं आपके भतीजे को। लेकिन फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

जी हाँ, ये वो गीत है जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई तो लता जी और रफी जी ने मिलकर के गाया, और इसके बाद लता जी ने रफी जी से कहा कि क्यों ना इसको दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। रफी साहब बहुत विनम्र इंसान, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर लेते हैं। दोबारा फिर किया, फिर करने के बाद लता जी ने कहा कि रफी जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बार और कर ले। तो उन्होंने कहा कि मतलब क्या, मतलब समस्या कहाँ है। तो फिल्मांकन जो था, फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ये दोनों पर्दे पर थे, तो रफ़ी साहब जब किसी के लिए गीत गाते थे तो उसके जैसा बनकर गाते थे। उनको ये पता था कि ये गीत फिल्माया जाना है अमिताभ बच्चन पर, तो उन्होंने उनकी ही आवाज़ में गाने की कोशिश की, जबकि ये गीत फिल्माया जाना था गुलशन बावरा पर, जो जिस वो मुकद्दर का सिकंदर में भी हैं, आप उनको देखेंगे, लावारिस में भी हैं, वो बहुत अच्छे गीतकार हैं, गीत लिखते हैं, उन्हीं के ऊपर फिल्म बनाना जाना था। तब रफ़ी जी के समझ में आया कि ओ हो, मतलब इनके ऊपर फिल्म आ जाना है। तो तीसरी बार ये गाना फाइनल हुआ था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। जी, और मैं सर भाई मिश्रा टिकल जी, मैं सबलू सावन जी हैं मुंबई से, गुड मॉर्निंग आर जे मनु जी, यहाँ गुड मॉर्निंग आपको भी। मिश्रा टिकल जी हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, और शैलेंद्र ने कहा बहुत खूब, क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आइए, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है, ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, ऐसा लगता है कोई सांप छुपा बैठा हो, फूल से हाथ मिलाते हुए डर लगता है, जिंदगी जिंदगी तूने कब्र से भी कम दी है ज़मीन, जिंदगी तूने कब्र से भी कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। घर में घर कैसा हो, वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, चमन की खूबसूरती तितलियों से है, वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो, जहां बेटी ना हो वो कौन सा घर, वो घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो, पलकों से आंसुओं की महक आनी चाहिए। अब बहुत बड़ी कल्पना है, पलकों से आंसुओं की महक, अभी आपने आंसुओं की महक जैसी कोई चीज शायद न सुनी हो, कब कहता है नहीं, पलकों से आंसुओं की महक आनी चाहिए, खाली है आसमान अगर बदलिया ना हो, आसमान खाली है, और दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा मका न दे, दुश्मन को भी खुदा कभी ऐसा मका न दे, ताज़ा हवा की जिसमें खिड़कियां ना हों, मैं पूछता हूँ वो मेरी गली में आए क्यों, मैं पूछता हूँ वो मेरी गली में आए क्यों, जिस डाकिये के पास तेरी चिट्ठियाँ ना हो। जी हाँ, मोहब्बत पुकारती है साहब, बहुत ध्यान से पुकारती है। और विकास तेरे जी हैं उन्नाव से, उन्होंने कहा हम भी हैं सर जी, हाँ आप ही तो हैं। और इट्स कुमार जी है, आज आप सुबह आप मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो इट्स कुमार जी, तो हम माफ़ी मांग लेंगे आपसे। और
जी विकास जी, बिल्कुल आप ही तो है, और आपका संदेश हमने पढ़ा भी था। तो देखिए, मोहब्बत पुकारती है, और कैसे पुकारती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे पुकारती है रफ़ी साहब की आवाज़ में जैसे हम पुकार रहे हैं आपको। कैसे? बिल्कुल ऐसे।

सारेगामा कारवां डिजिटल और

जी हाँ भाई, तो अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, मुकेश यादव जी के भतीजे का जन्मदिन है, तो चलते चलते भाई उस नन्हे से फरिश्ते को हम जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना भी देंगे और उनके लिए गीत भी बजाएंगे। फिलहाल अब हमें दीजिए अनुमति। कैसा लगा आज का शो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों के बाद गुड मॉर्निंग गोंडा मैंने किया, कैसा लगा आपको इस बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सभी का। आसमान वाले ने चाहा तो 9:30 बजे बहारे गज़ल में फिर आपसे मुलाकात होगी। और आज तो कलंक का प्रोग्राम है भाई, शैलेंद्र जी हमको दिखाई पड़ गए हैं, तो आपसे बता दें कि भाई आप रहिएगा आज 9:30 बजे आप इस शो में। चलिए एक बार पुनः उस नन्हे से फरिश्ते को जन्मदिवस की शुभकामनाएं आप सभी से लेते हैं अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन आज हम सुबह की खास करने वाले हैं और खास कर चुके हैं। चलिए तो उस नन्हे से फरिश्ते के लिए यह प्यारा सा बर्थडे गीत, तो इसी के साथ अब आपसे लेते हैं अनुमति।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर।

0: जीवन की बातों के साथ शुरू करते हैं हमारा विशेष एपिसोड। अरे हमारे यूपी में तो मलमास का माहौल ही अलग होता है। गांव में शाम होते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, सारी औरतें एक साथ मिलकर के भजन गाती हैं, और वहां बैठे बच्चे तो प्रसाद का इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल जया, पहले गांव में इसकी परंपरा ज्यादा दिखाई देती थी। सुबह सुबह मंदिरों में भजन, घरों में गीता का पाठ, सुंदरकांड, तुलसी पूजा। लेकिन अब शहरों में भी लोग बहुत श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास को मानते हैं।
2: हाँ दीदी, मेरी भाभी लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ हर मोहल्ले में कथा, भंडारे और भजन चल रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर में तो सुबह से ही भीड़ लग जाती है।
3: और सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह लोग इस महीने को बहुत मानते हैं।
0: दीदी आपको पता है, हमारे यूपी में तो इस महीने की सुबह बिल्कुल अलग होती है। भोर होते ही मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण की धुन आने लगती है और घरों में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। हमारे यहाँ की महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करने चली जाती हैं।
1: सही कहा, और अब शहरों में भी लोग अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर पूजा पाठ करने लगे हैं। कई लोग इस महीने में मोबाइल और दिखावे से दूर रहकर मन की शांति को खोजते हैं।
2: कल ही मैं बाजार गई थी, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि मलमास चल रहा है, अभी शादी की खरीदारी बाद में करेंगे। कितनी श्रद्धा से लोग आज परंपराओं को निभाते हैं।
3: और एक बात मैंने देखी है, इस महीने में लोगों के अंदर सेवा की भावना भी बढ़ जाती है। कहीं शरबत बांटा जा रहा है, कहीं पानी की व्यवस्था, तो कहीं भंडारे हो रहे हैं।
1: यही तो इस महीने की सबसे सुंदर बात है। मलमास केवल पूजा का महीना नहीं बल्कि मन को विनम्र बनाने का महीना है।
0: सच में दी, गांव हो या शहर, इंसान कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर अपनी जड़ों और आस्था से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।
2: और शायद यही भारत की खूबसूरती भी है, जहाँ विज्ञान भी है, परंपरा और भक्ति भी।

0: और गांव में तो लोग एक दूसरे के घर जाकर कथा भी सुनते हैं, कहीं भागवत कथा, कहीं विष्णु पुराण, कहीं भजन संध्या। ऐसा लगता है कि पूरा गांव एक परिवार बन गया हो।
1: मध्य प्रदेश में मेरी मौसी रहती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ भी पुरुषोत्तम मास में बड़े बड़े सत्संग होते हैं। गुजरात में तो लोग इसे बहुत ही विशेष मानते हैं। वहाँ मंदिरों में रात रात भर भजन चलते हैं।
2: राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लगभग पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत में इस महीने की बड़ी मान्यता है। कहीं इसे अधिक मास कहते हैं तो कहीं पुरुषोत्तम मास, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है, भगवान के करीब जाना।
3: और अब तो नई पीढ़ियां भी इसमें रुचि लेने लगी हैं। पहले बच्चों को ये लगता था कि ये सब काम सिर्फ बड़ों के लिए है, लेकिन अब तो युवा भी गीता पाठ, भजन और सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी बता रही थी कि उनके कॉलेज में भी कई लड़कियां इसी महीने उपवास रख रही हैं और शाम को मंदिर जाती हैं।
2: हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दान सेवा का विशेष महत्व है, लेकिन सेवा दिखाने के लिए नहीं, सच्चे मन से होनी चाहिए।
3: और सच कहूं दी, गांव में कितना अपनापन होता है ना, वो मन को ना बिल्कुल छू सा लेता है। शाम को सब लोग मंदिर के बाहर बैठकर भजन सुनते हैं, बच्चे एकत्र होकर के खेलते हैं, बड़े कथा सुनाते हैं। कितना मनमोहक और सुंदर वातावरण होता है।
0: शहरों में भले ही ऊंची ऊंची इमारतें हों, लेकिन ऐसे महीनों में लोगों को अपनी मिट्टी और परंपरा याद आ ही जाती है।
1: हाँ, क्योंकि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, मन को शांति तो आखिर भक्ति और अपनेपन से ही मिलती है।

0: अरे दीदी, अब वो कथा सुनाइए जिसमें भगवान विष्णु इस महीने को अपना नाम दिया था। पिछली बार आपने थोड़ा बताया था, लेकिन आज पूरा सुनाइए, ऐसा कि सुनते सुनते मन भर जाए।
1: बहुत पुरानी बात है बहनों, इतनी पुरानी जब धरती पर इंसान का मन आज जितना भारी नहीं हुआ करता था। तब समय के 12 महीने थे, हर महीने का अपना सम्मान था, अपना उत्सव था, अपनी पहचान थी। किसी महीने में दीपों का त्योहार, किसी में रंगों की होली, किसी में विवाह के मंगल गीत, किसी में फसल की खुशियाँ।
2: ओ, मतलब हर महीने के आने का लोग इंतजार करते होंगे।
1: हाँ, लोग महीनों का स्वागत करते थे। चैत्र आता था तो नए साल की खुशी, सावन आता था तो झूले और कजरी, कार्तिक आता था तो दीपों की जगमगाहट। हर महीने के पास कुछ था जिस पर उसे गर्व था। लेकिन
3: लेकिन क्या सुनता?
1: एक महीना ऐसा था जो सबसे अलग था, वह अतिरिक्त महीना था जिसे बाद में लोग मलमास कहने लगे। उसके पास न कोई त्योहार था, न कोई शादी ब्याह, न कोई उत्सव, न कोई मंगल गीत। जब वह आता लोग कहते, अरे अभी शुभ काम मत करो, किसी घर में शहनाई नहीं बचती, कहीं बारात नहीं निकलती, कई नए कपड़ों की खरीदारी नहीं होती। धीरे धीरे उस महीने को लगने लगा कि शायद वह बेकार है, और सचमुच बेकार। हाँ, कहते हैं वह महीना बहुत उदास रहने लगा। जब बाकी महीने आते तो धरती पर खुशी छा जाती, मंदिर सजते, ढोल बजते, घरों में पकवान बनते। लेकिन उसके आने पर लोग कहते, अभी रुक जाओ, अभी शुभ समय नहीं है। वह चुपचाप सब सुनता रहता।
2: जैसे किसी परिवार में एक बच्चा हो जिसे सब नजरअंदाज कर दें।
1: बिल्कुल सही कहा, वही पीड़ा थी उसकी। धीरे धीरे वह अकेले रहने लगा, उसे लगने लगा कि उसका कोई अपना ही नहीं है।
3: फिर उसने क्या किया?
1: एक दिन वह दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सब मुझसे दूर भागते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, लेकिन तुम्हारा दुख दूर करने की शक्ति केवल विष्णु भगवान के पास है, तुम उनके पास जाओ।
0: फिर वो भगवान विष्णु के पास गया।
1: हाँ, कहते हैं वह रोता हुआ वैकुंठ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन टूटा हुआ था। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु सब मेरा अपमान करते हैं, किसी को मेरा इंतजार नहीं रहता, जब मैं आता हूँ तो लोग खुश नहीं होते, क्या मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ है? यह सुनते ही भगवान विष्णु की आंखें करुणा से भर गईं। आंसू लेकर जो भी आया, प्रभु ने उसे अपनाया, जिसके मन में दर्द छिपा था उसको गले लगाया।
2: फिर भगवान ने क्या कहा?
1: भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने उस दुखी महीने को उठाकर अपने पास बिठाया, फिर बोले, सुनो, संसार अक्सर बाहरी चमक को देखता है, जिसके पास उत्सव है लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो शांत है, जो भीतर से गहरा है, उसका महत्व लोग देर से समझते हैं।
0: वाह, क्या बात है।
1: भगवान ने आगे कहा, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, गरीबों की मदद करेगा, उसके मन को शांत करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी।
3: मतलब जिसे सब अशुभ समझ रहे थे, भगवान ने उसे सबसे पवित्र बना दिया।
1: हाँ, यही तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है।
2: दी, सच कहूँ तो ये कहानी केवल महीने की नहीं लगती, ये तो इंसान की भी कहानी लगती है।
1: बिल्कुल, कई लोग जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनकी कद्र नहीं करता, लेकिन समय बदलता है। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का मूल्य कम नहीं होने देते।
0: वो अब समझ में आया कि लोग इस महीने में इतना भजन और सेवा क्यों करते हैं।
1: क्योंकि ये महीना हमें विनम्र सिखाता है, यह सिखाता है दूसरों का अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, और जो अकेला है उसका साथ दो।
3: आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं।
1: और इसीलिए ऐसी कथाएं जरूरी हैं, क्योंकि ये केवल धर्म नहीं सिखाती, इंसानियत भी सिखाती है।
2: सच, अगर हर इंसान इस कथा का अर्थ समझ ले तो शायद दुनिया थोड़ी और सुंदर हो जाए।

0: इस महीने में आखिर किस भगवान की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है?
1: इस महीने को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। विशेष रूप से लोग भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस महीने को सम्मान दिया था।
2: दीदी, कल हमारे गांव में शाम को गीता पाठ हो रहा था और कल ही मैंने देखा कि मंदिर में इतनी भीड़ हो गई कि लोग ना बाहर खड़े होकर भजन सुन रहे थे।
3: हाँ, और बस स्टेशन से लेकर रेलवे तक जगह जगह भंडारे लगे हैं। कोई शरबत बांट रहा है, तो खिचड़ी, तो कोई फल और ना जाने क्या क्या।
0: मुझे तो सबसे अच्छा तब लगा जब छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था।
1: यही तो इस महीने की सुंदरता है। ये महीना केवल पूजा का नहीं, सेवा और विनम्रता का भी है। नाम जपो और प्रेम बांटो, यही प्रभु का ज्ञान। सेवा से खिल उठता है सूना मन।
4: मलमास आवते पूरे गांव के वातावरण बदल जात रहा। लोग सभे सवेरे उठ के जल्दी नहाए, नदी में जात रहे और फिर ओकरे बाद मंदिर जात रहे।
3: आज भी गांव में यह परंपरा काफी बची हुई है और अब शहरों में भी लोग इसे बहुत श्रद्धा से मनाने लगे हैं।
4: अरे बहुत ज्यादा, पहले तो लोग ये महीना में यहाँ झूठो बोले से डरात रहे। घर में सादा बूदा खाना बनत रहा और शाम होते सभी कथा सुने जात रहे।
2: समता दी, लेकिन भगवान ने ये महीना बनाया ही क्यों?
1: अच्छा अब सुनो, इसका वैज्ञानिक कारण। हमारी धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के हिसाब से एक साल लगभग 365 दिनों का होता है, लेकिन हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है। चंद्रमा के हिसाब से ये साल लगभग 354 दिनों का होता है।
2: मतलब दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर।
1: बिल्कुल, ये साल लगभग 11 दिन कम पड़ जाते हैं। अब सोचो, अगर ये अंतर ऐसे ही बढ़ता जाए तो धीरे धीरे हमारे त्योहार मौसम से हटने लगेंगे। होली सर्दी की जगह बरसात में आने लगेगी। दीपावली गर्मियों में पड़ सकती है।
3: अरे हाँ, फिर तो पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ हो जाएगा।
1: इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बुद्धिमानी से लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया। यही कहलाता है अधिक मास।
0: मतलब ये केवल आस्था नहीं, पूरा खगोल विज्ञान भी है।
1: हाँ, यही हमारे भारतीय ज्ञान की महानता है। हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के हमारे ऋषियों ने आकाश देखकर इतना सटीक गणित बना दिया था।
2: दीदी, सच में ये सोचकर आश्चर्य होता है, आज हम मोबाइल और मशीनों के बिना कुछ नहीं कर पाते। और तो और, उस समय के लोग इतना बड़ा हिसाब लगा लेते थे।
1: हाँ, इसीलिए हमारे त्योहार केवल धार्मिक नहीं है, उनमें प्रकृति और विज्ञान भी छुपा है।
3: और शायद इसीलिए लोग इस महीने को इतना सम्मान देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि यह महीना हमें दो बातें सिखाते हैं, एक समय का संतुलन, दूसरा जीवन का संतुलन।
0: जीवन का संतुलन?
1: हाँ, जैसे कैलेंडर में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा गया, वैसे ही इंसान के जीवन में कभी कभी रुककर खुद को संतुलित करना जरूरी होता है। आज इंसान लगातार भाग रहा है, काम, पैसा, चिंता, प्रतियोगिता, लेकिन मन थक जाता है, रिश्ते थक जाते हैं। मलमास कहता है, थोड़ा रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने व्यवहार को देखिए।
3: सच बात है बहन जी, देखो पहले लोग शाम को साथ साथ बैठा करते थे, अब तो सब के सब मोबाइल में लगे रहते हैं।
1: इसलिए ऐसे महीने बहुत जरूरी हैं। ये हमें फिर से इंसान बनना याद दिलाते हैं।
2: सच में दी, मलमास केवल एक महीना नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे भगवान इंसान से स्वयं आकर कह रहे हों कि थोड़ा रुक जाओ और अपने मन को फिर से अच्छा बना लो।
5: डमरू

0: दी, मैं एक बात पूछूं?
1: पूछो जया।
0: क्या आपको पता है कि आजकल के लोगों के जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन खाली खाली रहता है?
1: हाँ जया, यही तो आज के समय का सबसे बड़ा दुख है। पहले लोगों के पास सुविधाएं कम थी, लेकिन मन में धैर्य ज्यादा था। अब सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन बहुत जल्दी टूट जाता है।
2: पहले दादी और नानी कहानी सुनाती थी, अब बच्चे मोबाइल देकर सो जाते हैं।
3: और सबसे ज्यादा अकेले तो बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चे बाहर नौकरी में और घर में सन्नाटा।
1: तुमने ध्यान दिया है, पहले शाम होते ही लोग घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठते थे। कोई रामायण की चौपाई सुनाता था, कोई खेत की बात करता था, कोई बच्चों को कहानी सुनाता था। और अब शाम होते ही दरवाजे बंद, टीवी चालू, मोबाइल हाथ में और मन अंदर से खाली।
0: दी, क्या यही कारण है कि अब लोग भक्ति और परंपरा की ओर फिर से लौट रहे हैं?
1: हाँ, क्योंकि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, मन को शांति आखिर प्रेम, विश्वास और अपनापन ही देते हैं। तुमने देखा होगा, जब घर में बहुत तनाव होता है तब लोग मंदिर जाते हैं, जब मन टूटता है तब भजन सुनते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भगवान को याद करते हैं।
3: सच, कई लोग कहते हैं कि भक्ति बूढ़ों के लिए होती है, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति तो थके हुए मन के लिए होती है।
1: वाह, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी।
3: बेटियों, पहले मलमास आते ही लोग अपने मन को भी साफ करते थे। अगर किसी से झगड़ा हो गया हो तो जाकर माफी मांग लेते थे। अगर किसी गरीब की मदद करनी हो तो चुपचाप कर देते थे। उस समय दिखावा कम था, सच्चाई ज्यादा थी। आजकल तो दान देकर फोटो भी खिंचवाते हैं।
1: हाँ, लेकिन भगवान शायद वही काम स्वीकार करते हैं जिसमें अहंकार कम हो।
0: दी, जरा ये बताइए, आपको कभी डर लगता है?
1: डर तो लगता है जया, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, जब तक इस देश में कोई दादी बच्चे को कहानी सुनाती रहेगी, तब तक मंदिर की घंटियाँ बजती रहेंगी। जब तक कोई भूखे को रोटी खिलाता रहेगा, तब तक हमारी संस्कृति पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
3: पुरुषोत्तम मास में रोज एक दीप जलाना चाहिए।
1: देखा, यही परंपरा है। किताबों से ज्यादा बच्चे घर के वातावरण से सीखते हैं।
0: सच में, अगर घर में हर समय बड़े लोग आपस में झगड़ते रहेंगे तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे?
1: और अगर घर में भजन हो, प्रेम हो, बड़ों का सम्मान हो, तो वही बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं।
2: आप लोगों ने एक बात का ध्यान दिया है ना, मलमास में लोग थोड़ा सरल हो जाते हैं। कोई महंगे कपड़ों की बात नहीं करता, कोई दिखावे की चिंता नहीं करता, बस मन को शांत रखने की कोशिश करता है।
1: क्योंकि ये महीना हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे जरूरी चीजें खरीदी नहीं जा सकती हैं। शांति, प्रेम, अपनापन, विश्वास
3: और समय।
1: आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि अपने ही लोगों के लिए समय नहीं बचता।
0: कल ही एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटे पैसे भेज देते हैं लेकिन उनको बात करने का समय नहीं होता। सुनकर मन बहुत दुखी हो गया। रिश्ते केवल खून से नहीं होते, वो समय मांगते हैं। दो मीठे शब्दों से ही सूने मन में भी खुशी भर जाती है।
1: मलमास हमें यही सिखाता है, जीवन केवल कमाने के लिए नहीं मिला, थोड़ा समय अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए और अपने मन को भी, अपने मन के लिए भी निकालो।
2: और शायद भगवान के लिए भी।
1: हाँ, लेकिन भगवान को केवल मंदिर में मत खोजो। अगर कोई बूढ़ा अकेला बैठा हो तो तुम उससे दो बातें कर लो, वहाँ भी भगवान है। अगर कोई प्यासा पक्षी हो तो तुम उसे पानी दे दो, वहाँ भी भगवान है। अगर कोई दुखी इंसान हो तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, वहाँ भी भगवान है।
4: समता दीदी, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते?
1: हाँ बेटा, शायद सबसे ज्यादा वही रहते हैं।
3: आज की बातों ने मन हल्का कर दिया।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मलमास केवल कैलेंडर का महीना नहीं, मन को ठीक करने का समय है
0: और शायद रिश्तों को फिर से जोड़ने का भी।
1: हाँ बहनों, जब जीवन बहुत उलझ जाए, जब मन बहुत थक जाए, जब रिश्तों में दूरी आने लगे, तब थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक दीप जलाना चाहिए, थोड़ा भजन सुनना चाहिए और किसी अपने से दिल की बात कहनी चाहिए। क्योंकि अंत में इंसान को याद वही रहता है कि किसने उसे प्रेम दिया।
2: थोड़ा प्रेम बचा लो मन में, थोड़ी दया बचा लो, दौड़ बहुत ली जीवन भर अब, थोड़ा खुद को पालो। पुरुषोत्तम मास ये कहता है, मन का दीप जला लो।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
12: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की, जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
13: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म,

0: बड़ा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
1: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
0: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
1: अच्छा।
0: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
1: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
0: बहुत सारी,
1: जैसे?
0: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
1: जी।
0: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
1: और बाकी?
0: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है, बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
0: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है, 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
1: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए?
0: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी,
0: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
0: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए, शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए।

0: या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU, और हाँ नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो RJ दीदी
1: जी।
0: खास कर कम वजन वाले बच्चे 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए, ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
1: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
0: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
1: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
0: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें, साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं, जब पूरा गांव जागरूक होगा नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
1: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
0: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं, और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
1: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
0: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है, संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो, आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
1: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है, हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 89.6 FM पर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी RJ उन्नति, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा रेडियो, रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी का, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। और भैया अब आपको बता दें, स्मार्ट NGO रेडियो ज्ञानश्री की एक खूबसूरत सी पहल है जिसके अंदर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे अचानक से बहुत ज्यादा थकावट महसूस होना, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलना, चक्कर आना, या फिर चेहरे और हाथों का रंग फीका या पीला पड़ जाना। हम क्या सोचते हैं, अरे काम का स्ट्रेस होगा या नींद पूरी नहीं हुई होगी। लेकिन ठहरिए, ये महज मामूली थकावट नहीं, बल्कि आपके शरीर में छिपी एक ऐसी बड़ी समस्या है, एक ऐसी बड़ी कमी का इशारा हो सकता है, जिसे मेडिकल की भाषा में हम कहते हैं अनीमिया, यानी शरीर में खून की कमी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अनीमिया आखिर बला क्या है, तो चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में आज के शो में हम समझते हैं कि अनीमिया क्या होता है। हमारे शरीर में जो खून बहता है उसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, इस हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे फेफड़ों तक ऑक्सीजन को लेकर जाना और फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना। अब यह सोचिए, अगर आपके शरीर में यही कम हो तो क्या होगा? अनीमिया वह स्थिति है जब आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर कम हो जाता है। इसके लक्षण में थकान, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ शामिल होते हैं। ये लक्षण हल्के हो सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं। अनीमिया जानलेवा भी हो सकता है। अगर आप अनीमिया को नजरअंदाज करते हैं, बहुत वक्त तक करते हैं, तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। फिलहाल तो भैया आपको ऐसा ना हो और आप अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहें, इसी के लिए आज हम समझेंगे अनीमिया क्या होता है, क्या इसका उपचार है, और अगर आप इसको घर में ठीक करना चाहें तो कैसे ठीक कर सकते हैं, प्लस ये किन किन लोगों को होता है। भाई हम आपको बता दें, इंडिया जैसे देश में सबसे ज्यादा अनीमिया के जो ग्रसित लोग पाए जाते हैं वो महिलाएं होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि पुरुषों में अनीमिया बिल्कुल नहीं पाई जाती, पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है, महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। हमारे भारत में न जाने इतनी कितनी ही महिलाएं हैं जो हर वक्त अनीमिया से ग्रसित होती है और उन्हें इस बात का पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे इंडिया में भैया टेस्ट कराने का कोई रिचुअल है ही नहीं। हमें लगता है जब तक हमें डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर देते कि आप टेस्ट करा लो, तब तक हम टेस्ट नहीं कराते। इवन कई बार डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि आप टेस्ट कराओ, इसके बाद भी हम कराना पसंद नहीं करते। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है, हमें लगता है कि टेस्ट कराया और कोई बीमारी ही नहीं निकली तो ये तो बस पैसों की बर्बादी है। हम इस बात में खुश नहीं होते। अब बाकी देशों में तो होता है कि जब भी कोई अपना टेस्ट कराता है और चीज़ें निगेटिव आती हैं तो वो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, फाइनली मुझे कोई बीमारी नहीं है। बट जब हमारे इंडिया में किसी का टेस्ट होता है और बीमारी नहीं निकलती है तो वो सोचते हैं, अरे यार पैसे चले गए, पैसे भी खराब बीमारी भी नहीं निकली, ये क्या बात होती है, हमको तो पहले ही पता था। और इसी बात को कहकर हमने कभी अपना टेस्ट कराया ही नहीं है। यूं तो हमें अपना टेस्ट हर 6 महीने के अंतराल में कराना चाहिए, बट हम नहीं कराते हैं। तो क्या अनीमिया आपको भी हो सकता है, ये जानने के लिए बने रहिए आज मेरे साथ आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
4: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानोस्ली 89.6 FM के गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए हम इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, जो कि स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानोस्ली की एक सुंदर सी पहल है। बात करते हैं हम इसमें आपके स्वास्थ्य की, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो है अनीमिया की। अनीमिया जो कि एक रक्त विकार है, जो तब होता है जब शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती या वे ठीक से काम नहीं करती। कुछ प्रकार की अनीमिया अनुवांशिक होते हैं, यानी कि जेनेटिक्स होते हैं, लेकिन लोगों को जीवन काल में, यानी कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी भी कहीं भी आपको अनीमिया हो सकता है। ये स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। हम आपको बता दें कि अनीमिया आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित भी करता है। इस स्थिति में कुछ प्रकार से हल्के लक्षण होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं। जो हल्के होते हैं वो उपचार से ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और आप ध्यान नहीं देते हैं तो भाई ये लक्षण हो जाते हैं गंभीर। और जब आपको गंभीर अनीमिया हो जाता है तो ये आपकी जिंदगी पर बनाती है। हम आपको बता दें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अनीमिया उनके जीन्स में मिलता है, यानी कि जेनेटिक होता है, जो उन्हें जिंदगी भर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। गंभीर अनीमिया जानलेवा होता है। यह स्थिति कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी लक्षण हो सकती है। तो क्या अनीमिया बहुत आम बीमारी है, ये सवाल अधिकतर लोग पूछते हैं। तो हम आपको बता दें, जी हाँ ये सच है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हम आपको बता दें कि भाई अमेरिका में लगभग 30 लाख लोग अनीमिया से पीड़ित हैं, और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में 90% महिलाओं के अंदर अनीमिया पाया जाता है। अब आप सोचिए, भारत जैसे देश में जिसकी संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पर न जाने कितनी महिलाएं होंगी आपके आस पास जो अनीमिया से पीड़ित है। 4 में से 3 महिलाओं के अंदर अनीमिया पाया जाता है, यानी कि एक अनुमान लगाया जाए तो वैश्विक आबादी में हर तीन में से एक व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है। वहीं भारत में ये तो और भी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब इसके पीछे का कारण ये होता है कि भाई भारतीयों के खाने पीने में चीजों की बड़ी कमी होती है। यूं तो हम कहते हैं कि इंडियन खाना सबसे बढ़िया होता है और कहने में भी बुरा बिल्कुल नहीं लगता। हमारा खाना पूरे विश्व में फेमस है, लोग इसको पसंद करते हैं, खाते हैं, लेकिन हम इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं क्या वो हमारे शरीर की हर एक चीज़ को पूरा कर भी रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें वो चीज़ें होती ही नहीं हैं जो हमारे शरीर की न्यूट्रिशंस को पूरा कर सके, जैसे कि आयरन का, जैसे प्रोटीन, जैसे मिनरल्स, जैसे विटामिंस। सिर्फ होता है तो मेनली कार्ब्स, क्योंकि हम मेनली खाते हैं दाल चावल आलू की सब्जी रोटी। अब भाई रोटी में आपको कहां 3 ग्राम फाइबर के साथ बहुत सारा कार्ब्स मिलता है, वहीं चावल में भी आपको बहुत सारा कार्ब्स मिलता है, आलू भी जो एक कार्ब्स का ही सोर्स है, बस दाल में आपको 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और हमको लगता है कि भाई यही तो हमारी कंप्लीट डाइट है, बट ऐसा नहीं होता। कंप्लीट डाइट हमारी ये नहीं होती, कंप्लीट डाइट इससे बहुत अलग होती है। हमारे शरीर को जरूरत होती है आपके वजन के अनुसार प्रोटीन की, जो हम लेना पसंद नहीं करते, और इसीलिए भारत में लोगों को प्रोटीन की कमी, अनीमिया जैसी बीमारी अधिकतर देखने को मिल जाती है। भाई भारत में लोगों को डायबिटीज भी इसीलिए होती है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी और उनकी डाइट मैच नहीं करती। जो उन्हें चाहिए, जो उसके शरीर उनके शरीर को चाहिए, वो उन्हें मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो शरीर के लिए ज्यादा हो जा रहा है और उनकी उस हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी हम कर नहीं पाते। इसीलिए भारत में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जो बीमारियां मेनली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अनीमिया, थायराइड, टाइफाइड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि अनीमिया के लक्षण क्या होते हैं। अनीमिया का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य जो लक्षण होता है वो होता है थकान का होना। यानी आप इतना थका हुआ महसूस करते हैं कि आप काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आपको पूरे दिन बहुत ज्यादा थकान लगी रहती है और आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, ये सोचकर आप इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि शायद नींद की कमी है, शायद स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, शायद काम इस महीने थोड़ा ज्यादा हो गया या इस हफ्ते बहुत ज्यादा काम कर लिया, सुबह से बहुत काम कर लिया और इसलिए थकान हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता दें, जब आप किसी को भी या आपको अनीमिया होता है तो सबसे पहला लक्षण जो आपको देखने को मिलता है वो होता है थकान। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो आपको थकान लगती है और आपका काम करने का मन नहीं होता। इसी के साथ कुछ और भी लक्षण होते हैं जो अनीमिया के दौर में आपको नजर आते हैं। पहला है छाती में दर्द होना, चक्कर आना, बार बार संक्रमण का होना, दिल की धड़कने तेज होना। अगर आपको हर रोज या फिर कहें तो आए दिन चक्कर आते रहते हैं, आप चाहे लड़की हो या लड़का हो, अगर आपको हर वक्त चक्कर आते हैं, आपका सर घूमता है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि भाई आपको कहीं अनीमिया तो नहीं हो गया। आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि थकान होना, बार बार चक्कर आना, ये स्वस्थ इंसान की निशानी नहीं होती। ये जो निशानी होती है ये होती है बीमार लोगों की। और हम आपको बता दें, अगर आपको लगातार चक्कर आ रहे हैं, थकान हो रही है, तो भैया तो आपको टेस्ट करा लेना ही चाहिए, क्योंकि टेस्ट करा लेना कोई गलत बात नहीं होती। इसी के साथ अगर आपको बार बार संक्रमण हो रहा है, यानी कि बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है और आप किसी चीज से बार बार इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि हो सकता है आपको अनीमिया हो। प्लस अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल जैसे नॉर्मल स्पीड में एक इंसान चलता है, उस दौरान भी अगर आपकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं, तो सोचने वाली बात है भाई कि ऐसा क्यों है, क्या नॉर्मल इंसान की धड़कनें इतनी तेज होती हैं? नहीं। अगर आप स्वस्थ होते हैं, आपके शरीर में खून होता है, आपके शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन इधर से उधर डिलीवर हो रही है, तो भाई इस तरह की थकान होना, चक्कर आना या फिर दिल की धड़कनों का तेज होना, ये तो नहीं होता। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बातों में, कोई वजन उठाने में, हल्के से चलने में, तेज बोलने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में अगर आपको थकान हो रही है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, तो इस चीज का इशारा करता है कि आपको अनीमिया है। इसी के साथ जो हमारा अगला लक्षण है वो है सर दर्द का होना। आपके सर में लगातार दर्द बना रहता है। अब ये हल्का भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, लेकिन आपको ये रहता लगातार है, और फीमेल्स अक्सर इसकी शिकायत करती हैं कि उनके सर में काफी दर्द रहता है। इस बात को न जाने कितने ही लोग ये कहकर निकाल देते हैं, तुम्हारे सर में तो हमेशा ही दर्द रहता है, ये इसमें नया क्या है, ये तो हमेशा पूरा रहता है, ये तो बहुत पुराना हो चुका है, तुम तो रोज रोज यही शिकायत करते हो। भाई अगर आपकी मोहतरमा या आपकी मम्मी आपसे ये बात आकर बोल रही हैं कि उन्हें कुछ ऐसे लक्षण मिल रहे हैं जो अनीमिया के हैं, थकान, छाती में दर्द, चक्कर आना, बार बार संक्रमण होना, दिल की धड़कने तेज होना, सर में दर्द होना, तो आप इसे ये कहकर बिल्कुल मत टालिए कि ये तो तुम्हारा रोज का है। प्लीज उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर की सलाह लें, टेस्ट कराएं और दवाइयों के साथ साथ उनके डाइट का भरपूर ध्यान रखें। इसी के साथ आता है पीलापन, त्वचा का रंग सामान्य से अधिक पीला होना। हम आपको बता दें क्योंकि एनीमिया खून से जुड़ी बीमारी है, इसीलिए शरीर का रंग भी पीला हो जाता है। और जब शरीर का रंग पीला होता है तो हर वक्त वो जॉइंडिस का सिंबल नहीं होता है कि भैया जॉइंडिस ही है इसीलिए आपको पीलिया हो रहा है, मतलब कि आपका शरीर पीला पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिम्टम होता है कि आपके शरीर में खून की कमी है और खून की कमी की वजह होती है एनीमिया। इसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होना। जी हाँ, जिन्हें एनीमिया होता है उन्हें सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो सांस नहीं ले पाते, उनका दम घुटता है, वो कोई भी काम करते हैं उनकी सांस फूलने लग जाती है। और ये अक्सर हमने हमारी मम्मियों में देखने को मिलती है, जब भी वो बहुत तेज़ चिल्लाती हैं या कोई काम करती हैं तो अक्सर कहती हैं कि हमारी सांस फूलती है और हमें लगता है ये बढ़ती उम्र के कारण हो रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर एक स्वस्थ महिला को देखा जाए जिसकी उम्र 40 से 50 है और उसके शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, उसको एनीमिया नहीं है, तो उन्हें ना सांस फूलने की बीमारी होती है, ना उन्हें थकान होती है, ना दिल की धड़कनें तेज होती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वस्थ हैं। वहीं पर जो हमारे घर में मम्मियां हैं उनकी सांस भी फूल रही है, उनको दर्द हो रहा है, उनकी धड़कनें भी तेज हो रही हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि भाई उन्हें एनीमिया हो चुका है और इस चीज को आप ध्यान नहीं देते। फिलहाल बात करेंगे कि एनीमिया किस कारण से होता है, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी, स्टे ट्यून्ड।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
7: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को, जो कि स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञानसली की एक साझा पहल है, जिसके अंदर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। और आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। एनीमिया, अभी तक हमने जाना एनीमिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एनीमिया किस कारण होता है। भाई यूं तो एनीमिया किसी भी कारण हो सकता है, उदाहरण के लिए आयरन की कमी वाला एनीमिया सबसे ज्यादा आम, सबसे ज्यादा कॉमन है, जो अधिकतर लोगों के अंदर देखने को पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। आपकी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना होती है जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जो एनीमिया का कारण बनती है। हम आपको बता दें इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं जिससे पता चलता है कि आपको एनीमिया क्यों है, कैसे हुआ। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे समय तक सूजन का कारण बनी हुई है, तो ये वह स्थिति होती है जिसमें फिर आपका शरीर सही मात्रा में आपके बॉडी में जो आयरन होता है जिसका इस्तेमाल करके वो लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, उसको बनाना मुश्किल हो जाता है, उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकती है। इसके बाद आता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इस स्थिति में आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से आपका शरीर खुद आपको बीमार करता है और आपके शरीर में एनीमिया उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ये एनीमिया के ऐसे प्रकार में आता है जब स्थिति आपकी जो अस्थि मज्जा असामान्य रूप से बड़ी लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लग जाती हैं। कुछ चिकित्सा स्थितियों और विटामिन की कमी के कारण इस प्रकार की अनीमिया हो सकती है। इसके बाद आता है नॉर्मोसाइटिक अनीमिया। इस प्रकार में आपके शरीर में सामान्य से कम लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और इसके कारण ही आपको अनीमिया हो सकता है। हम आपको बता दें भाई कि अनीमिया बहुत सारे कारणों की वजह से होता है। कुछ अनीमिया होता है जो आपके जेनेटिक कारण की वजह से होता है, यानी कि आपके जीन से ट्रांसफर होता है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके घर में किसी को अनीमिया रहा है, आपकी मम्मी को, आपके पापा को या उनकी मम्मी पापा को, और उनसे आपका डीएनए ट्रांसफर होता है, इसके कारण भी कुछ बीमारियां हैं जिसमें कैंसर, डायबिटिक और अनीमिया, ये सारे जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं और आपको अनीमिया हो सकता है। फिलहाल तो इन अनीमियों को ठीक कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इस ब्रेक के, उस पर आते हैं, उसके बाद बताते हैं कि जब किसी को अनीमिया हो जाता है तो कैसे उसका निदान करें, कैसे उसका उपचार करें, प्लस कैसे आप अपने खान पान को सुधारें ताकि आपको फ्यूचर में चलकर अनीमिया ना हो। यूं तो महिलाओं के अंदर अनीमिया बहुत आम होता है और जो आम कारण होता है वो ये होता है कि उनके शरीर में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। भारत में हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उसमें आयरन की कमी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। हम आपको बता दें भैया, पहले तो लोग कहते थे ना कि हम लोहे की कढ़ाई में खाना खाते हैं जिसकी वजह से आयरन की कमी पूरी हो जाती है, लेकिन अब हम लोहे की कढ़ाई में भी नहीं खाते हैं। अब हम लोहे का इस्तेमाल ना करते हुए हम स्टील का, एलुमिनियम का, नॉनस्टिक पैन्स, यानी ऐसी कितनी ही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे खाने में भरपूर मात्रा में आयरन मिलता ही नहीं, और इसी की वजह से महिलाओं के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है कि उन्हें अनीमिया हो जाता है। अनीमिया का कारण मुख्यतः आयरन की कमी ही होती है और हमारे खाने में आयरन की कमी होने के कारण हमें अनीमिया होता है। अब यह हर कोई पालक तो हर वक्त नहीं खा सकता, और पालक भी हर वक्त आपके पास मौजूद नहीं रहती, ना उसके अंदर इतनी ताकत है कि अकेला पालक ही आपके लिए अनीमिया ठीक कर सके, आपकी पूरी अनीमिया को ठीक कर सके। तो उसके अलावा और क्या आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, और कैसे एक परफेक्ट डाइट बनाकर आप अपने आप को न जाने कितनी होने वाली बीमारियां जो स्पेशली खाने पीने से यानी कि लाइफ डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, यानी कि सही खान पान की ना होने की वजह से, प्लस हमारी फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से, उन्हें कैसे खुद को बचा सकते हैं बताते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस बात। अब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। स्टे ट्यून्ड।

0: भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपत्तियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिलती है तो वो मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वो कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वो आर्थिक रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपने आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें।
1: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आपका अपना कार्यक्रम। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, सेहत के कार्यक्रम में यूं तो हम हजारों बातें करते हैं और सेहत का कार्यक्रम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले, जो कि खूबसूरत सी पहल है रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ की। और आज हम बात कर रहे थे अनीमिया की, एक ऐसी कमी जिसको बहुत सारे लोगों के अंदर देखा जाता है। अगर हम महिलाओं की बात करें जिनकी उम्र 15 से 49 साल है, तो 57% महिलाएं होती हैं जिनके अंदर अनीमिया मौजूद है। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें जो सिर्फ 6 to 59 मंथ के होते हैं, तो उनके अंदर 67% अनीमिया देखा जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बच्चों के अंदर, जी हाँ बेशक बच्चों के अंदर भी अनीमिया होता है, पुरुषों में भी अनीमिया होता है, महिलाओं में भी अनीमिया होता है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि हमारे खाने में आयरन नहीं है। बहुत कम हमारे पास ऐसी खाने पीने की चीजें होती हैं जिसमें आयरन होता है, जिसकी वजह से अनीमिया आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, आप जो कुछ भी खाते हैं वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब जब आयरन हो ही नहीं रहा है डाइजेस्ट, तो आपके शरीर में पहुंचेगा कैसे? वो सिर्फ एक वेस्ट प्रोडक्ट बनके आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर चाहे आप कितना ही आयरन की टैबलेट्स खाइए, आप चाहे कितना ही पालक खाइए, आप चाहे कितना ही चुकंदर क्यों ना खाइए, जब वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो फिर वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, और जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो खून बनेगा कहाँ से। और हम आपको बता दें, जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें आता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, IBS, या फिर आपके बॉडी में मौजूद कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिशंस जो खाने को ठीक से डाइजेस्ट होने ही नहीं देते, चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब होने नहीं देते, जो आपको उन सब्जियों में भी मिल जाता है जो जमीन के अंदर से आते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि बीट रूट को, यानी कि चुकंदर को हमेशा पका कर खाना चाहिए, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगता है और जमीन के नीचे से आई हुई चीजों के अंदर न्यूट्रिशन के साथ साथ एंटी न्यूट्रिशन भी होते हैं, और जो एंटी न्यूट्रिशन होते हैं वो न्यूट्रिशन को अच्छे से डाइजेस्ट यानी कि अब्सॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो भैया ऐसा क्या करें और किस टाइम पर फीमेल्स के अंदर ज्यादातर आयरन की कमी देखने को मिलती है? तो वो होता है प्रेगनेंसी, या फिर जब वो बच्चों को यानी कि अपने नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, उस दौरान उनके अंदर आयरन की कमी बहुत तेजी से होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को आयरन की टैबलेट दी जाती है, और सरकार आकर खुद घर घर आपको समझाती है कि क्यों आपको आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। इवन ANM, आशा आपके घर तक आकर वो आयरन की टैबलेट्स आंगनवाड़ियों के साथ बांटती भी है। इसके बाद भी महिलाएं इसे नहीं लेती, और इसको ना लेने के कारण कई बार उनके बॉडी में आयरन की कमी देखने को मिलती है, और कई बार इसकी वजह से उनके बच्चे का जन्म भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता, बहुत क्रिटिकल हो जाता है जब उनका बच्चा इस दुनिया में आता है। तो भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, जिससे आप दवाइयों के बिना अपने आयरन की कमी को पूरा कर सके? तो सबसे पहले आता है अनार। अनार, ये तो आपने कहावत सुनी होगी ना, एक अनार 100 बीमार। तो भैया इस कहावत को जरा ध्यान में रखिएगा और याद कीजिए कि अनार के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारा आयरन होता है जो मदद करता है आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने के लिए। हर 100 ग्राम अनार के अंदर कम से कम 0.31 mg आयरन मौजूद होता है। अब यूं तो आपने कई बार डॉक्टर से ही सुना होगा कि जब भी किसी को आयरन की कमी, जब भी किसी को आयरन की कमी होती है तो उससे कहा जाता है कि आप अनार का जूस पीजिए, अनार पीजिए, अनार खाइए, अनार ये कीजिए वो कीजिए, और हमको लगता है भैया अनार इतना महंगा है कैसे खाएंगे, सोचते हैं ना आप भी जी, हमको पता है। तो भाई अगर आपसे अनार नहीं खाया जा रहा है तो आप उसकी जगह पर ड्राई एप्रिकॉट्स ले सकते हैं, आड़ू खा सकते हैं, खुबानी खा सकते हैं। खुबानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, आप इसको खा सकते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है। अगर आप ड्राइड यानी कि सूखा हुआ खुबानी ला सकते हैं और उसे पानी में भिगोकर सुबह उठकर खाते हैं तो ये भी आपके खून को बढ़ाने में मदद करता है। 100 ग्राम के अंदर कम से कम 0.8 mg आयरन आपको मिल जाता है। ये टेस्टी भी होता है और एक अच्छा सोर्स होता है आयरन का। तो भाई अनार और खुबानी ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ आता है प्रूंस। प्रूंस फाइबर में भी बहुत हाई होते हैं, यानी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। इसीलिए लोग आपसे कहते हैं कि प्रूंस को रात में भिगोकर खाइए, दूध के साथ खाइए। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी भी है, दिक्कत भी है, तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को ये ठीक करता है। प्लस 100 ग्राम के अंदर 0.7 mg आयरन मौजूद होता है। ये खाने में टेस्टी, प्लस इसमें फाइबर और आयरन दोनों मौजूद होता है, जो मदद करता है आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को और बहुत सारी दिक्कतों से लड़ने में। इसके बाद आते हैं किशमिश। जी हाँ, हम आपको बताते हैं अगर आप किशमिश को रात में भिगो कर रखते हैं और सुबह उठकर खाली पेट उसे पीते हैं तो ये भी आपके शरीर को भरपूर मात्रा में आयरन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ खजूर। खजूर जो कि ये नेचुरल मिठास देता है, और खजूर का इस्तेमाल आजकल लोग चीनी की जगह पर कर रहे हैं। हम आपको बता दें यूं तो कैलोरीज में लो होता है लेकिन मिठास उतनी ही होती है। चीनी, शहद, आप चाहे कुछ भी लें, लेकिन हर एक चीज़ जो मीठी है उसे एक कायदे में लें, उसे एक लिमिट में लें। लिमिट से ज़्यादा ना लें, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा दवा भी जहर बन जाती है, और अगर आप लिमिट में लेते हैं तो जहर भी कभी कभार दवा का काम कर ही जाता है। तो भैया आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर के 100 ग्राम में लगभग 0.5 mg आयरन मौजूद होता है। इसे आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। 3 से 4 खजूर आप रात में भिगो कर रख कर सुबह खा सकते हैं, उसके बाद गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिसमें आयरन रिच होते हैं, आयरन रिच फ्रूट्स थे जिनकी हमने बात की। और अब बात कर लेते हैं कुछ सब्जियों की। सबसे पहले और सबसे टॉप पर आता है स्पिनच यानी कि पालक। हम आपको बता दें 100 ग्राम पालक में लगभग 2.7 mg आयरन मौजूद होता है। तो आप इसे खा सकते हैं, और इसीलिए हम बचपन से आपकी मम्मी कहती आई हैं कि भैया पालक खाओ, पालक खाओ, लेकिन लोगों का पालक का स्वाद इतना पसंद नहीं आता। इसीलिए आप पालक को अलग अलग तरह से खा सकते हैं। पालक को खाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, साग बनाकर खाइए, पराठों में डाल के खाइए, सब्जियों में खाइए, दाल में खाइए, या उसे आप किसी भी चीज़ में ब्लेंड करके खाइए। और अगर आपको ऐसा नहीं खाया जा रहा है तो आप उसका सलाद बना के भी खा सकते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि पालक की सलाद, यू ये कैसा लगेगा। फिलहाल अगर आप पालक को 2 मिनट पानी में ब्लांच करते हैं, यानी कि पानी में खौलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए डुबो कर रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल के ठंडे पानी से धोकर उसमें सोया सॉस, नींबू, थोड़ा सा गार्लिक अगर आप खाते हैं तो, तिल, सफ़ेद तिल, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर आप खाते हैं तो ये स्वाद में बेहतरीन लगता है। इसे आप दाल के साथ खा सकते हैं। भाई पालक में आयरन होता है, और आयरन के साथ आपको विटामिन सी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जब आप विटामिन सी लेते हैं तभी जाकर आपका आयरन अब्जॉर्ब होता है। तो आप कोई भी चीज़ खाइए, आयरन का कोई भी सोर्स खाइए, उसके साथ विटामिन सी यानी कि खट्टा पदार्थ ज़रूर लीजिए। खट्टा पदार्थ आपके शरीर में जाकर आयरन को अब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जिसके बाद ही आपके शरीर में खून बनता है। इसके बाद आता है राजगिरा, जिसको हम चौलाई कहते हैं। लाल चौलाई, हरी चौलाई, इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन। और हम आपको बता दें भाई, चौलाई यानी कि जो राजगिरा है उसके बीज प्रोटीन का भी सोर्स होते हैं, तो आप ये भी खा सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में दूसरा आता है केल। केल जो कि अगेन एक पत्तेदार सब्जी है, जिसमें 100 ग्राम में 1 mg आयरन मौजूद होता है। यूं तो हमारे भारत के छोटे छोटे शहरों में केल मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं मौजूद है तो आप इसे अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड कीजिए। भाई आजकल तो शहरों में बहुत ज़्यादा आम है, स्पेशली ठंड में मिलता है और फैंसी भी बहुत लगता है। उसे हम कहते हैं प्यार से ब्रोकली यानी कि हरी गोभी। तो भाई आप हरी गोभी भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, इसमें भी भरपूर मात्रा में आपको आयरन मिलता है। 100 ग्राम में लगभग 0.5 mg के करीब आपको आयरन मिलता है, और ये खाने में भी टेस्टी होती है। इसी के बाद अगर बात कर लें तो आते हैं लेंटल्स। जिनमें आपकी दालें आती हैं, बीज आते हैं। हम आपको बता दें इसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है और आयरन की अगर बात करें तो 100 ग्राम में लगभग 3.3 mg आयरन मौजूद होता है। भाई आपको हम बता दें कि आप लोबिया के बीज भी खा सकते हैं। लोबिया के बीज जो पचने में बहुत आसान होते हैं, जिनमें फाइबर भी होता है, जिनमें प्रोटीन भी होता है और जो आपकी आयरन की कमी को दूर करने में भी मदद करते हैं। इसके बाद आता है चिकपीज, यानी कि आपके छोले। छोले के अंदर लगभग 100 ग्राम में 3.8 mg आयरन मौजूद होता है, प्लस इसमें प्रोटीन भी होता है, तो आप इसको जरूर से शामिल कीजिएगा। अब ये मत कहिएगा भैया छोले तो हम भटूरे के साथ बहुत खाते हैं फिर भी आयरन ठीक नहीं हो रहा। नहीं, नहीं, आपको मसाले वाले नहीं खाने हैं, आपको उबाल के इन्हें शामिल करना है अपनी डाइट में। बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना, लेकिन क्योंकि जब आप मसालेदार और बहुत तला भुना खाते हैं तो इसका असर उल्टा हो जाता है। जो काम आपके लिए अच्छा करने जा रहा होता है उसका उल्टा करके चलाता है, बीमार करके चला आता है। और कई लोग जिन्हें छोले हजम नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते, जिनके पेट में भारीपन महसूस होता है, वो छोले ना खाएं, यही मैं आपसे सलाह दूंगी। आप बीन्स ले सकते हैं, बीन्स किसी भी तरह की बीन्स, किडनी बीन्स या फिर लोबिया के बीन्स, जो भी आप बीज देख रहे हैं, बीन शेप में देख रहे हैं, आप उनको ले सकते हैं। लगभग 3.6 mg आपको 100 ग्राम में मिलता है। सोयाबीन आप खा सकते हैं। सोयाबीन जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है, इसके अंदर 8.6 mg आयरन मौजूद होता है 100 ग्राम के अंदर। वहीं पर अगर बात करें तो आप बीट रूट ले सकते हैं, यानी कि चुकंदर खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा चुकंदर पका कर खाएं, क्योंकि चुकंदर ज़मीन के अंदर से आता है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भैया चुकंदर के अंदर एंटी न्यूट्रिशंस भी पाए जाते हैं। तो अगर आप उन्हें कच्चा खाते हैं, पहली बात उन्हें डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, दूसरा उसका टेस्ट थोड़ा अटपटा लग सकता है, प्लस आपके बॉडी में वो एंटी न्यूट्रिशंस की संख्या बढ़ा देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो भैया ये सारी चीजें अपने डाइट में शामिल कीजिए और शामिल कीजिए साथ में मशरूम को। मशरूम जो कि आयरन का भी अच्छा सोर्स है, विटामिन डी का भी एक अच्छा सोर्स है, तो आप इसे भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। प्लस अगर आप मीट खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप फिश में सामन, टूना, इस तरह की मछलियां शामिल कर सकते हैं। आप मीट खा सकते हैं तो मीट में भी आपको भरपूर मात्रा में आयरन मिल जाता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमेशा आयरन को विटामिन सी के साथ ही लीजिए। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं लाइक टमाटर, लाइक नींबू, इन सारी चीज़ों के साथ ही खाइएगा। और जब भी आप आयरन खाएं तो उसके आसपास क्या चीज़ें नहीं खाएं, ये भी हम आपको बता देते हैं। भैया आयरन अगर आप खा रहे हैं तो उसके आसपास चाय, कॉफ़ी, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें ना लें, क्योंकि ये आपके आपके आयरन को डाइजेस्ट करने में मदद नहीं करते, बल्कि उसको रोक देते हैं। जब भी आप आयरन के साथ कैफीन लेते हैं तो फिर कैफीन आयरन के साथ झगड़ा वगड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता और फिर आप कहते हैं हमने इतना अच्छा तो खाया था, आयरन हो क्यों नहीं रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसके आसपास ही, यानी कि बहुत जल्द ही कैफीन ले लेते हैं। तो जब भी आप आयरन खाएं, सुबह खाली पेट अगर आप आयरन की टैबलेट भी ले रहे हैं तो विटामिन सी के साथ उसे पेयर करें और कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा चाय कॉफी कुछ भी ना लें, उसे अब्जॉर्ब होने दें और 2 घंटे के बाद आप जो भी खाना है आप दिल खोल कर खाइए, आराम से खाइए। और भैया कोशिश कीजिए कि जब आप खाना पकाएं, स्पेशली जब आप ग्रीन वेजिटेबल्स पकाएं, पत्तेदार सब्जियां पकाएं, तो उन्हें लोहे की कढ़ाई में, लोहे की चीज़ों में पकाएं, जिससे आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगा शरीर में आयरन को बनाने के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपनी अनीमिया को दूर कर सकते हैं। फिलहाल आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे आप और क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अनीमिया का कोई निदान होता है, इसका उपचार कैसे करते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
0: हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं, ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें।

0: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें?
1: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
0: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
0: जी।
1: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं, अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
0: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
1: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
0: जी
1: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है, वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज, ताकि फैलाव रोका जा सके।
0: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
1: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है। क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
0: जी।
1: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने, मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है
1: आकांक्षा जी? यह बहुत गंभीर खतरा है
0: जी।
1: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
0: जी,
1: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती, लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
0: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
1: जी जरूर
0: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
1: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
0: जी।
1: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
0: जी,
1: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
0: जी।
1: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
0: जी,
1: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
0: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
1: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
0: जी।
1: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
0: जी।
1: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
0: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
1: देखिए आकांक्षा जी
0: जी,
1: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
0: जी,
1: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
0: जी,
1: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
1: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
0: जी।
1: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
0: बिल्कुल।
1: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
0: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
1: जी आकांक्षा जी।
0: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
1: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
0: जी,
1: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
1: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
0: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: मेरा संदेश बहुत साफ है
0: जी।
1: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
0: जी।
1: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
1: जी धन्यवाद मैम आप।
0: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
7: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। और आप सुन रहे हैं रेडियो कैन असली 89.6 FM, यही गोला शहर की धड़कन पर आवाज है आपकी अपनी आरजे उन्नति की। और आज आप सुन रहे थे अनीमिया के बारे में। हमने पूरे शो में जाना अनीमिया क्या होता है, अनीमिया कैसे होता है, इसके मुख्य कारण क्या होते हैं और इससे बचने के लिए हम अपने खाने में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि भैया अनीमिया अगर आपको है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसके लक्षणों के बारे में यूं तो हमने बात कर ली, अगर आपको थकान, सर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी आना, दिल की धड़कनों का तेज हो जाना, सांस फूलना, सीने में दर्द होना, ये लक्षण आपको दिखते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर या जिला अस्पताल में जाकर अपनी जांच जरूर करवाएं, डॉक्टर से जरूर मिलें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको अनीमिया निकलता है तो डॉक्टर्स आपको दवा दे रहे हैं, अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो ये जाकर के जानलेवा साबित होता है। बट अगर आप सही समय पर दवा लेते हैं, टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो अनीमिया से लड़ा जा सकता है। और भैया जब तक आप दवा नहीं कराएंगे, जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे, तब तक अनीमिया से कैसे दूर होंगे? भारत अनीमिया मुक्त कैसे होगा और अनीमिया से जीत हमें कैसे मिलेगी? तो भैया अनीमिया से जीतना है, अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप भी अपने लक्षणों का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको अनीमिया है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। वो आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपका टोटल RBC काउंट होगा, आपके हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको अनीमिया है कि नहीं है। अगर है तो हाँ, तो वो आपको दवाइयाँ देंगे, क्योंकि इसको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। और अगर अनीमिया बहुत गंभीर है तो हो सकता है वो आपको आयरन के लिए इंजेक्शन भी दे। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा ही, लेकिन अगर ऐसा होता है तो डरिएगा मत, क्योंकि डॉक्टर साहब की भलाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बस आप उनकी मदद कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे, और टेस्ट से घबराना नहीं है। और अगर टेस्ट निगेटिव आता है तो मुंह लटका के नहीं बैठ जाना है कि अरे यार पैसे भी चले गए, बीमारी भी ना निकली, ये नहीं करना है। आपको खुश होना है और अपने खाने को और भी बेहतर करना है, अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर कीजिए, हल्का फुल्का डाइट को सुधारिए, प्लस अपनी आदतों को बदलिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, वर्कआउट कीजिए। जिम में जाकर 2 घंटे अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम घर में 20 से 30 मिनट खुद को ज़रूर दें, खुद के लिए ज़रूर निकालें, वर्कआउट करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं। अगर आप 40 साल की उम्र के बाद भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपको दवाइयों पर चलना पड़े, आपको लाठी लेके चलना पड़े, तो ट्रेनिंग कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, प्रोटीन का ख्याल रखिए, और अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली जनरेशन को बीमारियों से मुक्त रखिए। इसी के साथ अब घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, आप सुन रहे रेडियो 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन पर। अपनी आशीर्वादी के साथ आपने जाना अनीमिया के बारे में।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसकी जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
3: नमस्ते यार जी।
2: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
4: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती है और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
3: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
2: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
4: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
2: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
3: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना, माँ का पहला पीला गाढ़ा

को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही ज़रूरी हैं?
1: बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत।

0: जैसा है। इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
1: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
0: जी बिल्कुल। और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है। तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
2: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
1: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। ठीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
0: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
1: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसको प्यास लगे, तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए?
2: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दे। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
1: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
0: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
1: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
0: बिल्कुल। अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है, तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं, बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
2: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
1: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
2: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। यह खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
0: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है, बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
1: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
2: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं, खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
0: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
0: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
1: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
2: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
1: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
0: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें, माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
1: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
0: बिल्कुल नहीं, पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सबकी भूमिका होती है।
1: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
2: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
0: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
1: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
2: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
0: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
2: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
0: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
1: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
2: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
0: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
1: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दे। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। 5वां, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
0: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
1: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
3: पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
3: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: पहला दूध पहला प्यार,
0: पहला घंटा जीवन का आधार,
1: माँ का साथ पिता का हाथ,
0: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
1: सेहत सही लाभ कई।

0: भाई।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीवी मुक्त बनाने का। तभी तो टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
1: टीवी हारेगा, देश जीतेगा।
2: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: समझे
1: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चलने तो को के समझ।

0: किसी के
1: क्या करना है देखे
0: और हो रहना किसी के
1: अंदर है तो

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: डिलीशियस
3: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
3: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। आज नहीं है, देखो मेरी आदत है ना आज अंशिका को याद करने की, तो आज वो हमारे साथ नहीं है और वो किसी काम से बाहर है। लेकिन उसके बदले में आज हमारे साथ में एक हमारी एक और सहेली आ गई हैं। स्टूडेंट कह लें, सहेली कह लें, लेकिन मैं उनको आपसे मिलवाऊंगी। बट मैं बता दूं कि आज का शो जो है वो वेनसडे को एक्चुअल में मॉर्निंग में मैं आती थी और आज किसी कारण से नहीं आ पाई। बट आज मॉर्निंग के भी मैं देख रही थी व्यूज और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं। जो मनु सर से आज आपकी मुलाकात हुई थी, तो कैसा रहा उनके साथ आज मॉर्निंग वाला भी ज़रूर से बताइएगा। और अभी के आज के शो के लिए तो मैं पहले से क्या बताऊं, क्योंकि होने वाला है बहुत बढ़िया वाला, धमाल होने वाला है। क्योंकि आज वैसे भी स्पेशली एंड स्पेशली विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है और ले करके आती हैं आपकी आज समता एंड आज अंशिका। बट आज अंशिका की एब्सेंस में आज हमारे साथ में हैं, हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं, बट इस समय वो मेरी एक सहेली है जिसका नाम है निधि। तो मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी और उनसे जानूंगी कि आप एक्साइटेड हैं आज समता के साथ शो करने के लिए, या थोड़ी सी नर्वस हैं, या फिर आपको क्या फील हो रहा है। वेलकम निधि।
1: थैंक यू मैम।
0: तो मैंने अभी कुछ पूछा आपसे, तो वो मुझे बताएं कि आप नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, या फिर आपके मन में क्या हो रहा है कि आज मतलब आज समता के साथ आज पहली बार हम शो कर रहे हैं।
1: मैम थोड़ा सा नर्वस है पर एक्साइटेड भी है, क्योंकि आपसे मिलते रहते हैं तो नर्वसनेस थोड़ा कम है।
0: ये तो बहुत अच्छा और गुड साइन होता है, क्योंकि पता है जब हम नर्वस हो जाते हैं ना तो जो हमें आता होता है ना वो भी भूल जाते हैं। कई बार होता है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं और जिनसे हमको थोड़ा सा घर में फेयर होता है, जैसे एक बड़ी बहन होती है, माँ होती है, या फिर चाची होती है, या फिर शादी के बाद हमारी सासू माँ होती है, तो अगर हमें जो चीज़ आने वाली भी होती है ना, अगर वो किचन में आ जाए कि चलो मैं खड़ी हो रही हूँ और तुम ये चीज़ बनाओ, तो जो आने वाला होता है ना वो भी इंसान भूल जाता है।
1: मैम ये होता है रियल में, ये फैक्ट की बात आपने कह दी। अगर कोई किसी दिन ये भी बोल देता है कि आज थोड़ा अच्छा बनाना, उसी दिन गड़बड़ हो जाता है।
0: बिल्कुल। और ये पता है क्यों होता है, क्योंकि हम अंदर से कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन हम नर्वसनेस भी हमारे जो है ना वो ओवरलोडेड हो जाती है। तो इसीलिए नर्वसनेस को बिल्कुल ख़त्म करना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ में, जैसे कहता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट 100% कॉन्फिडेंट के साथ में। तो आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली, और आज सुन सहेली में आज हमारे साथ आई है निधि। तो निधि भी आज आपके साथ बहुत कुछ बातें करने वाली हैं, बहुत सारे टॉपिक्स लेकर के आई हैं। लेकिन जैसा कि औपचारिकता है, सबसे पहले विश करने की, इस दोपहर में जब मैं अभी आ रही थी तो माय गॉड इतनी ज़्यादा वाली धूप थी कि आते ही एसी भी काम नहीं कर रहा था, जैसे लग रहा था, मैं बार बार सबको कह रही थी कि एसी लग रहा है नहीं चल रहा है, एसी लग रहा है नहीं चल रहा है, बट एसी 16th पे चल रहा था लेकिन एसी लग ही नहीं रहा था कि 16 पे चल रही है। बट कोई नहीं, इस प्यारी सी दोपहर में आप सभी को मेरा प्यार भरा शुभ दोपहरिया।
1: शुभ दोपहरिया आप सबको मेरी तरफ से भी,
0: निधि की तरफ से भी शुभ दोपहरिया। वो बोल रही है इतनी धीरे सी आवाज में बोल रही है कि मैं क्या बता दूं। निधि हमारे लिसनर्स थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं।
1: दर्शकों को मेरी तरफ से भी शुभ दोपहरिया।
0: अब आई इनकी आवाज अब आई जान में जान, है ना। तो चलिए हम एक पोयम बताते हैं, उसके बाद हमें निधि बताएंगी आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या है। बट उसके पहले मैं बता दूं कि आज पोयम हम लेकर के आए हैं नारी पे। तो नारी शक्ति पे हालांकि केवल 8 लाइन से 4 लाइन से उनको बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि नारी एक स्वतंत्र क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र जीव नहीं, मैं जीव नहीं बोलना चाहती हूँ नारी को, एक स्वतंत्र सोच है। क्योंकि अगर हमने नारी को 4 लाइनों में बांध लिया ना, तो ये उनके लिए कहना ही एक अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन हर दिन नारी का है ये भी हमें नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए इस प्यारी सी कविता को हम आपके सामने रखते हैं। नारी है शक्ति, नारी है सम्मान, उसके कदमों में बरसता है जहान, हौसलों से लिखती अपनी कहानी, हौसलों से लिखती अपनी कहानी, हर मुश्किल से लड़ने की है ठानी, ममता भरी है आंखें उनकी, ममता भी है, साहस भी है उसमें, सपनों को पूरा करने का विश्वास है उसमें, जहां नारी का होता है सम्मान वहीं खिलता है खुशियों का संसार। एग्जैक्टली। मैं बता दूं कि जिस घर में जिस ऑफिस में या फिर जिस जहान में जिस कहीं पे भी जहां नारी का सम्मान होता है ना, वहां पर एक अलग सी छवि आ जाती है वहां पे। मतलब ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है कि जहां पर नारी का सम्मान होता है, एक लड़की का सम्मान होता है, वहां कहा जाता है कि लक्ष्मी खुद निवास करती है। और जब लक्ष्मी निवास करेंगी तो हमें किसी चीज की धन धान की कमी होगी ही नहीं। तो नारी का सम्मान करिए, क्योंकि मैं आज नारी पर इतना ज्यादा फोकस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे के दिन खास करके विमेन सेंट्रिक होता है, जो कि हम हर दिन लेकर के आते हैं, बट आज के दिन पूर्ण रूप से समर्पित हम सिर्फ और सिर्फ विमेन्स के लिए लेके आते हैं। तो रियल फैक्ट्स ऑफ जानेंगे हम आज निधि से। हाँ निधि
1: मैम, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ महिलाओं की दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत में भी उनका शुरू सबसे पहले होता है और दिन उनका ख़त्म सबसे बाद में होता है। और कुछ महिलाएं ये भी सुनती हैं, पूरा दिन घर में रहती हो, आखिर करती क्या हो। कभी कभी उनको छोड़ देना चाहिए, एक दिन कुछ नहीं करना चाहिए, फिर उनको शायद जवाब मिल जाए कि वो पूरा दिन करती क्या है।
0: बिल्कुल, मेरा भी कभी कभी मन यही होता है कि एक दिन ना पूरा काम जो है, घर का पूरा काम हमें जेंट्स को दे देना चाहिए, घर के जो मेल है ना उन्हें दे देना चाहिए, और फिर उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिर ये काम होता कैसे है पूरे दिन का।
1: मैम, कोई एक प्रोग्राम के लिए आपने देखा होगा कैटर्स हायर होते हैं, उसको भी मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट रहता है।
0: हाँ।
1: फैमिली छोटी हो या बड़ी, एक महिला कैसे मैनेज करती, वो भी एक दिन नहीं, रोज।
0: बिल्कुल,
1: वो किचन में खड़ी होके उसको पता होता है आपका पर्स कहाँ है, आपका पेन कहाँ है, आपकी बाइक चलाते आप हैं, पर उसको पता है आपने चाबी कहाँ रखी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही एक सुलझी हुई बात बताई निधि ने कि एक महिला को घर के बारे में, यहाँ तक कि आपके अगर आप शॉपकीपर हैं तो आपको शॉप की चाबी भी पता होती है कि आपने रात में आकर के कहाँ रखी है, आपको हैंकी देना, आपका वॉयलेट देना, आपका भीगा हुआ टॉवल जो आप बेड पे फेंक के जाते हैं उसको उठाना, कॉम जो बहुत सारे लोग करके ऐसे बेड पे फेंक के चले जाते हैं, सारी चीज़ों को, शूज हो या स्लीपर्स हो, उसको मेनटेन करके रखना एक महिला ही करती है। और आप फिर आकर के घर में क्या पूछते हैं शाम को कि आज तुमने
1: किया ही क्या है।
0: लेकिन तो भैया, मैं अगर मेरे से कोई भी पूछता है ना घर में, तो मैं तो यही कहती हूँ कि आज ड्यूटी चेंज कर देते हैं, आप घर पे रुको और मैं जाती हूँ शॉप पे। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि घर में बैठी हुई महिलाओं से केवल ये पूछा जाता है घर में बैठ के करती क्या हो, कौन सा काम ऐसा पहाड़ तुमने हो गया जो मतलब पूरा ही नहीं हो रहा है।
1: जी मैम, मैंने भी देखा और मैंने मैम ज़्यादातर ये देखा उन महिलाओं में पेशेंस कितना होता है, इतनी सहन शक्ति। ज़्यादातर तो पढ़ी लिखी अच्छी महिलाएं बस इसलिए रहती हैं घर में, वो एक रिश्ते को बचा रही होती हैं, उसने क्या कहा क्या सुना इग्नोर करती हैं, कोई बात नहीं। पर एक पुरुष को आपने देखा होगा थोड़े से गुस्से में वो थाली झन्ना के फेंकना, पूरे बेड पे कपड़ा फेंकना, तो उनको क्या महिलाओं की भावना को समझना चाहिए?
0: बिल्कुल समझना चाहिए। और आज मैं तो ये कहूँगी कि अभी जैसे निधि ने बोला है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, आज का रियल फैक्ट्स ऑफ टुडे होना चाहिए कि इस मान्यता को ही चेंज कर देना चाहिए, इस चीज़ को ही चेंज कर देना चाहिए कि मतलब घर में आकर के पूछते हैं कि आज तुमने किया क्या।
1: यस मैम,
0: तो इसको चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहिए कि भाई तुम घर में भी हो तो घर में भी काम तुम संभाल रही हो, पूरे घर का संभाल रही हो। तो इस लाइफ को और इस आज के रियल फैक्ट्स ऑफ टुडे को हम ये अपने हिसाब से कहना चाहेंगे, इस लाइन को बनाना चाहेंगे, सुधारना चाहेंगे कि जब भी आप अपने काम से आएं और थकी हारी महिला घर पे है, सिर्फ उनसे ये कहना चाहिए बैठो एक गिलास पानी मैं देता हूँ, आप बैठो मैं देता हूँ, ताकि उसकी जो थकान है ना वो इस प्यार भरे से दोष बोल से ही पूरी थकान उसकी दूर हो जाए।
1: जी मैम, ये आपने सही कहा। आपने ये भी देखा होगा कभी कोई खाना खाते हुए भी तारीफ कर देता है सब्जी बहुत अच्छी, तो उस महिला के चेहरे की चमक आपने देखी ही होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस छोटी सी तारीफ, आके यही आप कह सकते हैं कैसी हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही तो एक सबसे बड़ी चीज होती है, पता है कि कोई प्यार से बोल देना कि भाई देखो हाँ बड़ा अच्छा खाना बनाया है। अब भले मैं मतलब मेरा ये मानना है कि भले उस सब्जी में नमक कुछ ज्यादा ही पड़ा हो।
1: Yes,
0: हाँ, क्योंकि हाथ है, कभी कम कभी ज्यादा, बट अगर उसको प्यार से अगर कहा जाए कि रोज सब्जी अच्छी बनाती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा नमक मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, खा के देखो जरा, खा के देखो, अच्छा है कि नहीं है, तो उतने में ही क्या हो जाता है कि वो पूरा कवर अप हो जाता है। तो प्लीज एंड प्लीज आप सभी से निवेदन है, जितने भी पुरुष आज सुन रहे हैं हमारे इस सुन सहेली को, कि आप अपनी घर की महिलाओं की इज्जत और उनका सम्मान और उन्हें प्यार से ट्रीट करना, एक जैसे कहता है ना कि हर कोई काम कर लेता है, लेकिन अगर एक घर को, एक मकान को अगर घर कोई बनाता है तो वो है एक महिला। तो महिला का सम्मान करें, वरना तो फिर आपको पता ही है कि जब वो क्रोधित हो जाती है तो खाना तो दूर, घर में रहना भी एक दूभर हो जाता है, ये सभी को पता है। तो चलिए ज्यादा हम नहीं बोलते हुए एक ब्रेक की ओर चलते हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को आज लेकर के, क्योंकि आज टॉपिक्स बहुत हैं एंड मुझे तो लग रहा है कि एक घंटा भी हमें कम पड़ने वाला है निधि।
1: यस मैम, मुझे भी लग रहा
0: है। तो हाँ, तो जल्दी जल्दी आएंगे और जल्दी जल्दी सॉन्ग सुनाएंगे आपको, और जल्दी जल्दी हम आपको आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलेंगे। उसके लिए आपको सुनते रहना है 89.6 FM पे शो चल रहा है सुन सहेली। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
0: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता एंड साथ में है, आज हमारे साथ है निधि। तो भाई निधि भी हैं, लेकिन उसके पहले मैं आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं कि निधि मतलब आपने भी बचपन में बहुत सारे कैंप ज्वाइन किए होंगे।
1: यस मैम।
0: कौन कौन से कैंप ज्वाइन किए और कहाँ कहाँ पे?
1: मैम समर कैंप स्कूल में, थर्ड तक छोटी थी तो समर कैंप बच्चों का होता था, उसके बाद पिकनिक जाना होता था। ट्वेल्थ तक हो गई, फिर कॉलेज के बाद तो समर कैंप और पिकनिक
0: कहीं गुम हो गया।
1: जी मैम।
0: और गुम ऐसा हो गया कि अब जैसे लगता है कि अगर हम लोग कहीं भी कैंप के लिए सोचते भी हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कैसा होगा और माहौल कैसा होगा, क्या हो सकता है ना?
1: यस मैम।
0: तो आज मैं कुछ आपको शेड्यूल बताऊंगी कैंप का, ठीक है? जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गया है कि छुट्टियां हुई नहीं कि जो भी हैं बच्चों के कैंप्स हम लोग क्या कहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन मैं उन महिलाओं के लिए आज मैं कैंप का शेड्यूल लेकर के आई हूँ जो घर बैठे उन्हें लगता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आपके घर में स्पेस है तो आप ज़रूर से इस चीज़ को, अभी जो मैं आपको शेड्यूल बताऊंगी उस शेड्यूल से आप अपने घर के आसपास के लोगों मतलब पहले से जैसे कहते हैं ना ऐड करना शुरू कर दें। और आजकल तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हम किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी से फैला सकते हैं।
1: क्या मैम हम घर में तैरेंगे?
0: बिल्कुल घर में तैरेंगे। मैं वही तो मुझे बताना है कि आप लोग घर में ही बैठे हुए घर में ही बैठ करके आप कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कम पैसे में काफी बच्चों को एडमिशन करा के आप अपनी भी मनी मतलब अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ में उन बच्चों को एंजॉयमेंट भी करा सकते हैं। अब आप पूछिए कैसे?
1: मैम कैसे?
0: तो वो ऐसे जैसे अगर आपने कोई भी कैंप लगाया है जिसमें हम उसको कह सकते हैं बाल संस्कार हो गया या फिर शिल्प कला या फिर किसी भी रचनात्मक कैंप, तो उस कैंप को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसके लिए 3-4 ऐसी टीचर्स को लेना है। ज़रूरी नहीं है वो टीचर्स आपकी क्या कहते हैं कि किसी स्कूल में पढ़ाती हैं किसी कोचिंग में पढ़ाती हैं वैसी टीचर्स हों। आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में 2-3 महिलाएं हैं या मैक्स 2 आपने 5 महिलाओं को आपने सबसे पहले तो एक शेड्यूल एक आप कॉपी लीजिए एक फाइल लीजिए जिसमें आपने महीना भर पहले आपको बैठ करके एक शेड्यूल बना लेना है। शेड्यूल इन द सेंस कि अगर हमने 5 टीचर्स को रखा है तो एक एक पूरा जो काम है वो हमने सब में बांट देना है। जैसे मॉर्निंग में अगर आपकी टाइमिंग सुबह अगर आप लोग 6 बजे से 10 बजे तक कैंप की टाइमिंग रख रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में देखो जल्दी आ जाना और धूप से पहले चले जाना बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है, या तो फिर शाम का समय 4 बजे से लेकर के आप रात में 7 बजे तक 7:30 बजे तक लगा सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहला वाला जो शेड्यूल आएगा जिसमें आप अपनी एक प्रेयर कर सकते हैं और जो आपका सेक्शन है उसको आप बता सकते हैं जिसमें आप दिया जला सकते हैं और एक पॉजिटिव विचार बोल सकते हैं।
1: कैंप में दिया?
0: बिल्कुल। मैं बताऊं तुम्हें निधि कि अभी

0: लखनऊ गई थी और लखनऊ में मैंने 5 दिवसीय कैंप मैंने अभी किया और हम लोग हर रोज पहले सुबह मतलब जब जो टाइमिंग थी कैंप की तो हम लोग उस समय क्या करते थे कि पहले प्रेयर होती थी और ईश्वर वंदना, क्योंकि देखो निधि ऐसा होता है कि हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले अगर हम ईश्वर को याद करके उनकी प्रेयर हम करें तो वो काम में भी सफलता मिलती है और एक सकारात्मक पूरा एक वाइब बन जाती है, एक पॉजिटिव वाइब बन जाती है। पॉजिटिव वाइब का मतलब है कि बच्चों को भी लगता है कि हाँ मतलब हम एक अच्छी वाले जैसे बाल संस्कार हैं या फिर संस्कार हम सीख रहे हैं कोई, तो सबसे पहले तो आप प्रेयर में आए, उसके बाद में आपने योग की शिक्षा देनी है। मेडिटेशन और योग आजकल सभी लोगों को लगता है, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, मतलब मुझे तो लगता है जब मैंने अभी सेक्शन ये किया था लखनऊ में तो बच्चे मुझसे खुद आकर के दूसरे दिन बोलने लगे कि मैम आज आपने योगा कम करवाया। मतलब मैं आश्चर्य कर रही थी निधि कि बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम आज आपने योगा कम करवाया है।
1: मैम हम लोग से तो आप बहुत करवाई हैं कॉलेज में।
0: हाँ मैंने बहुत करवाया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा शेड्यूल था कि मैंने उसमें एरोबिक्स भी दिया हुआ था, एरोफिट एंड एरोबिक्स भी दिया था, तो टाइमिंग 2.5 घंटे की होती थी तो कभी 15 मिनट मतलब मैंने करवाया था, एक दिन का 10 मिनट छूट गया था। तो मुझे ये सोच के बड़ा अच्छा लगा कि वो बच्चे मुझसे कह रहे हैं आकर के कि मैम आज आपने योगा कम कराया। इट मींस कहने का कि बच्चे योग को लेकर के कितना इंटरेस्टेड हैं। और आप एज सुनेंगी निधि, एज उनकी थी 6 साल 5 साल, बताओ इतने छोटे बच्चे और योग के लिए इतना ज्यादा वो प्रेरित। उसके बाद में आपने बहुत सरल सरल से आपने योग करवाना है, सरल योगासन आपने देना है, एक्सरसाइज करानी है और मन को शांत करने वाले आसन करवाने हैं। उसके बाद में मैं बताऊं आपको कि एक आध्यात्म की ओर चलने की एक कोई भी टॉपिक लेना है, जैसे कि अच्छे विचार कि आप घर में अपने पेरेंट्स से कैसे चल रहे हैं और आपको मतलब झूठ नहीं बोलना है, आपको जो भी कोई अगर ऐसे मददगार लोग हैं तो उनकी मदद करनी है और दया करनी है, प्रेम करना है, कुछ ऐसी मतलब प्रेरणादायक स्टोरियां भी आपको उन बच्चों तक पहुंचाना है। उसके बाद धीरे धीरे जब टाइमिंग चेंज हो गया उसके बाद में फिर आपने पेपर क्राफ्ट ले लेना है, मिट्टी से खिलौने बनाना सिखाना, मतलब मैंने खुद भी अभी कैंप में मैंने बनाया था।
1: मैम ये बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, क्ले
0: मैं भी पूछने वाली थी निधि कि जो बच्चे बहुत ज्यादा शौक से आजकल बना रहे हैं उसको क्ले कहते हैं ना, तो क्ले से वो लोग अपना पूरा उसको मतलब बहुत टाइम बैठ के आराम से उसमें बना रहे, पर मैंने जो अभी कैंप में बच्चों से बनवाया था मैंने रियल मिट्टी से बनवाया था, जो कच्ची मिट्टी होती है ना उससे मैंने बनवाया था, दिए बनवाए थे और मतलब छोटे छोटे बर्तन बनवाए थे, मतलब बच्चे इतना खुश हो रहे थे कि कहाँ ये हमारे गांव की संस्कृति है, कहाँ एक कुम्हार इसको यूज करता है और कहाँ हम लोगों ने कैंप में इस चीज को सीखा। साथ ही साथ में पेंटिंग कराया था, बेस्ट आउट एंड आउटफिट मैंने लिया और कुछ ऐसी क्राफ्ट में सजावट की चीज़ें बनाई थी जो लास्ट डे जैसे होता है ना, जैसे लास्ट मतलब जो हम लोग के कैंप का था ग्रैंड फिनाले, उसमें हमने वही बच्चों ने जो बनाया था सजावट का सामान वही पूरा हमने उसमें डेकोरेट करवाया था। साथ ही साथ में प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें कुछ हमने बताई थी और पौधों से मतलब कैसे आप प्लांटिंग कर सकते हैं वो आप उसमें कर सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को माइक पकड़ना नहीं आता है, लोगों को फेस करना नहीं आता है, तो ये एक कॉन्फिडेंट होता है जो हम सिखाते हैं बच्चों को, सिखाते हैं कि आप पब्लिकली कैसे आकर के लोगों को फेस कर रहे हैं।
1: मैम 2-4 टिप्स हमारे लिसनर को भी आप बताएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको माइक पकड़ने में दिक्कत होती है, स्टेज पे जाते पैर कांपने लगता है।
0: आपके साथ क्या होता है?
1: मैम मैंने भी पहले फेस किया था, पहली बार मैं यही कॉलेज में ही छात्र परिषद का चुनाव था, मेरा पैर कांपा था, आपने नोटिस किया होगा
0: जी, बिल्कुल।
1: उसके बाद आपने मेरा पैर हाथ मुंह कांपते कहीं नहीं देखे होंगे,
0: कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। तो वो कॉन्फिडेंट कैसे आया?
1: आप लोग से मैम, आपकी क्लास में ज्यादातर लड़कियों को आप मोटिवेट करती रहती, यही करोगी तुम, यही करने लायक हो। मैम वो डर बैठ गया था कि क्यों मैं यही करने लायक हूँ, और जब आपकी क्लास होती थी ज्यादातर जो कॉम्पिटिशन आप ही करवाती हैं कॉलेज में, तो डांस वांसी एक दो तो मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे डर लगता था पहली पहली बार कि मैम बहुत डांटेंगी,
0: बहुत डांटेंगी कि आप कर नहीं पा रहे हो।
1: यस मैम, एक दो बार आपने डांटा भी है। नहीं निधि ऐसे नहीं, ऐसे ये हाथ ऐसे जाए नाजुकता से, मैं सोचूं नाजुकता कहाँ से लाऊं।
0: बिल्कुल। तो पता है निधि, जब हम जो टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों को डांटने के पीछे का रीजन होता है।
1: यस मैम।
0: वो रीजन और सबके सामने डांटने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। वो रीजन ये होता है कि जब हम चार लोगों के सामने बच्चे को डांटते हैं तो वो एक अंदर से उनको एक शेम होने लगती है।
1: या
0: और शेम होने का मतलब होता है कि वो क्या अब उस टीचर की बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती है, ना तो वो उनके घर में रहता है, ना वो उनका कोई भी कुछ ऐसा नुकसान किया रहता है।
1: जी,
0: लेकिन उसको मोटिवेट आखिर पुश कैसे करे टीचर, ये एक पुशिंग वाली डांट होती है कि जब हम बच्चों को डांटेंगे तो ही वो बच्चा निखर के सामने आएगा। और आज एक दिन वो था जब आपको मेरे से डर लगता था और माइक नहीं पकड़ पाते थे, और आज आप मेरे साथ बैठ करके शो कर रहे हैं। तो ये जो अंतराल, जो अंतर जो खत्म हुआ, ये आपको खुद अच्छा लग रहा है कि नहीं?
1: मैम बहुत अच्छा लग रहा है।
0: लग रहा है ना
1: जी।
0: तो बस इसीलिए टीचर्स जो होती हैं वो बच्चों को पुश करने के लिए डांटती हैं। साथ ही साथ में हम डांस क्या कहते हैं ले सकते हैं, जो कि मेरा फेवरेट सेक्शन होता है डांस का, एंड स्काउट गाइड कर सकते हैं, देशभक्ति गीतों पे डांस कर सकते हैं, एंड फिर हम कर सकते हैं रिफ्रेशमेंट यानी कि नाश्ता पानी। और आज की जैसे लास्ट में टिप ऑफ द डे और एक मॉरल स्टोरी के साथ आप अपने कैंप को खत्म कर सकते हैं। एंड जैसे अभी हमको बताया निधि ने कि हम क्या घर में एक पूल पार्टी भी कर सकते हैं। हाँ जी, पूल पार्टी भी कर सकते हैं। आजकल जब भी हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिटीज के आते हुए, जब सिटी आने वाला होता है, तो बहुत सारे जो रबड़ के पूल्स मिलते हैं।
1: यस मैम,
0: है ना। तो वो आप ले लो, आप सबसे बड़ा वाला ले लो। अगर आपके घर में छोटी जगह है तो छोटा वाला ले लो, बड़ा स्पेस है तो बड़ा पूल ले लो। और क्या ही करना है कि जगह जगह पर आप जाकर के जो भी आप जाते हैं और वहां पर आप नदियों में नहाते हैं, या फिर जैसे आप कहाँ पे मैं बोल रही थी आपको जाने के लिए, समर कैंप के लिए, नहीं समर कैंप नहीं, जहाँ पे लोग जाकर के नहाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में, तो कितना ज्यादा वो हाइजीनिक नहीं होता है वो चीजें। तो आप घर में बैठ करके कैंप कर सकते हैं और बच्चों को उसी पूल में आप इंजॉयमेंट भी फुल करवा सकते हैं। तो कम खर्चे में, कम फीस में ये ज्यादा अर्न होने वाला कैंप। अच्छा लगा
1: जी मैम। हमारे घर में भी दो बच्चे, मैं वही सोच रही थी कहाँ मैं छत पे रखूंगी या बरामदे में रखूंगी
0: जी। तो अभी आप मतलब क्या लगा आपको सुन करके कैंप के बारे में?
1: मैम समर कैंप के बारे में यही सुन के लगा कि मुझे फिर से छोटा हो जाना चाहिए।
0: अच्छा, और मतलब ये भी लगा कि हाँ हम इसको आगे चल करके हम इसको बना सकते हैं।
1: जी मैम बिल्कुल।
0: तो चलिए अब हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार निधि आपको बताएंगी आज लेडीज से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम को लेकर के वो डिस्कस करना चाहेंगी। तो अभी हम लेंगे आपसे इजाजत, छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आएंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ सुन सहेली में। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-4045-3394। 88404-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपको महिलाओं के बारे में एक ऐसी बीमारी बताने।
3: जी तो वेलकम बैक दोस्तों, आ गए हम दोनों लोग और आइए फटाफट चलते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि निधि लेकर के आई है आज। स्पेशली डिजीज है जो कि महिलाओं को लेकर के है, वो डिजीज क्या है पहले उसका नाम जानेंगे, वो क्या होती है और इसके लक्षण फिर बाद में बताएंगे। तो लेकिन ये क्या है इसके लिए निधि सबसे पहले बताएंगे।
2: मैम PCOS है।
3: ओके।
2: जो पीरियड्स के दौरान महिलाओं में अक्सर देखी जाती है। ये डिजीज होने के कई कारण हो सकते हैं,
3: जैसे
2: अनुवांशिकता। यदि परिवार में माँ बहन या किसी करीबी महिला को PCOS है तो इसके होने की संभावना बढ़ सकती है।
3: तो और क्या संभावना है इसको होने की?
2: पूरी नींद ना होना, आपका खराब दिनचर्या। ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है उनका दिनचर्या ऐसा होता है, उनकी नींद नहीं पूरी होती है। ये डिजीज इसलिए आ जाता है, पर्याप्त नींद ना ले पाना, रात तक जागना, अनियमित दिनचर्या, इन्हीं सब कारणों से ऐसी डिजीज होती हैं।
3: हो जाती है।
2: यस मैम।
3: तो क्या बताया था नाम इस डिजीज का?
2: PCOS।
3: तो ये सिंड्रोम है कोई किसी
2: प्रकार? यस मैम,
3: है ना?
2: यस मैम।
3: तो चलिए आप मुझे ये बताइए और मेरे साथ सभी लिसनर्स जानना चाहते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
2: मैम शुरुआती लक्षण में पहले आपके चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं, आपकी ठोड़ी पे बहुत सारे बाल आ सकते हैं, कुछ महिलाओं में ये देखे जाते हैं।
3: फेस पे मतलब ज्यादा?
2: यस मैम, आपके फेस पे बहुत सारे दाने निकलने, आपका बाल झड़ना, चिड़चिड़ापन, इन सब कारणों से ऐसी बीमारियां होती हैं। पर इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है।
3: नॉर्मल प्रॉब्लम है।
2: डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, आप अपना खान पान सुधार करके आप ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपके पीरियड्स आने में कमी हो सकती हैं, आपको मंथली आ रहे होंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 15 दिन रुक के या 15 दिन बाद आएगा। इससे कुछ महिलाएं घबरा जाती हैं, तो कुछ महिलाएं अपना जो घरेलू उपचार होता है
3: वो करने लगती
2: हैं। यस मैम, जिससे वो समस्या और बढ़ जाती है। पर आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर को दिखाएं, जिससे ऐसी बीमारियों से आप बच सकें। और स्पेशली महिलाएं जो अपना ध्यान नहीं देती हैं,
3: पूरा दिन काम में बिजी रहती हैं।
2: जी मैम।
3: नॉर्मल सी मतलब इसको कोई भी वो मान करके उसको टालती रहती हैं।
2: या घर में कोई ऐसी भी महिला होती हैं, हमारे समय में तो ऐसा होता था कोई डॉक्टर, पर अब ऐसा नहीं है। आपका दिनचर्या अलग होता है, आप जॉब करती हैं, आती जाती, और पहले की महिलाएं जो होती थी उनका स्ट्रेंथ अलग होता था, आपका अब अलग है।
3: वाकई ये तो बहुत ही अच्छी बात बोली कि स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है।
2: यस मैम।
3: खान पान में मिलावट के कारण या फिर रूटीन जो सही नहीं होने के कारण।
2: यस मैम।
3: और इसका उपचार क्या है निधि?
2: मैम उपचार में है, आप अपने खान पान पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। आपको सुबह उठ के योगा करना है। पीरियड्स के दौरान भी डॉक्टर सलाह देते हैं योगा करने का,
3: हल्की।
2: यस मैम, हल्की योगा करने का। पर उस समय लोग बहुत बराते हैं कि नहीं मुझे नहीं चलना, पर ऐसा नहीं होता है।
3: हल्की योगा उसमें कहा गया है।
2: यस मैम,
3: ज्यादा प्रेशर ना पड़े।
2: हाँ। और आपका खान पान नियमित हो, ये नहीं सुबह आपने खा लिया है उसके बाद आपको फिर रात में ही खाना है। आप फल ज्यादा से ज्यादा खाएं और अपना ध्यान रखें, और आप अनार सेब ऐसी चीजें जरूर खाते रहें।
3: बिल्कुल। और मतलब जैसे लगे कि आपको अगर जरा सा भी अगर वीकनेस लग रही है तो आप फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने आप को हेल्दी बनाने का पूरा साधन आपको जुटाना है।
2: यस मैम, ये बीमारी लड़कियों में या महिलाओं में होती है, तो महिलाओं में तो थोड़ी आम मान, पर अभी कोई मेरी बेटी है या मैं किसी की बेटी हूँ माँ को, तो वो बहुत घबरा जाती है। पर ये कोई दुर्लभ बीमारी ऐसी नहीं है कि आपको हो गई है
3: तो अब उसका कोई निवारण
2: ही नहीं है। डॉक्टर से संपर्क करें और दिखाएं।
3: हाँ बिल्कुल, और इसके बारे में कोई जानकारी निधि आप देना चाहती हैं?
2: यस मैम, मैंने जो देखा है कि ऐसी बीमारियों में आपको सबसे ज़्यादा बरतनी होती है सफाई। आपको इन्फेक्शन भी कभी कभी हो जाता है, उस वजह से भी आपको दिक्कत होती है, आपके पीरियड्स कभी लेट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप डर जाती हैं। हाँ। आपके अंदर पानी की कमी, खून की कमी की वजह से भी ऐसा होता है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। और वो महिलाएँ जो घर पर रहती हैं सबसे ज़्यादा पहले अपना ध्यान नहीं रखती हैं, और कुछ महिलाओं को मैम ये बीमारी होती है और उनको पता भी नहीं चलता क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखते, उनको अपना वो डेट ही नहीं याद होता। हाँ, है
3: कि मतलब क्या है क्या नहीं।
2: यस मैम, अपनी देखभाल सबसे ज़्यादा करें और स्वस्थ रहें, ऐसी ही ये बीमारी से बचा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा आप खान पीन पर ध्यान दें।
3: मतलब ये संपूर्ण जानकारी जो आपकी अभी निधि ने दी है, ये महिलाओं के स्वस्थ रहने की ओर ये एक बहुत बड़ा पहला कदम है। तो आप सभी लोग जो लोग भी सुन रहे हैं इसको ज़रूर से इसकी जांच करें, और अगर किसी को भी आपके घर में है या घर के आसपास है तो प्लीज़ उसका ज़रूर से ज़रूर इसका निदान ज़रूर करवाएँ। तो निधि, इस टॉपिक पर और आपको कुछ बोलना है कि हम चले एक लिसनर्स को एक गाना सुना दें?
2: मैम गाना ही सुना दीजिए,
3: आपको भी गाना सुनना है मुझे लग रहा है, आपके फेस से लग रहा है कि मैम एक गाना सुनना है। तो चलिए लिसनर्स एक गाना सुना देते हैं, लिसनर्स के साथ साथ मैं निधि को भी सुनाने जा रही हूँ, और उसके बाद आएंगे हम जो कि अमूमन ये प्रॉब्लम सभी लेडीज में होती है एनीमिया की, तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसका निवारण क्या है, हम उस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बस हम यूं गए यूं आएं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आरजे समता एंड हमारे शो में अभी तक बने रहे उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स कुमार जी, मनीष शर्मा एंड आकांक्षा जी और प्रबल जी एंड मुझे दिख रहे हैं तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। सबलू जी, मनीष शर्मा जी, इम्तियाज अहमद, शैलेंद्र जी, मुकेश यादव जी, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और अब तो हम बाय बाय करने का भी टाइम आ गया है, लेकिन आप सभी हमारे शो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए तो आते हैं निधि के पास फिर से नए टॉपिक की ओर, जो कि आज का टॉपिक जो कि सभी महिलाओं में पाया जाता है अमूमन एनीमिया, है
4: ना? यस मैम, एनीमिया यानी खून की कमी
3: जो सभी औरतों में बहुत रेयर ही होता है जिसमें 10 के ऊपर ब्लड पाया जाता है। मतलब
4: yes,
3: मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेयर ही महिलाएं होंगी जिसके अंदर बॉडी में 10-12 ऐसा पाया जाता है, वरना 10 के अंदर ही सब में ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन।
4: यस मैम, जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है, इस वजह से व्यक्ति को थकान, चिड़चिड़ापन। आपने ज़्यादातर महिलाओं को देखा होगा कि थोड़ी देर ही काम करती हैं और फिर पैर दर्द, पीठ दर्द, और इसमें सबसे ज़्यादा सर दर्द महिलाओं में ज़्यादातर आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा सर दर्द होता रहता है।
3: तो ये मतलब क्यों होता है, ये पहले मैं जानना चाहती हूँ।
4: आप सीजनली फल या सब्जियां नहीं खा रही होती हैं, इसलिए हो जाता है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं में इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं अपना ध्यान नहीं दे रही होती हैं। खून की कमी का सबसे बड़ा स्रोत यही है, उनके बेबी सो जाते हैं तो जो पौष्टिक चीज़ होता है उनके बच्चों के पास चला जाता है।
3: बिल्कुल,
4: उस हिसाब से अपने आप को नहीं ध्यान देती हैं।
3: लेकिन दीदी, बेबी तो बाद में, लेकिन मैंने सुना है कि गर्ल्स को भी सबसे पहले प्रॉब्लम ये एनीमिया की हो जाती है, तो क्या वो अपना डेली रूटीन नहीं ठीक से फॉलो करती हैं?
4: और yes, ma'am.
3: जो टीनेजर्स होती है ना, उसमें तो और भी खाने पीने को वो लोग वैल्यू नहीं देती हैं, कभी कुछ खा लिया। और आज की जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा,
4: yes, ma'am, आपने सही कहा,
3: जंक फूड में ज्यादा इंटरेस्ट होना
4: ये सबसे बड़ा कारण यही है।
3: फल फ्रूट्स नहीं खाना, जूस नहीं लेना, तो इन सभी से तो ब्लड बनेगा।
4: नो मैम, सबसे ज़्यादा ये फास्ट फूड और आजकल की आपने यंग जनरेशन को देर रात तक जागना, पर्याप्त नींद ना हो पाना, खराब दिनचर्या की वजह से सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम होता है, और जो लड़कियों में होता है इसी कारण होता है। और महिलाओं का तो रूटीन वैसे भी दिनचर्या उनका इतना व्यस्त रहता है कि वो खुद के प्रति ध्यान नहीं दे पाती हैं।
3: ये तो बिल्कुल 100% है। तो क्या इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं?
4: यस मैम, जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपका पैर दर्द हो रहा है और पैर के सबसे नीचे आपका तलवा जलने लगता है, जब आपका तलवा सबसे ज़्यादा जलने लगे, आपको बहुत जल्दी थकान, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपने खान पान में सुधार करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर दवा देगा और आपकी ये खून की कमी पूरी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रयास करें कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े।
3: हाँ, अपने आप से ही आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते रहें। तो ऐसा मैंने सुना है कि जैसे जिन महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि गुड़ और चना खाया जाता है, खजूर की मात्रा बढ़ा दें, छुहारे क्या कहते हैं कि खाएं, हरी साग सब्जी जो होती है
4: पत्तेदार,
3: हाँ पत्तेदार ज्यादा करें, तो इससे जो ब्लड की कमी है वो दूर होती है।
4: सबसे पहले मैम, आपने जो कहा चना और गुड़,
3: हाँ।
4: सबसे अच्छा स्रोत है खून बढ़ाने का चना और गुड़। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे या वैसे आपने देखा होगा पहले प्रसाद में चना और गुड़ दिया जाता था, पर आजकल की जनरेशन ना चना गुड़ खाना पसंद करती है और महिलाओं का दिनचर्या ऐसा होता है कि वो चना गुड़ सुबह बैठ के खा नहीं सकती।
3: आराम से बैठ के तो खा ही नहीं पाएंगे,
4: बिल्कुल नहीं। यस मैम,
3: लेकिन मैंने सुना है कि चना गुड़ और किशमिश अगर सुबह को खाया जाए नियमित रूप से, ज्यादा नहीं बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप काम करते करते भी आप खा सकते हैं।
4: यस मैम,
3: कौन कह रहा है कि आप बैठ करके आराम से खाओ, एक मुट्ठी से भी कम आप पहले शुरू कर सकते हैं।
4: yes,
3: और थोड़ा सा गुड़ आपने सुबह खाली पेट खाना अगर शुरू कर दिया किशमिश के साथ में, तो
4: yes,
3: इसका जो प्रभाव है ये बहुत ज्यादा होने लगता है। और डॉक्टर से संपर्क बिल्कुल आप बनाए रहें ताकि ये चीजें आपको आगे इसकी प्रॉब्लम ना हो। एंड और निधि
4: मैम, जो आपने किशमिश कहा, विटामिन सी वाले फल इसमें सबसे ज्यादा खाने होते हैं, नींबू, संतरा, आंवला।
3: बिल्कुल, अगर आपको कमी है तो विटामिन सी जिसमें होता है वो आप भरपूर मात्रा में इसको लेना शुरू करें।
4: यस मैम,
3: तो थैंक यू सो मच निधि, आज आपने बहुत अच्छे से साथ दिया। एंड एग्जैक्टली अगर आप नहीं आते तो मैं शो नहीं कर पाती।
4: थैंक यू मैम
3: जी। और ऐसा लिसनर्स भी कह रहे हैं कि अगर निधि नहीं आती हैं तो मैं शो नहीं कर पाती, क्या इसका सही है ये बात?
4: नो मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
3: बिल्कुल नहीं है, तो कोई बात नहीं। बट आपको अच्छे से हम लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ गेस्ट जो भी आते हैं तो उन्हें नवाजते हैं, तो थैंक यू सो मच निधि। चलिए अब हम यहाँ लेंगे एक आपसे ब्रेक, और ब्रेक में ही हम आएंगे आपसे टाटा बाय बाय करने के लिए, और निधि को हम जाते हैं बाहर तक छोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच निधि।
4: थैंक यू मैम।
3: तो चलिए अब चलते हैं एक गाने की ओर, और जो कि आप सभी का फेवरेट सॉन्ग और मेरा भी फेवरेट सॉन्ग, जो कि चलते चलते यूं ही मेरे गीत याद रखना। इस प्यारे से गीत को सुनेंगे और बीच में आऊंगी आपसे बाय करने के लिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: अरे सुना
11: क्या?
10: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
11: वाओ!
10: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
12: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
13: मतलब?
12: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
14: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
15: तो घड़ी में बज गए हैं पूरे 3:06, यानी कि वक्त हो चला है आपके फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा का, और मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त आरजे कांक्षन, लेके आ गई हूँ आपका वही वाला कार्यक्रम जिसमें

के सॉन्ग्स में से एक और सॉन्ग आज हम प्ले करने वाले हैं किसी की यादों में, क्योंकि भैया जब याद सताती है तो नींद भी गुल हो जाती है। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, और अगर आपको कॉल करना है तो कॉल कर लीजिए, और ट्यून करके रखा तो आपने पहले से ही 89.6 FM को, उसी का स्टूडियो का नंबर है 6393316429 यानी के 6393316429। फिलहाल पहुंचाते हैं हम आप तक अपनी पसंद का ये प्यारा सा नगमा, फिर आते हैं आज की पहली डिमांड के साथ में। बने रहिए, कहीं जाइए नहीं, और सुनते रहिए आपके ही पसंद के, आपके द्वारा सजाए गए ये प्यारा सा शो। फिलहाल एक कॉल आ गई, हम कॉल लेते हैं, आप एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

की पहली डिमांड पे अब हम आगे बढ़ते हैं। 3:13 हो गए हैं, लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही थी और एडिटर मेरे पास में सब छुट्टी पे गए हुए इसलिए थोड़ा सा वक्त ले लिया हमने, माफ करिएगा, एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा बजा दिया है। और चलते हैं आज की पहली डिमांड की ओर, और ये डिमांड मेरे पंडित जी की है, आइए इसको एंजॉय करते हैं और उसके बाद आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के, जो की होगी हमारे अजीत साहब की, फिर होंगी समरीन जी और उसके बाद होंगे हमारे राकेश वर्मा जी, जो हमें सुनते हैं हमारे दुखरना से।

हाँ जी, और जब किसी के दिल में बस कोई खास होता है तो जाहिर सी बात है उसकी दुनिया वही हो जाता है। और अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट डिमांडर की डिमांड की ओर, और ये डिमांड हम तक पहुंचाई है मुंबई से अजीत साहब ने। और अजीत साहब को सुनना है भाई उमराव जान से वो गाना जिसमें भाई एक ही वर्ड में, मतलब एक ही सेंटेंस में इंसान सब कुछ कह जाता है। वो क्या कहता है, आइए आप भी सुनिए हमारे साथ में।

सर को पहचानिए ना पहचानिए, लेकिन एक नंबर जरूर याद कर लीजिएगा और अपने सेल फोन में डायल करके रखिएगा। जी हाँ, कॉल डायलर, डायलर कॉल क्या बोलते थे उसे बचपन में, हमारे पास जब वो वाला फ़ोन हुआ करता था ना, वो कीपैड वाला, तो हम यूज़ करते थे। जी हाँ, अगर आपको किसी को याद हो तो ज़रूर बताइए। फास्ट डायलर बोलते थे, क्या बोलते थे मैं भूल गई हूँ। हाँ, तो ये नंबर है आपके स्टूडियो का 6393316429। फिलहाल चलते हैं इसी पे आए हुए एक डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे समरीन जी की, और समरीन जी के बाद होंगे हमारे राकेश वर्मा जी जो हमें सुनते हैं हमारे दुख रन्नाथ सही।

होंगे यार। क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारे सुधी सर, रोमांटिक वाला सॉन्ग अभी आपने एंजॉय कर लिया है समरीन जी की डिमांड पे। और अब आगे बढ़ते हैं, अपनी गड्डी को अगारते हैं और बजाते हैं ये वाला गाना। आइए सुनते हैं मिलके बाजीगर मूवी से ये प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग।

व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग दोस्तों, 90s हिट्स में से एक अभी आपने एंजॉय कर लिया है। बड़ा ही खूबसूरत सा नगमा था भाई राकेश वर्मा जी की डिमांड में। बाजीगर मूवी का वैसे लगभग सॉन्ग बड़ा ही प्यारा प्यारा है। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे पास में आई है सुनील कुशवाहा जी की ओर से और साथ ही साथ में हमारे प्यारे मुकेश जी की ओर से। सुनील कुशवाहा जी हमें सुनते हैं एमपी से और हमारे मुकेश जी सुनते हैं हमारे दिल से। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आप दोनों की डिमांड हम तक पहुंची और सुनाते हैं आप सभी को इन दोनों की डिमांड पर ये बहुत ही प्यारा सा गाना। और वैसे गाना सुन लीजिए, फिर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिलहाल 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय करें आपकी अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में। शो है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा।

क्या बात है भाई, मजा आ गया ये गाना सुन के हमको तो। थैंक यू सो मच सुनील कुशवाहा जी, और साथ ही में हमारे मुकेश जी। पता नहीं कि मुकेश जी को हम पीछे से मेरा मन करता है बोल दे मुकेश दा, मजा आ जाएगा। क्या मैं आपका नाम रख सकती मुकेश जी? अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज बोलिएगा। वैसे मैंने कई सारे नामकरण किए और आज से मैं बुलाना चाहती हूँ आपको मुकेश दा, मजा आएगा मुझे। हाँ, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कहा था भाई इस गाने पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन बस इतना सा है कि मौके की तलाश मत करिएगा जनाब। मोहब्बत जब भी लगे आपको और अगर आपको इजहार करना उचित लगे फटाक से बोलिएगा, पर सामने कुछ भी हो निडर हो के आप अपने दिल से तो हल्के हो जाएंगे कह देंगे। और अगर हो पाए आपसे, अगर आप ऐसी वाली मोहब्बत आपको मालूम है कि नहीं पूरी होनी है, नहीं मिलनी है, तो बस एक तरफा मोहब्बत करिएगा क्योंकि वो हमेशा जवान रहती, कभी उसमें बुढ़ापा आता ही नहीं है। बाकी चॉइस इज योर्स लाइक ऑलवेज। और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले लेना चाहेंगे आप सभी के पैगाम को। जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संतोष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा इट्स कुमार साहब है हमारे एमपी रीवा से, और इनका भाई हमने लिंक देखा इसलिए हम थोड़ा सा सकपका से क्या बोले, हमारी जबान लड़खड़ा गई। सभी ने नीला लिंक भेजा, इन्होंने व्हाइट लिंक भेजा है, व्हाइट लिंक कभी खुलता नहीं इसलिए इन्होंने कहा परमानेंट मेरा यही गाना रहेगा, आप जब प्ले करना चाहे कर लीजिए लेकिन खुलेगा तो, यानी तो आप बजा ही नहीं पाएंगी। वाह, व्हाट अ इंटेलिजेंट पर्सन यू आर, थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ में है प्रबल मिश्रा जी उर्फ पंडित जी, और नीना जी हैं हमारी, जी हाँ हमारी चंगू जी हैं हमारे दिल से यानी गोंडा से, राम भवन जी हैं बबनान गोंडा से, मनी शर्मा जी हैं भटपुर से, और इसके अलावा नेक्स्ट लिसनर है हमारे चैट बॉक्स में बनी हुई नेहा जी बहराइच यानी भाई मंगू जी। ओके, दृक्षा अंसारी जी भी हैं भाई सीतापुर से, और इन्होंने हमारा प्यारा नाम भेजा है वही वाले रिवाज के साथ में, एक प्यारे से गुलाब और एक प्यारे से रेड कलर के हार्ट के साथ में। डियर गुलाबों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दृक्षा जी अपना हालचाल जरूर मेंशन करिए, आपका हालचाल नहीं मिला है काफ़ी दिन हो गए भाई। मुस्तफ़ा जी हैं सऊदी अरेबिया से अपने नीले वाले लिंक के साथ में, कोशिश करेंगे मुस्तफ़ा जी अगर आज आपका सॉन्ग हो पाएगा तो ज़रूर प्ले करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे साथ में हैं अब्दुल मुजीम साहब जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। इस जिंदगी के सफ़र में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहाँ इल्ज़ाम बहुत है। ओहो, गौर फरमाइएगा, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहाँ इल्ज़ाम बहुत हैं, शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। ओके, शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। ओ माय गॉड, जिंदगी की हकीकत बयां करता हुआ ये प्यारा सा पैगाम हमारे पास आया हुआ था अब्दुल मुजीम साहब की ओर से, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। मोहम्मद चांद है हथियागढ़ से, लिखते हैं चांद टेलर हथियागढ़। ओके, मोस्ट वेलकम। और सलू सावन जी हैं सेस इंडिया से और मुंबई से जुड़े हुए हैं, लगातार आप सभी की कॉल्स भी आ रही है इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नगमे की ओर बाकी के मैसेज जस्ट इस गाने के बाद। और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है निजाम साहब की, निजाम साहब को सुनना है हम तुम्हें इतना प्यार नहीं करेंगे, हम तुमसे इतना मार करेंगे, इतना मार करेंगे कि फिर बाद में पिराएगा और हम खुद ही आके उपचार करेंगे। नहीं जी, थोड़ा सा मजाक था। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में इस प्यारे से नगमे के साथ। 3 से 4 के सफर में आपके होस्ट हैं दोस्त आरजे कांक्षा, एंजॉय करते रहिए आपके अपने शो क्वालिटी गुंडा को।

हाँ जी, और अभी निजाम साहब की डिमांड के बाद ये डिमांड हमारे बादल जी की ओर से आई हुई है। बादल गोयल साहब को सुनना है दगाबाज रे तोरी नैना बड़े दगाबाज रे, और इस गाने को हम समर्पित करते हैं अपने देवी प्रसाद जी को। देवी प्रसाद जी, आपका गाना आज हम नहीं प्ले कर रहे हैं, आपके लिए स्पेशली ये गाना।

हाँ जी, और बादल जी की इस प्यारी सी डिमांड के बाद में अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और जिसको हमने समर्पित किया था हमारे प्यारे इंडिया वाले दीप प्रसाद जी को। और नेक्स्ट डिमांड है हमारे पास में सबीहा जी की। सबीहा जी के सॉन्ग को पूरा करेंगे, उसके बाद आएंगे बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लेके 90s हिट से राम भवन जी की डिमांड को। फिर होंगे हमारे आमिर जी, फिर होंगे मोहम्मद वारिस जी, कुमार जी नहीं रमेश कुमार जी फ्रॉम महाराष्ट्र। उसके बाद बहुत सारे लिसनर्स की बहुत सारी डिमांड आई हुई है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए ये प्यारा सा नगमा हमारी प्यारी सबीहा जी के डिमांड पे बारिश के आने से। आगे आप खुद ही सुनिए, हम क्यों बताएं, हम सब बता देंगे तो सुनेंगे क्या? जी हाँ, एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर में इस प्यारे से नगमे को।

दोस्तों आज के मैसेजेस पढ़ पढ़ के भाई मेरा दिमाग एकदम से हिल गया है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं किस किस को, सभी को क्या एक ही गाना समर्पित कर दूं। भाई मेरे पास में दरक्षा जी हैं, इर्ष कुमार साहब है, बबीता जी हैं और ऐसी बहुत सारे लिसनर जिनका कहना है हमको भी कहीं ऐड कर लीजिए। तो आप सभी को ऐड करते हैं आप सभी के पसंद के हिसाब से, आप सभी के टेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे राम भवन जी के सॉन्ग में अपनी बबीता जी को, क्योंकि बबीता जी ने कई दफा ये सॉन्ग की डिमांड भी की है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को सभी हजी के ट्रैक के बाद।

भवन जी और बबीता जी के चिपकाए हुए मतलब गाने में बबीता जी को मैंने मतलब चिपका दिया है, ऐड कर लिया है इस गाने में। इस गाने के बाद बढ़ते हैं एक और चिपकावन नाच वाले गाने की ओर। हाँ जी, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है चांद मोहम्मद जी की, जो मैं सुनते हैं हाथियागढ़ से। और इस गाने में हम ऐड करेंगे कुछ महापुरुषों को, हमारे कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स को, जिसमें है सबसे पहले तुम्हारे एमपी वाले इट्स कुमार साहब फ्रॉम एमपी रीवा, और ये आप पे पूरा सूटेड सॉन्ग है इसलिए। इसके अलावा आयत जी, जो हमारी प्यारी सी नन्नी सी मुन्नी सी बहुत छुटकी सी लिसनर है, और इसके अलावा इरफान जी जो हमें सुन रहे हैं दरक्षा जी के घर से यानी कि सीतापुर से। चलिए इन सभी के नाम ये सॉन्ग पहुँचाते हैं। ओल्ड वर्जन वाला क्या है आप खुद ही सुनिए ना, हम नहीं बताने वाले। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: जी हाँ, और हमने तो पहचान लिया है कि आप सभी के सभी हैं डॉन, और एकदम से रॉब वाली स्टाइल में अपनी लाइफ को जिएगा, एकदम से खुश रहिएगा, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिएगा, और अपने दोस्तों के काम आते रहिएगा। भाई यही तो जीवन का फलसफा है, फंडा है, लाइफ को बहुत ही अच्छे से अगर जीना हो आपको तो। लाल बनेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और वक्त हमने देख लिया है कि 3:45 हो ही गवा बा हमारे घड़ी वही है ना, और वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है भाई। डिमांड बहुत सारी है और बहुत सारी रह जाने वाली है, पहले से माफी मांग ले रहे हैं भाई। आप लोगों की नाराजगी हम तक आए उससे बेहतर हम खुद ही बता दे रहे हैं कि डिमांड आज बहुत सारी है, लेकिन बढ़ते हैं क्रमबद्धता से नेक्स्ट डिमांड की ओर। अमित जी की डिमांड हमारे पास में, फिर होंगे मोहम्मद वारिस जी, फिर होंगे मैं रमेश कुमार जी महाराष्ट्र से, और फिर देखते हैं नेक्स्ट डिमांड किसकी प्ले करते हैं।
1: तुम आंखों से बताना हम समझ जाएंगे।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत डिमांड है अमित जी, थैंक यू।

भाई ये तो कहीं ना कहीं रिश्ते की शुरुआत और अंत सब कुछ बता देते हैं। आंखों की बात हो और हल्के से शर्माने की बात हो, बहुत गहराई का प्रेम होगा तभी ऐसा कुछ होगा। और वाकई आंखों का पढ़ना, आंखों का कहना, उफ उफ।

बात है भाई, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था अमित जी, इसके एक एक वर्ड का बहुत गहरा मतलब था। और क्या बोलूं मैं, हम बिगड़ जाएंगे। क्या बात है, तुम आदत बन जाओ, हम बिगड़ जाएंगे। ओफ ओफ ओफ, क्या बोलूं मैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के लिए। और डिमांड है मोहम्मद वारिस जी की, और इनका कहना है, इनके गाने के बोल है, अभी अभी 16 बरस की हुई हूँ, और इनका कहना मैं 16 प्लस हूँ, 16 प्लस नहीं 16 प्लस हूँ। चलते हैं, सुनते हैं इस डिमांड को। जी हाँ, इंग्लिश बाबू देसी मेम से ये गाना। उसके बाद हमारी चंगू मंगू की प्यारी सी डिमांड भाई, चंगू मंगू की डिमांड आई है। ओहो

क्या बात है भाई, ये हर एक स्त्री के दिल का दुख बयां करता हुआ गाना था हमारी चंगू मंगू जी की ओर से, यानी कि नेहा जी और नीना जी की जोड़ी की ओर से। और अभी हम बढ़ेंगे मुस्तफा जी की डिमांड की ओर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बड़े दिनों से इनकी डिमांड रह जाती है, इनकी डिमांड को कम्प्लीट करेंगे। फिर आएंगे हम रीना शर्मा जी की डिमांड को लेकर रुड़की उत्तराखंड से, और इसी में ऐड करेंगे एहसान साहब आपको। आपकी डिमांड नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे पता है आपका टेस्ट है ओल्ड सॉन्ग का, इसलिए इसमें हम आपको ऐड करना चाहेंगे। एंजॉय करिए फिलहाल, ये बड़ा ही प्यारा सा नगमा है भैया।

अब हम चलते हैं अपनी रीना शर्मा जी की रिमांड की ओर और प्रेम मौर्य जी भी हमें लगातार सुन रहे हैं सीतापुर से और इसी में हम ऐड करेंगे एहसान साहब आपको भी और इस नगमे के बाद हम आएंगे अपने मनी शर्मा जी के सॉन्ग के साथ में। तो नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे अरविंद मौर्य जी की जो हमें सुनते हैं मनकापुर से। वक्त हो गया 3:55, भैया हम कौन कौन सी डिमांड बजाएंगे हमको भी नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं।

इतनी भारी भरकम कोशिश करने के बाद भी एक घंटे में इतनी सारी डिमांड तो हमसे कंप्लीट होने से रही। लगातार काफी कॉल्स भी आती रही जो मैं उठा नहीं पाई, उसके लिए मैं भी माफी चाहूंगी। और जिन जिनकी डिमांड आज रह जाने वाली है उन सभी के लिए माफीनामा जारी करते हैं। मोहिनी तिवारी जी, उसमें सबसे पहला नंबर आपका है। नेक्स्ट है हमारे साथ में मुमताज अंसारी साहब, और फिर है हमारी सबा जी, राजू सलमानी जी, रोशन लाल जी पटेल नगर से, और इसके अलावा है हमारे बीच में शशि जी और आदर्श जी। इतनी डिमांड हमसे आज छूटने वाली है, आई एम सो सॉरी। एक घंटे का ही शो होता है, इससे ज्यादा मैं कोशिश करूं तो भी नहीं हो पाएगा। कल आप फिर से ट्राई करिएगा।

वैसे हमारे कुछ लिसनर बहुत समझदार हो गए हैं, कहते हैं हमें चिपका दीजिए कहीं भी, तो पता होता है कि गाना बजेगा नहीं, तो हमारी पसंद का कोई भी टेस्ट का गाना आप प्ले कर दीजिएगा। इसी तरह से हमने ऐड किया हमारे एहसान साहब को इस प्यारी सी डिमांड में, और अब मनी जी की डिमांड, इसके बाद आज की लास्ट डिमांड होगी अरविंद मौर्या जी की फ्रॉम अमन कपूर।

अनिल वर्मा जी सैदापुर से लिखते हैं, लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं, ओ माय गॉड सच में, अब उन्हें कौन समझाए कि मुस्कुराने की वजह है एफएम गुंडा। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। फिलहाल इस गाने को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा आइटम सॉन्ग है बट टेस्ट बेस्ट है, और इस गाने के बाद में बढ़ेंगे आज की लास्ट डिमांड के साथ में। और यहीं से लेती हूँ मैं आप सभी से इजाजत, क्योंकि वक्त कम है, तो मैं चाहूंगी गाने को प्ले कर दे। मिलेंगे कल के शो में आपके अपने, हाँ जी, कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में और मुमताज अंसारी जो और कुछ डिमांडर मारे हैं जिनके गाने लगातार रह जा रहे हैं काफी दिनों से, तो उनके गाने को हम पहले प्ले करना चाहेंगे। बाकी की डिमांड्स अगर कल छूट जाए तो कोई बात नहीं, हर दिन आगे पीछे तो चलता रहता है ना बॉस। फिलहाल अब मैं चलती हूँ और सुनते रहिए रेडियो गाना सिटी 9.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन। बाय बाय।

0: तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
1: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।
2: मेड फॉर इच अदर।

0: अपने आप को रोमियो समझते हो?
1: उसे प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ।
0: लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर मरोगे।
1: I just want flirtationship.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। Now you're listening, ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सो हर रोज गोधली में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं और हर रोज की पर्सनैलिटी में अपनी एक खास बात अलग होती है। तो आज भी जो हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं, उनकी भी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। उनसे आज बहुत कुछ उनकी बात के जरिए जानने को समझने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हर गेस्ट के बारे में हम पहले की जिंदगी हुई बातों को करते हैं और उसके बाद उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आज हम अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधुली।
1: जी धन्यवाद, और आपको भी और पूरे ज्ञानस्थली परिवार को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया। और इस कार्यक्रम से पूरा जो गोंडा शहर है और जो पूरा जिला है इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि ये एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे मोटिवेशन और मार्गदर्शन की बहुत समस्या होती है। तो मैं आपके कार्यक्रम मैंने सुना है, एक दो प्रोग्राम सुना है, उससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा होगा, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और वो देखेंगे कि क्या क्या फील्ड हैं और उस क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ज्ञानस्थली परिवार।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साइड से भी और ज्ञानस्थली परिवार की तरफ से भी। और जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
1: सर मैं यही गोंडा जिले में एक गाँव है तिनोना मंगरावा करके, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। काफ़ी बैकवर्ड एरिया है फिलहाल, और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, और उसके बाद मैंने जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको गांव से थोड़ी दूरी पे था, 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैं मनकापुर चला गया, AP इंटर कॉलेज। तो वहाँ से इंटरमीडिएट के बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुझे गोंडा आना पड़ा, और मैं चाहता था बाहर निकलूं किसी अच्छे जगह से और अच्छी शिक्षा करूं, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियाँ नहीं थी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके की नहीं थी कि मैं गोंडा से बाहर जा पाता। तो मैं गोंडा आ गया और यहीं पर एडमिशन ले लिया LVS डिग्री कॉलेज में।
0: ओके, तो ये तो आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, इस पे भी हम वापस सभी लौटेंगे। अपने माता पिताजी के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में।
1: सर हम लोग 9 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई। और माता पिता हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और पिताजी की भी बहुत अच्छी सर एजुकेशनल बैकग्राउंड हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं है। पिताजी नहीं पढ़ पाए थे, वो कुछ उनकी परिस्थितियाँ उस समय रहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लेकिन कक्षा 5 तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी
0: जी।
1: तो वो चाहते थे कि हम सब लोग पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया। बड़े भाई को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते थे, और हाई स्कूल में वो फेल हो गए और उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई को।
0: ओके।
1: तो फिर मेरा नंबर था, बहनें सभी बड़ी थी, उन लोगों की बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई
0: जी,
1: कि उस समय गांव में उतनी सुविधा भी नहीं थी और उनको बाहर लोग भेजना नहीं चाहते थे लड़कियों को, तो प्राथमिक शिक्षा उन लोगों की हो पाई और मैंने कोशिश की और अभी आगे बढ़ा और लगभग जो शिक्षा की उच्चतम डिग्री होती है वो मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, पीएचडी मेरी चल रही है अभी।
0: क्या बात है, यानी आपने अपने घर में भी सबसे ज़्यादा आप ही ने पढ़ाई की है।
1: हाँ जी बिल्कुल। मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो घर में हाई स्कूल पास किया था।
0: ओके।
1: और इसके पहले कोई इस तरीके राउंड नहीं थी।
0: ओके। तो अभी तो नो डाउट मतलब आपके माता पिता आपके भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता होगा आपको इस जगह देख के जहाँ पे भी अभी आप हैं, और साथ ही साथ अब आपके हम थोड़ा सा बचपने में बात करेंगे
1: जी।
0: बचपन से आपका स्वभाव कैसा था, थोड़ा चुप चुप मिजाज के थे आप या शरारती थे, कैसे थे आप?
1: नहीं सर, मेरा जो अभी मिजाज है ऐसे पहले भी था, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है।
0: अभी थोड़ा तो मुस्कुराता चेहरा है आपका।
1: हाँ, मुस्कुराता चेहरा है और ऐसे मैं पहले भी था, लोगों से ज्यादा मैं घुल मिल नहीं पाता था, थोड़ा शर्मिलापन था और अभी भी है, उसको मैं फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ
0: जी,
1: धीरे धीरे चीजें मैं सोच रहा हूँ कि
0: अंतर्मुखी जैसे कहते हैं एक पर्सनालिटी थी क्या। अच्छा। So, श्रोताओं हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि गेस्ट के बारे में पूछने का हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए हमारे आपकी तरह ही ये होते हैं, कोई बहुत टॉकेटिव होते हैं ज्यादा बोलने वाले, तो कोई अंतर्मुखी होते हैं जैसे कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी पर्सनैलिटीज आती है वो अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रही है।

0: कोई दिक्कत नहीं है।
1: मतलब आपको टीचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती?
0: नहीं, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये पब्लिक जो फेस करना होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक फिगर तो आप ऑलरेडी हो गए हैं, बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है भाई, एक आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर
0: जी।
1: आप ये हमको बताइए कि आप 9 भाई बहन थे
0: जी,
1: ठीक है, और आपने कहा आप थोड़ा शर्मीले किस्म के थे
0: जी।
1: मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भाई खेल कूद तो बहुत सारे किए होंगे, कौन कौन से खेल आपने खेले?
0: गांव में सर उस समय कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं होता था, हम लोग जैसे जो गांव के खेल होते हैं, कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, गिल्ली डंडा, यही सब होता था और हम लोग बहुत खेलते थे बचपन में। सुबह गर्मियों की छुट्टी जब होती थी तो 10 बजे हम लोग निकल जाते थे घर से, बड़े बड़े बगीचे उस समय होते थे और पूरा शाम तक वहीं पर रहते थे, पूरा इंजॉय करते थे, उसके बाद शाम को आते थे। और कोई आधुनिक गेम जो इस समय हम लोग देखते हैं, फुटबॉल क्रिकेट इस तरीके का, उस समय कोई वहाँ पे सुविधा नहीं थी, हम लोगों को पता भी नहीं था कि उस समय मेरे गांव में अभी इलेक्ट्रिसिटी 2016-17 में आई है।
1: ओके।
0: तो टेलीविजन भी नहीं था तो इसे कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती थी
1: आपको, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि जो गांव के खेल थे, मैं ये कहना चाहूंगा गांव के खेल ही तो असली मजेदार खेल होते हैं
0: जी,
1: मतलब मजा तो उसी में आता है। बाकी तो दुनिया क्रिकेट पूरी दुनिया में खेले, लेकिन कबड्डी पूरी दुनिया नहीं खेलती है।
0: बिल्कुल,
1: लच्छी दाढ़ी पूरी दुनिया नहीं खेलती है। ये अपने भारत के गांव में ये सारे गेम्स, पाकिस्तान स्टोर हुआ और लुका छुपी हुई, ये सब तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा बचपन बीतता है। बचपन से पढ़ाई में कैसे थे आप?
0: पढ़ाई में सर मैं बहुत ब्राइट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और लेकिन ये था कि जो भी वर्क हमको मिलता था उसे मैं पूरा करता था और सारे टीचर्स पसंद करते थे इसके लिए और अच्छा था, एवरेज था।
1: अच्छा, तो मतलब टीचर्स आपको हमेशा से पसंद करते
0: जी
1: रहे?
0: सर ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है।
1: बिल्कुल।
0: मैं जहाँ भी गया हूँ टीचर्स पसंद ही करते हैं और संपर्क भी मेरा उनसे हो, व्यक्तिगत संपर्क भी हो जाते हैं।
1: क्या
0: तो
1: है?
0: जब इंटरमीडिएट कर रहा था तो वहाँ पे एक राम सुजन पांडे करके सर थे
1: जी,
0: तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मेरी मदद करी। और यहाँ जब मैं आया तो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर
1: जी,
0: और डॉक्टर बीसी एचन के श्रीनिवास राव सर हैं, उनसे उन्होंने बहुत हेल्प करी हर तरीके से, गाइडेंस में भी और आर्थिक रूप से भी, हर तरीके से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी।
1: मानसिक आपने बोला, बौद्धिक रूप से, किस टाइप की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और कैसे आपके टीचर्स ने आपका साथ दिया?
0: सर मैं जैसे पहले ही बताया फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी
1: जी जी,
0: तो मैं गोंडा आया उस समय और किसी तरीके से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई कर रहा था, बहुत कम पैसे होते थे, हम लोग जो घर से आते थे एक हफ्ते यहाँ पे रहते थे, पैसा खत्म हो जाता था, फिर जाते थे फिर आते थे, तो थोड़ा बहुत मिलता था, ऐसे चल रही थी
1: जी।
0: तो मैंने एक समय ऐसा, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ तो मुझे लगा कि अब आगे नहीं चल पाएगी पढ़ाई, तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का भी डिसीजन कर लिया था, निर्णय ले लिया था।
1: ओके।
0: और उसके बाद एक दिन ऐसे सर से मुलाकात हो गई, सर से हम लोग पहले भी जुड़े हुए थे, एनएसएस में लिया था ग्रेजुएशन में,
1: तो सर की बात,
0: डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर से।
1: ओके।
0: तो वो मिल गए और उन्होंने पूछ ऐसे हालचाल पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मालिक, तुम अभी जो है मैं कह रहा हूँ कि एमए कर लो, उसके फिर देखा जाएगा, क्योंकि एक बार अगर तुम चले गए यहाँ से तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मैं उस समय सर को भी नहीं सुना, वापस चला गया और सर ने मेरा एक दोस्त था उससे फ़ोटो ले करके और मेरा एडमिशन करवा दिया यहाँ पे।
1: ओके।
0: और उसके बाद मुझे बताया, तो फिर मैं फिर पढ़ने लगा और एमए के बाद हमने बीएड किया और सर ने ही कहा कि बीएड कर लो और इसमें अच्छा स्कोप है, काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं। और तो मैंने बीएड किया और 2011 में उसी समय टेट शुरू हुआ था
1: जी।
0: और टेट भी क्वालिफाई किया लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया।
1: ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
0: जी।
1: ओके। उसके बाद फिर आपने क्या किया?
0: उसके बाद ये था कि बीएड को इससे प्राइमरी एजुकेशन से हटा दिया, प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकता था बीएड वाला, कुछ समय के लिए किया गया
1: जी।
0: तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मैंने सर मेरा कोई ग्रेजुएशन तक कोई गोल सेट नहीं था कि करना क्या है।

0: जब बीएड मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं। तो बीएड मैंने बहुत अच्छे से किया और फिर जब प्राइमरी में नहीं हो पाया उस समय तो मैंने फिर एजुकेशन किया एमए में। उस समय कहा जाता था कि एजुकेशन से अगर आप एमए कर लीजिए तो एमएड के बराबर हो जाता है। तो खैर अब तो एमए और एमए एजुकेशन और एमएड लगभग सेम हो गया है, एक डिसीजन आया हाई कोर्ट का। तो उसमें फिर मैंने एमए किया एजुकेशन में और उसके बाद कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया कि उस समय असल में मेरी सर चाइल्ड मैरिज हो गई थी।
1: ओके।
0: शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी।
1: ओके।
0: तो एक वो भी प्रेशर था कि कुछ करना है।
1: हाँ, परिवार चला
0: और लौट के घर जा नहीं सकता था।
1: सही बात है।
0: कि सबकी अपेक्षाएं थी कि यही पढ़ रहा है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया तैयारी करने के लिए, लेकिन मुझे कोई फील्ड समझ नहीं आया। तो मैंने फिर वहीं से नेट के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी करता था नेट के लिए, मैं जाता था, कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन ज़्यादा मैं उधर ध्यान नहीं देता था। नेट का मुझे अच्छा लगने लगा, उसका सिलेबस पढ़ा तो बहुत कुछ वो बीएड से मिलता जुलता था एजुकेशन में जो नेट का सिलेबस है। तो फिर मैं नेट की तैयारी करने लगा और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया,
1: तीसरे
0: 2013 में।
1: ओके।
0: हाँ, उसके बाद मैं इधर नेट के बाद मैं वापस आ गया गोंडा और सर ने कहा कि अब अगर आप नेट हो गए हैं, डॉक्टर त्रिलोचन सिंह से मैं बता रहा हूँ, बार बार उन्होंने मुझे पुश कर करके यहाँ तक पहुँचाया।
1: बिल्कुल।
0: तो सर ने कहा कि कहीं पे तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं कॉलेज ज्वाइन कर लो।
1: जी।
0: तो मैंने यहाँ पे ज्ञानस्थली में उस समय मैंने ज्वाइन किया था और अप्रूवल भी मेरा हुआ था। लगभग 1.5 साल मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ और जून 2015 में मैंने जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया। तो जेआरएफ जब हो गया तो मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़ा और मुझे फिर मैं यहाँ से फिर रिजाइन करके पीएचडी करने लगा। और इस बीच में तैयारी चली रही थी कम्पिटिटिव जो बेसिकली मैं टीचिंग जॉब की तरफ ही मेरा झुकाव था, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। और उसी 2014 में ये यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का एक विज्ञापन संख्या 46 आया था, 46, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा क्वालिफाई भी हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन इंटरव्यू से मुझे वापस आना पड़ा वहाँ।
1: ओके। रिटर्न आप क्वालिफाई हो गया था, आपको इंटरव्यू से वापस आना पड़ा।
0: जी
1: जी। फिलहाल अब वापस जाने का एक छोटा सा वक्त हो चला है, मतलब छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है।
0: जी।
1: और अभी हमको ये जानना है कि आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में, उस पे भी हम जानेंगे कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही, लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। सो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। You know you've been my best buddy since forever, right?

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज हमारे खुसूसी जो मेहमान हैं वो हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी तक आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, एक लफ्ज आया था इंटरव्यू।
2: जी,
1: इंटरव्यू में देखिए ज्यादातर लोग रिटर्न भी निकाल ले जाते, लेकिन इंटरव्यू में चूंकि आपकी ऑल ओवर चीजें जो आपने लिखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, पढ़ने के अलावा आपका उठने बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, सब कुछ देखा जाता है। और शायद कहीं ना कहीं वहां पे इसीलिए कहते हैं कि पूरी तरह से तैयार होके ही जाना होता है।
2: जी,
1: तो हम इस पे अभी आपसे बातचीत करने के बाद इस पे भी आएंगे, पूछेंगे कि एक इंटरव्यू में क्या क्या कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में कैसा रहा।
2: सर बहुत अच्छा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वहाँ पे, एक साल लगभग हो रहा है, और सारा टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है सब, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिंग है। वो पहले जो होती थी बच्चों में एक उच्छृंखलता होती जो, वो अब नहीं दिखती है बच्चों में, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है सर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव मिल रहा है राजकीय डिग्री कॉलेज में।
1: यानी आप,
2: लेकिन ये है सर, थोड़ा सा वहाँ पे संसाधनों का थोड़ा अभाव होता
1: अभाव है
2: जो गवर्नमेंट कॉलेजेज होते हैं, और एक तो ग्रामीण क्षेत्र में तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग उसके साथ भी फेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं।
1: क्या बात है।
2: और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट में 15 बच्चे थे उस समय, और अभी इस समय 68 बच्चे हो गए हैं। अभी वहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया उन लोगों ने, तो 68 बच्चे हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और सारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, सब सहयोग करते हैं।
1: चार गुना से ज़्यादा नंबर है, आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहाँ 15 बच्चे, कहाँ 68, आप 68 बच्चों को बता रहे हैं, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, दिख रहा है बिल्कुल गैप।
2: असल में सर, जब मैं इससे पहले मैं गवर्नमेंट यहाँ पे किसान पीजी कॉलेज बहराइच में काम करता था
1: जी,
2: तो यहाँ से मैं रिजाइन करके गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो एक बार एक सर ने पूछा कि कैसे चल रहा है मालिक वहाँ पे, तो हम कहे सर ठीक है, बस ये कि उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो उनके एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा मालिक जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पे तो सब लोग अच्छा कर लेते हैं, जहाँ पे वहाँ पे फिर कुछ करना ही नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत विपरीत होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे आपका काम दिखेगा और आपको वहाँ करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और उस दिशा में प्रयास भी कर रहा हूँ मैं।
1: बिल्कुल ये सही कहा आपके गुरु ने, क्योंकि जहाँ नहीं होता वहाँ कुछ स्कोप होता है कि उसको किया जाए।
2: हाँ बिल्कुल,
1: और जहाँ ऑलरेडी चीजें मिली मिलाई हैं,
2: हाँ वेल एस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे सब चीजें, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा, हालांकि आपके पास अपनी अलग यूनिक क्षमताएं होती हैं, आप अपना ऐड करते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको
1: स्कोप ज्यादा होता है,
2: स्कोप और आपको काम करने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं,
1: अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा
2: जी।
1: आपने बताया कि आपको सपोर्ट बहुत मिलता है, चाहे वो टीचर्स से मिलता हो, स्टूडेंट से मिलता हो
2: जी,
1: लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अगर स्टाफ से मिलता है तो यानी आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है
2: जी,
1: आप रिश्तों को निभाते अच्छा हैं, आप डील अच्छा करते हैं। बच्चों से अगर बात किया जाए तो आपकी टीचिंग मेथड में इतना इफेक्टिव है तो ही आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो आप जरा उन दोनों के बारे में बताइए कि टीचर के साथ आपका बिहेव आप कैसे रखते हैं, और बच्चों के लिए पढ़ाने के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं।
2: मैं सर बिल्कुल फ्रेंडली रहता हूँ, हमारे सब जो भी टीचर्स वहाँ पे होते हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा फेस करके आए, सारे लोग अच्छे हैं, और आप उनके साथ अगर अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको पूरा समय देते हैं, पूरा आपको सहयोग देते हैं, तो सारे लोग अच्छे हैं तो मैं उसमें फिट हो जाता हूँ मैं भी, और मेरा भी ये व्यवहार ऐसे ही रहता है। मैं हमेशा सबके साथ मुस्कुरा के मिलना, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं मन में रखता नहीं हूँ किसी के प्रति भी, तो इसलिए चलता रहता है। और टीचिंग का मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को बोलने की ज़्यादा ज़्यादा समय देता हूँ, तो उससे ये समझ में आता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या उनका ज्ञान का स्तर क्या है, और किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है कि जिससे वो बेहतर लर्न कर सकें। तो इससे फ़ायदा होता है जब आप बच्चे का स्तर जान जाते हैं, तो उसके और टीचर का काम होता है बच्चे के स्तर तक उतरना। जब आप उसके स्तर पर आ करके उससे बात करते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है चीज़ें, तो इसलिए अच्छा चल रहा है।
1: ये बात तो समझ में आई कि आपने कहा कि उसके बच्चे के स्तर तक जाया जा सकता है, लेकिन स्तर पता कैसे करते हैं आपके कि किस बच्चे का क्या स्तर है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर बच्चे का अलग अलग स्तर होता है।
2: हाँ जी,
1: तो क्या एक आपकी मेथडोलॉजी होती है
2: बच्चों से? सर, जैसे जब क्लास हम लोगों की जब शुरू होती है, जब सेशन स्टार्ट होता है
1: जी,
2: तो हम लोग बच्चों से बात करते हैं, व्यक्तिगत हर बच्चे से बात करते हैं, और जब टॉपिक हम शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए तो भी बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे पता लगता है कि उनका क्या स्तर है, कितना उन्होंने जो भी टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें उनका कितना ज्ञान है, तो इससे पता लगता है कि वो किस स्तर से उनको किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए।
1: मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही बताया कि आप पहले बात तो उस बच्चे के बारे में खुद बात करते हैं ताकि वो आप देखते हैं कि कितना बच्चा खुद के बारे में बता पा रहा है, यानी क्या लेवल है। दूसरा, आप जो टॉपिक चूज करते हैं पढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द की बहुत सिंपल सिंपल बेसिक सी बातें करते हैं ताकि बच्चों का एक स्तर जान पाए कि कौन बच्चा कितना जानता है। ये तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, और बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस वक्त बहुत सारे शिक्षक भाई भी सुन रहे होंगे इसको, और उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक बार समझ में आ रही होंगी कि हाँ, वो भी अपने क्लास में इस तरह से इंटरवेंशंस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अब बात करते हैं बच्चों की, ह्यूमन साइकोलॉजी होती, बच्चों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की
2: जी,
1: तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस आपने बताया यहाँ का नहीं, लेकिन अगर ऑल ओवर टोटल देखा जाए टीचिंग का एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी कॉलेजेस जगहों पे पढ़ाया है।
2: हाँ, लगभग तीन चार साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं।
1: चार साल का
2: मैंने लगभग 1.5 साल ज्ञानस्थली में टीचिंग किया है
1: जी,
2: और 8-9 महीने KDC बहराइच में
1: जी,
2: और अभी 1 साल से लगभग वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अक्टूबर 2021 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 1 साल 5-6-7 महीने हो गया वहाँ पे भी,
1: लगभग 4 साल का मोटा मोटा मान लेते हैं
2: जी, जी।
1: तो आपने अलग अलग जगह की बच्चों को पढ़ाया, अलग अलग बच्चों को देखा है, आपको क्या लगता है कि बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चों को समझाने का?
2: बेस्ट मेथड ये है सर कि आप बच्चे की जो सेंसेज हैं उसमें कितने सेंसेज को आप इन्वॉल्व कर पाते हैं, मल्टी सेंसरी जो आजकल तमाम सारी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग ब्लैक बोर्ड, चाक डस्टर इसलिए उपयोग करते हैं कि उसमें उनकी कई सेंसेज एक्टिवेट होती हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर हमें लगता है कि बेसिक चीज़ें और जो टेक्नोलॉजी है उसको और मजबूत किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए विद्यालयों में, तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे।
1: सेंसेस का क्या अर्थ होता है ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दें।
2: सर, जैसे हमारी 5 सेंसेज होती हैं, सुनने की, देखने की, आँख, नाक, कान, त्वचा, तो जितनी चीज़ें हमारी जितनी सेंसेज एक्टिवेट होती हैं, अगर जैसे हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं
1: जी, जी,
2: आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं,
1: बिल्कुल,
2: तो मूवी देखते हैं 3 घंटे तक और 3 घंटे की स्टोरी आपको याद हो जाती है
1: जी,
2: लेकिन आप एक किताब 3 घंटे तक बैठ के पढ़ते रहते हो याद नहीं होती। तो उसमें चूँकि आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, और आप इमोशनली भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज किया जा सके चीज़ें, तो उसके लिए खैर ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई है और ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड जो भी है हम लोग यूज करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाते हैं। एक ऐप है, अभी मैं उसको जल्दी हमने शुरू किया है यूज करना, एड पजल करके है, तो उसमें आप क्लासेज अपनी बना सकते हैं। और बीच बीच में उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि आप उसको क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि जब बच्चा वो वीडियो देखेगा तो एक कुछ समय तक चलने के बाद वो एक वहाँ पे आके पॉज हो जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो जब तक वो क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है उपयोग करके और अच्छी टीचिंग की जा सकती है।
1: मतलब आपका सीधा सही कहना है, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने टीचर से इस बात को लेकर बात की सबके अपने बहुत अच्छे रिप्लाईज आए हैं, लेकिन आज आपका जो रिप्लाई आया है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बहुत ही मुझे बहुत क्लियर समझ में आया कि अगर बच्चों को समझाना तो आपने कहा उनके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों उस चीज को समझने में, वहां बच्चे ज्यादा समझते हैं। आपने एक एग्जांपल के तौर बताया एक बुक और एक मूवी की बात, यानी 3 घंटे की मूवी और एक बुक 3 घंटे में पढ़ी गई, उसमें मूवी ज्यादा ध्यान होती है क्योंकि उसको हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लेकिन किताब में शायद हम उतने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो उतनी कह सकते हैं कि दिलचस्पी नहीं आ पाती है
2: जी।
1: और यही वजह है कि ज्यादा देर तक किताबों का ज्ञान नहीं याद रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, और आपने एक चीज ये भी बताया कि अभी जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, वक्त मॉडर्न हो रहा है कह रहे हैं, तो उसमें स्मार्ट क्लासेस का आपने एक एग्जाम्पल दिया।
2: सर हाँ बिल्कुल, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें एक ये भी प्रावधान है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पे कैंपस खोलेंगी इंडिया में
1: जी,
2: तो टीचर्स के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है ठीक है
1: टीचर्स के
2: तो
1: लिए।
2: हाँ, और उसके लिए हमको तैयार होना होगा उस तरीके से कि हम उनके साथ कम्पीट कर पाएं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उस तरीके की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हम लोगों को हैबिचुअल होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग बताया था कि वहाँ पे थोड़ा इंटीरियर है, यानी अभी संसाधनों का अभाव है
2: जी जी।
1: स्मार्ट क्लासेस अगर मान लीजिए आप क्या है तो बिजली की समस्या भी आप फेस करते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं फिर?
2: बिजली की समस्या सर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन जो कस्बा है वहाँ पे तो खैर रहती है, लेकिन हम लोग यही समस्या हम लोगों के पास वहाँ पे है सर, बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पे ये संसाधन अच्छे नहीं हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन है बच्चों के पास तो स्पीड नहीं होती है,
1: स्पीड नहीं है।
2: बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, लड़कों के पास होते हैं, विशेषकर लड़कियों के पास नहीं होते हैं। कई बार उनकी शिकायत आती है, मैं कोशिश करता हूँ। असल में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है
1: जी।
2: तो हम लोग उसमें एग्जाम्स लगातार होते रहते हैं, तो ये प्रयास रहता है कि जब एग्जाम चल रहा है तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाऊँ बच्चों को
1: जी।
2: तो कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, और उनसे जब बात की जाती है क्यों नहीं जुड़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, भैया के मोबाइल से जुड़ना, बाप पिताजी के मोबाइल से मैं जुड़ती हूँ, तो ये समस्या है सर वहाँ पे, इंटरनेट स्पीड नहीं है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। सरकार प्रयास भी कर रही है और धीरे धीरे हो सकता है समस्याएँ सॉल्व हों
1: जी। आपने कहा प्रयास हो रहा है और शायद यहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करने की। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतना शहर में रहें, आप गोंडा में रहें, सारे आपको सुविधाएं मिली, आप गए बहराइच में, वो भी आप मेन सिटी के अंदर रहें, वहाँ भी आपको सुविधाएं मिली, लेकिन अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके एंटरटेनमेंट का क्या साधन है? आप खुद को कैसे इंस्पायर करते हैं, खुद को कैसे चिल करते हैं? बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, कैसे करते हैं? मतलब
2: सर मैं जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो गांव मुझे अच्छा लगता है, और जब वहाँ के लोगों से मिलो, बच्चों से मिलो, तो लगता है कि कोई अपना ही, उनसे एक अपना अलग लगाव होता है, बच्चों से एक जुड़ाव हो जाता है
1: जी।
2: तो इस तरीके से, और अपना एंटरटेनमेंट का सर हम लोग 10 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक कॉलेज में समय देते हैं
1: जी।
2: उसके बाद आते हैं, बच्चों को समय देते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको होमवर्क कराना, और तो उन सब में समय निकल जाता है,
1: मतलब बच्चों पे ही आपने अपना जीवन कह सकते हैं कि फिलहाल अभी उनके नाम कर दिया है।
2: हाँ सर, बच्चों पे और अपने स्टूडेंट्स पर भी, क्योंकि मैं जब भी सर कोई भी क्लास नहीं होती है तो उसके पहले मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ के जाता हूँ। तो जब मैं कॉलेज से आता हूँ, बच्चों को, अपने बच्चों को होमवर्क कराता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करता हूँ पढ़ाने के लिए। अक्सर फ़ोन आता है लोगों का, मैं बता रहा हूँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं अभी तुम क्या पढ़ रहे हो यार अब तो तुमको नौकरी मिल गई। हमके ये जो जॉब है इसमें लगातार आपको अपडेट
1: रहना है।
2: हाँ, सीखते रहना
1: है। सही बात है,
2: इस तरीके का ये नेचर है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। क्लास में आप जब जाते हैं और बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, उनके जो क्वेश्चन हो पाते होते हैं उनको आप अच्छे से आंसर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन खुद को मिलता है। और चीज़ें बदलती भी रहती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, तो वो सब जब आप स्टडी करते हैं घर पर, तैयारी करते हैं, तो वो बहुत बेटर हो जाती है और बहुत अच्छा अनुभव होता है जब क्लास से पढ़ा के निकलते हैं, तो अपने आप को अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
2: तो और ये सर मुझे लगता है बहुत यही तरीका भी है पढ़ाने का, रटा रटाया चीज़ें तो बच्चे पढ़ ही सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, और तमाम सारे आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है तो यूट्यूब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं।
1: जी
2: जी,
1: तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खुद अपडेट होके जाएंगे तो शायद बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाएंगे, नई नई चीज़ें बता पाएंगे, बच्चों की भी दिलचस्पी जागेगी और आपकी भी, आपको काम करने में मज़ा आएगा, और वो काम अपने आप में नायाब होता है जिस काम में मज़ा आए।
2: जी,
1: तो वो आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हमारी आपके साथ बहुत सारे विषय हैं, आप और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इस मामले में करते रहे, बच्चों का और प्यार पाते रहे, कम्युनिटी से और जुड़ाव होते रहे, ऐसी हमारी पूरी दुआ है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अभी म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने इस ब्रेक के आने के बाद, चूंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आप आज इस पद पे कार्यरत हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कैसे इसको क्रैक किया, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। इसलिए अपने श्रोताओं से कहेंगे कि बात होने वाली है बहुत अहम, सो जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्तर 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद है मालिक राम वर्मा जी, जो की असिस्टेंट प्रोफेसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी हमने चूंकि जाने से पहले आपसे कहा था कि आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में बताना है
1: जी,
0: तो बहुत सारे ऐसे इस वक्त हमारे लिसनर्स हैं जो तैयारी कर रहे होंगे और टीचर ही बनना चाहेंगे क्योंकि आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस आपसे बात करूंगा
1: जी।
0: तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए?
1: सर मैंने पहले बताया कि मैं पहला जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था
0: जी
1: वो यूपी टेट था 2011 में
0: जी,
1: और क्वालिफाई किया था वो भी मैंने
0: जी।
1: उसके बाद यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का विज्ञापन 46 आया था, उसमें भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया
0: जी।
1: फिर यूपी लोक सेवा आयोग का एक विज्ञापन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको भी क्वालिफाई किया और उसमें सिलेक्शन भी हुआ। फिर विज्ञापन 47 का ये जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है उसको भी क्वालिफाई किया है मैंने, उसमें भी सिलेक्शन मिला। 2019 में मैंने 20 में मेरा प्राइमरी में भी सिलेक्शन हुआ था
0: जी।
1: उसमें फिर से ऐड किया गया था बीएड वालों को कि प्राइमरी में जा सकते हैं, तो उसमें मैंने फिर से दिया टेट दिया, सुपर टेट हुआ और उसके बाद प्राइमरी में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चूंकि उस समय इसका भी रिजल्ट आ गया था यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया प्राइमरी को। यहाँ पे मैंने एडेड कॉलेज ज्वाइन कर लिया बहराइच में, केडीसी बहराइच।
0: ओके, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि टेट किस लिए होता है, सुपर टेट क्या होता है?
1: टेट सर एक पात्रता है, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के इच्छुक हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एक वो पात्रता आपको होगी तभी आप जा पाएंगे प्राइमरी में, एक मिनिमम कह लीजिए क्वालिफिकेशन है।
0: ठीक है, और ये सुपर टेट क्या है?
1: सुपर टेट उसके टेट के बाद एक कह लीजिए स्क्रीनिंग है, उसमें बहुत सारे विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तरीके से हम उसको सेमी फाइनल कह सकते हैं,
0: सेमी फाइनल कह सकते हैं। अच्छा,
1: टेट के बाद उसको क्वालिफाई करेंगे फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा प्राथमिक में।
0: ओके, तो आपने देखिए इतने सारे एग्जाम्स दिए और आपने सफलता भी पाई, आप असफल भी हुए
1: जी,
0: तो आप एक बेहतर तरीका समाज को बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपका अप्रोच क्या रहा? तो हम पहले तो आपकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही।
1: सर मेरी स्ट्रेटजी सबसे पहली ये होती है कि मैं एग्जाम का पैटर्न समझता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। और मैंने यही किया, जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रहा था तो जितने पिछले 10 साल के जो भी प्रीवियस पेपर्स थे उनको मैंने पढ़ा, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उनको मैं लिख लेता था, नोट्स बनाया उसका, और उसमें सारे जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते थे उनको, उन चारों ऑप्शंस को मैं पढ़ता था और उनके जो भी उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती थी उनको मैं नोट्स करता था हर क्वेश्चन का। तो इसलिए एक मेरा बहुत बड़ा बहुत मोटा सा नोट्स तैयार हो गया था सिर्फ प्रीवियस पेपर्स के लिए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है, और तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर डिटेल स्टडी करें, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है।
0: आपने बहुविकल्पी में बताया कि चारों क्वेश्चंस के बारे में आप लिखते थे और डिटेल में जानकारी निकालते थे।
1: हाँ, उसको मैं अगर और सरल करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बना कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, चार ऑप्शन उसमें दिए गए
0: जी,
1: समसा दे दिया गया, रमसा दे दिया गया, रूसा दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो माध्यमिक शिक्षा ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो आप उसमें मैं वो आंसर तो मैं समझ गया कि हाँ ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है, तो समसा किससे संबंधित है उसको भी मैं नोट करता था कि समसा क्या है फिर वो सर्व शिक्षा अभियान है, तो रूसा क्या है उसके बारे में मैं डिटेल लिखता था कि ये हायर एजुकेशन का है रूसा, उच्च शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा सरकार के लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाता था, सारे चारों ऑप्शंस के बारे में समझने की कोशिश करता था।
0: तो ये बड़ा अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी लगी कि लोग जो हैं वो सिर्फ आंसर देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ही आंसर है। लेकिन वही चीज अगला जो ऑप्शन उसमें है उसी के द्वारा भी उसको घुमा के पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने कहा,
1: और उससे बहुत हेल्प मिलती है
0: जी।
1: कई बार वो क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है आपके पेपर में
0: जी।
1: मेरी यही कोशिश होती थी कि इन जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है उनके बारे में मैं जान लूं पहले।
0: बिल्कुल सही आपने कहा, मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे प्रैक्टिकली बहुत समझ में आई कि आप ऐसा क्यों करते थे, ये बड़ी अच्छी बात रही। अभी बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की, जैसे कि आपने कहा एक बार आप असफल भी रहे और आपने कई ऐसे एग्जाम्स,
1: तीन बार सर मैं इंटरव्यू दिया हूँ, दो बार TGT का दिया था
0: जी,
1: लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एक बार हायर एजुकेशन के लिए तो वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। असल में इंटरव्यू में आपके रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ते हैं और इंटरव्यू का भी होता है।
0: करेक्ट।
1: तो रिटर्न में अगर बहुत अच्छा होता है तो इंटरव्यू में मिनिमम भी मिल जाता है, मैं जो भी न्यूनतम उसका मार्क्स निश्चित किया गया वो भी मिल गया तो हो जाता है, लेकिन रिटर्न में अच्छा नहीं होता है तो फिर कितना भी मिल जाए इंटरव्यू में आप सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
0: तो मान लीजिए रिटर्न में किसी का बहुत अच्छा निकल आया है और वो इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर रहा है, अभी आप इस टाइम चूंकि हमारी आपके टॉक शो चल रहा है, आप ऐसे बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप की चीजें ज्यादा पूछी जाती, कैसे सवाल ज्यादा होते हैं?
1: टीचिंग्स में सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित हैं उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंटरव्यू पैनल में अगर कोई सचिव उचिव टाइप के लोग बैठे होते हैं तो वो लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
0: अलग टाइप।
1: ज्यादातर क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे।
0: ज्यादातर अलग से कैसे आ सकते हैं?
1: अलग से सर जैसे आपके पर्सनालिटी से संबंधित या कुछ जनरल अवेयरनेस, कोई नई घटना हुई है जो समाज से संबंधित है, तो उन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको अपने सब्जेक्ट को मजबूत करना होता है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
0: आपने बताया अगर कोई टीचिंग के लिए जा रहा है और उसका इंटरव्यू है तो वो ज्यादातर अपने सब्जेक्ट पे कमांड करे, उससे रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर कोई सचिव जैसे लोग अगर बैठे हैं पैनल में तो वो हो सकता है कुछ अलग की चीजें भी आपसे पूछे। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब भी करने जा रहा है तो एक इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है आपके चुने जाने के लिए, और बिना इंटरव्यू मुझे नहीं लगता है कि अब शायद बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होगी जो ले लेती होगी, वो भी छोटी मोटी, क्योंकि अगर ठीक ठाक भी कंपनी तो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि इंटरव्यूज में कॉमनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से इंसान प्रिपेयर होके जाए और किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: इंटरव्यू में सर आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना होता है आपको, आपके बात करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं जो दूसरी तरफ बैठे होते हैं, तो उनको आप बहुत, आपका बात करने का तरीका विनम्रतापूर्ण होना चाहिए और बहुत सोच समझ के जवाब उनको दें, और ऐसा ना लगे उनको कि ये जो है बहुत ज्ञान बघार रहा है या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
0: यानी कह सकते हैं जितना पूछा है पॉइंट टू पॉइंट बात,
1: पॉइंट टू पॉइंट, और अगर नहीं जानते हैं तो सीधे मना भी कर सकते हैं कि मैंने, मुझे नहीं आता है सर। अगर आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो जानते हैं क्या है सही उत्तर क्या होना चाहिए।
0: सही है।
1: तो आप ना कर सकते हैं लेकिन गलत उत्तर नहीं दे सकते हैं।
0: ओके, तो आपने पहले चीज़ तो ये कहा कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट
1: जी।
0: दूसरी चीज आपने कहा कि सोच समझ के ही बात करना है।
1: सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो उसका पहले चयन हो चुका था एक जगह और मेरे साथ ही उसका इंटरव्यू था, तो वो गया वहाँ पे। उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि आप यहाँ पे इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो उसने कहा पैसा
0: सीधे पैसा
1: तो इस तरीके से भी उत्तर नहीं देना है।
0: तो उनके साथ फिर क्या हुआ?
1: तो उनको सर मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो बता रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगे जिसमें मैं सब में फंसता चला गया तो okay. इस तरीके से इंटरव्यू खराब भी हो सकता है तो बहुत आपके बोलने का तरीका, बोलने का लहजा और ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। विनम्रता पूर्ण आप दिखें वहाँ पे, आप एरोगेंट ना दिखें वहाँ पे, घमंडी अहंकारी टाइप के ना दिखें
0: जी,
1: बिल्कुल नॉर्मल आप दिखने की कोशिश करें जो हैं आप।
0: मतलब जितना सहज आप खुद फील करके जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू होगा
1: जी।
0: आप वहाँ पे सहज बन के बैठे
1: जी
0: और जो कुछ आता उसका ईमानदारी से आंसर करे, जो नहीं आता उसको मना कर दे। और आपने कहा कि आपके लहजे में विनम्रता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। और कहीं ना कहीं शायद जो इंटरव्यू देने जाता है उसको अपने बारे में ज्यादा नॉलेज भी होना चाहिए। पहली बात तो वो कि अपना
1: जी, भी बिल्कुल पता अपने बारे में,
0: अपने बारे में क्या है
1: नीचे जी,
0: कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने बारे में आप अवेयर होने चाहिए। इंटरव्यूज की यही क्वालिटीज होती है, ये बात बिल्कुल सही कही। अभी चूंकि आपने अपने स्टार्टिंग में ही गुरुजनों का नाम बताया और जैसा कि बताया कि आप तो पढ़ाई तक छोड़ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनका दोबारा से आपका नाम लिखवा देना बिना आपसे कहे वापस में आपके पलट के आना और आज आप जिस जगह हैं, कहते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी भी चीज पूरी की पूरी जिंदगी बदल देती है, कई बार बहुत अच्छा कर देती है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन इत्तेफाक से और भगवान के आशीर्वाद से कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है,
1: बहुत अच्छा हुआ है।
0: तो मैं लास्ट में
1: इस मामले में मैं लकी हूँ।
0: इस मामले में आप लकी हैं और आपकी स्माइल, आपका वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप सच में कितने ज्यादा लकी हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे कनेक्शन आपका दिख रहा है आपके गुरु के साथ। तो इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे?
1: सर सबसे जो अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर का है और बाकी सारे गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिला। सब लोग गाइड करते थे, सब लोग किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे, मोटिवेट करते थे। और इसके साथ साथ माता पिता और हमारी जो शादी भी बचपन में हो गई थी सर, तो पत्नी का भी बहुत सहयोग रहा क्योंकि बच्चा भी था और वो लोग भी, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, समर्थन किया।
0: देखिए ये तो हम बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि गुरुजन का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़्यादा आप सफल भी होते हैं उनके आशीर्वाद से। लेकिन अगर वाइफ है और वो भी आपको समझ रही हैं, आपके काम को आपको स्पेस दे रही हैं, तो आपकी वाइफ भी उतनी ही भागीदार हैं आपकी सफलता में जितने आपके गुरुजन हैं। तो ये बात तो आपने सही कहा कि माँ बाप का भी रोल था, वाइफ का भी था और गुरुजन का तो खैर था ही था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आज हमारे बीच में आप मौजूद थे, आपसे हमने पहले आपके बारे में जाना, उसके बाद आपके करियर के बारे में जाना, टीचिंग के बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जाना, क्वेश्चनर्स कहते होते हैं ये हो जाना, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम को क्रैक करने की वो भी हमने जाना। और आपने सबका बहुत ही सरलता से और सहजता से उत्तर दिया जिसके लिए हम आपके आभारी हैं।
1: थैंक यू सर।
0: और साथ ही साथ चूंकि जाने से पहले हर एक गेस्ट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, तो आपको क्या लगता है कि ये एफएम गोंडा वालों के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा?
1: बहुत ज़्यादा सर, मैंने पहले भी कहा था और मैंने कहा था गोंडा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाइडेंस की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम आपने जो भी एफएम ज्ञानस्थली 89.6 शुरू हुआ है, इसकी वजह से बहुत बहुत फ़ायदा होगा सर इस क्षेत्र के जितने भी लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि आप अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र के बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं नहीं होता
0: लेकिन बहुत सारे लोग है ना, अचीवमेंट है आपकी।
1: आते हैं तो उनके अनुभवों से सीखने को मिलता है, जो भी सुन रहा होगा वो उनसे मोटिवेशन ले सकता है कि इस तरीके से मैं भी कर सकता हूँ या इस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ, यहाँ करियर के ऑप्शन हैं। और बहुत अच्छा है सर। और एक चीज़ और इसकी ऐड कर सकते हैं आप, और हमें लगता है चल भी रहा होगा यहाँ पे, कि जैसे कोविड काल में हमने देखा सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, तो इस रेडियो ज्ञानस्थली का उपयोग आप शिक्षण में भी कर सकते हैं, टीचिंग में भी कर सकते, शायद कर रहे होंगे, और उसमें आप टीचर्स आकर के यहाँ कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित समय पर बता सकते हैं कि समय कार्यक्रम आएगा, एक ये चैप्टर ये टॉपिक पे पढ़ाई होगी, तो ये सर बहुत अच्छा उपयोग होगा और बहुत बहुत वैल्यूएबल कार्यक्रम है सर यहाँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मेंटर्स वो आते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पे ही चर्चा होती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें हम और भी दिन ब दिन जैसे जैसे लोगों के सुझाव मिलते जाएंगे, हम इसमें अपनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि एक दिन आपका भी इंटरव्यू होना चाहिए कि आप भी गोंडा से हैं और बहुत कुछ हासिल किया है आपने, इस तरीके से आप एक फील्ड, आप ये भी बच्चों के सामने आ सकते हैं कि इधर भी करियर बनाया जा सकता है और उसमें आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे करियर बनाया जाए।
0: बिल्कुल। तो यहाँ पे रेडियो जॉकी का वोकेशनल कोर्स में भी चल रहा है और हम बताते भी हैं कि जैसे मैं खुद एक रेडियो जॉकी हूँ, एक रेडियो को चलाने वाला, वैसे ही बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे आरजेज मुझे नहीं लगता है कि बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ेगा गोंडा को, गोंडा के खुद के अपने बच्चे ही यहाँ के आरजे होंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा।
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि आज हमारे बीच में मौजूद थे मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एडुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, जिनसे आज हमने उनकी जिंदगी के बारे में जाना, पढ़ाई के बारे में जाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए इसके बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इसके बारे में जाना। सो बहुत बहुत शुक्रिया आज उनका, वो हमारे स्टूडियो में है। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिले आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

नमस्कार, आदाब, प्रणाम। और आज सभी के साथ लाइव है आपकी अपनी आरजेबीना। 6:04:24 हो चुके हैं और आप सभी के साथ आज हम चलते हैं उस सफर पे जहाँ पे हमें चलना तो पसंद है, लेकिन रुकना या उस सफर पे यू टर्न लेना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मतलब हम सभी के लिए सबसे खास दिन यानी कि आज है वेंसडे। एंड यस, ऑफ कोर्स आज की जो गर्मी है गोंडा शहर की, या मैं कहूँ आसपास के क्षेत्र की, काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तो कुछ अनुमान सुनने को मिले हैं कि मतलब आने वाले समय में गर्मी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल हम सब अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना ट्रॉपिकल एरिया वाले लोग हैं, जो कि हर मौसम में सेट हो जाते हैं यार। गर्मी ठंडी हर मौसम को तो एंजॉय करते हैं, तो वी आर एबल टू एडजस्ट। सो पहले ये बताइए कौन कौन सो के उठ गया है। वैसे अभी ब्रेक चल रहा है, कई लोगों के लिए ये समर ब्रेक होगा और कई लोगों के लिए ये मतलब कह सकते हैं कि वैकेशन टाइम होगा। तो मुझे लगता है कि सब लोग के लिए अभी थोड़ा रेस्ट का टाइम है, लेकिन हाँ, शाम को सोने के बाद इंसान को मुझे लगता है कि फ्रेश होने के बजाय थकान ज़्यादा लगती है, तो इसलिए मैं शाम को सोती नहीं, मतलब दोपहर के टाइम सोती नहीं हूँ। आप लोग क्या कहते हैं कि दोपहर में सोने के बाद आपको फ्रेशनेस फील होती है या फिर टायर्डनेस? मुझे तो टायर्डनेस फील होती है। तो चलिए आप लोग बताइए क्या क्या करने वाले। वैसे आज तो म्यूज़िक स्पेशल इवनिंग है और आप सभी को पता है कि गोंडा में से मसाला आरजेबीना वाला में वेंसडे को धमाल मचाने के लिए ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के ही एक साथ आ जाते हैं एक मैदान में, और आमने सामने का मुकाबला होता है, वो मुकाबला जो हर वीक होता है। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर आप सभी के साथ आज सुरीली शाम, और मौसम भी हो चुका है रंगीला, यानी कि रंगीला मतलब के इंतजार कर रहे हैं रंगीले मौसम का। और जो म्यूजिक की खुशबू है वो अभी तक हमारी हवाओं में फ्रिक्वेंसी की तरह दौड़ना शुरू कर चुकी है। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि आज ना सिर्फ हम दिलचस्प गाने आप लोगों से सुनेंगे, बल्कि कंपटीशन वाले अंदाज में मज़ेदार बातें भी करेंगे और ये जानेंगे कि किसकी ताकत किस में है, यानी कि कौन किस टाइप के गाने ज़्यादा जानता है और कौन किस टाइप के गाने कम जानता है। और हाँ, डायलॉग्स की भी बात हो जाएगी। तो फिलहाल अपने मोबाइल की बैटरी थोड़ी बढ़ा लीजिए, नेट डेटा वगैरह जो भी है उसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आरजेबीना आज नॉन स्टॉप आप लोग के साथ अंताक्षरी खेलने वाली है। तो चलिए अंताक्षरी खेलने के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि वार्म अप करा देते हैं। वार्म अप कराने के पीछे रीज़न ये है कि मतलब अगर आपको थोड़े गाने याद हो जाएंगे ना तो आगे जीतने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी दोनों ही टीमों को। तो मैं हमेशा से दोनों टीमों को सपोर्ट करती हूँ, तो वैसा ही सपोर्ट आज भी मेरा आप लोग के साथ रहेगा, नो डाउट। तो अभी मुझे चैट रूम में कौन कौन दिख गया है। फिलहाल इरफान शाह जी हमारे साथ हैं और बाकी सारे लोग अभी तो मुझे लग रहा है चाय का इंतजार कर रहे हैं, तो चाय रखी है किचन में, जाके बना के पी लो। आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं शायरी बोलने वाली हूँ? चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी कह देने से मतलब शाम नहीं बदलने वाली, शाम जवां जवां है तो वो जवां जवां ही रहेगी। तो मुझे लगता है कि चलिए हम लोग भी शुरू करते हैं अंताक्षरी के लिए थोड़ा सा वार्म अप वाले सॉन्ग। वार्म अप वाले सॉन्ग मैं स्पेशली मैशअप्स को बोलती हूँ, जो कि मुझे मतलब कई सारे मतलब गानों की मुझे लिस्ट दे देते हैं। तो नए पुराने गानों का एक बढ़िया सा मैशअप सुनते हैं, और इसको सुनने के बाद मुझे लगता है मैं ही नहीं, आप ही नहीं, हम सभी इन गानों के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इन नए पुराने गानों का मैशअप, और इस मैशअप के साथ शुरुआत हो जाती है आज की म्यूजिकल इवनिंग की। तो अंताक्षरी खेलने के लिए टीम एबी के मेंबर्स फटाफट से रेडी हो जाइए। अनिल जी भी आ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, और आगामी अंताक्षरी के लिए आपको सबसे पहले बहुत सारी बेस्ट विशेस। आपको अपनी टीम को लीड करना है क्योंकि आप सबसे पहले आ चुके हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिकल ब्रेक। इस ब्रेक में ना सिर्फ आप म्यूजिक सुनेंगे, गाने सुनेंगे, बल्कि आप नए पुराने गानों का जो मिलन है वो होते देखेंगे और अपने जो गानों की लिस्ट है उसे अपग्रेड करेंगे। सो अगर आप कुछ म्यूजिकल सुरीला सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ज्ञान सिटी 9.6 FM पे आरजेबीना वाला शो गोंडा मैसेज मसाला सुन रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

रंग बिरंगे गानों के साथ, कोई एक नहीं कोई दो नहीं, मुझे लगता है हर किसी की जो धड़कने हैं वो म्यूजिकल हो गई होंगी। और अभी अलका जी की आवाज़ सुन के मुझे याद आया कि अभी इन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भाई देखिए, अगर आवाज़ों की बात करें तो हमारे देश में ऐसी बहुत सारी दिग्गज आवाज़ें हैं जिनके गानों को सुनने के बाद ना सिर्फ हम बल्कि पूरी की पूरी जो मतलब कहते ना कि दुनिया है वो दीवानी हो चुकी है। इंडियन वॉइस इज़ द फॉर्म ऑफ क्लासिकल वॉइस, मतलब हमारे यहाँ क्लासिकल गानों की बात हो या हमारे यहाँ के इंडो वेस्टर्न गानों की बात किया जाए, मतलब की जाए, तो सारे के सारे गानों की जो कहते हैं ना लिरिक्स म्यूज़िक सब कुछ फैंटास्टिक होता है। तो आज बहुत सारे म्यूज़िकल ब्रेक्स के साथ साथ हम लोग आपकी आवाज़ों को मतलब इनवाइट करना चाहेंगे। तो फटाफट से चैट रूम में टीम ए और बी जल्दी से बता दें कि दोनों टीमें रेडी हैं। अभी तो मुझे टीम बी से लोग दिख रहे हैं, टीम ए से भी कोई नहीं दिखा। गुड इवनिंग सचिन शुक्ला, स्वागत है आपका। और मुझे पता है कि गुंडा मैस मसाला में आज जितने भी दिग्गज हैं वो अंताक्षरी में पार्टिसिपेट तो करेंगी, ना सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगी बल्कि अपनी जो कहते हैं ना प्रेजेंस से शाम में धूम मचा लेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग की ये धूम मचाने वाली आवाज़ ना सिर्फ फोने और धूम मचाए बल्कि एक दूसरे के लिए भी एक मैसेज बन के दोनों को मोटिवेट करे। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे, थोड़ा सा मतलब फैसिनेटिंग होंगे। तो मुझे भी कुछ बातें याद आ रही हैं। कहते हैं कि जब भी हम कुछ खेलते हैं या सुनते हैं या पहचानने के लिए आपको कोई क्लू देते हैं तो आपके दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। मतलब जब से आपने होश संभाला होगा, जो गाना आपने पहली बार गाया होगा और तब से लेके अब तक, उन सभी गानों का मिक्सअप आपके दिमाग में हो जाता है कि यार कौन सा गाना पूछने वाले हैं आज बिना। या किसी आप म्यूज़िक मंच पे हैं जहाँ पे आपको खुद को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ फील होगी। तो चलिए, आगे भी ऐसी बातें होती रहेंगी, एंजॉय करते रहेंगे हम लोग। लेकिन इस म्यूज़िकल जो इवेंट है, यानी कि आज का जो अंताक्षरी वाला इवेंट है, इसको एंजॉय करते हैं इस ब्रेक के साथ। और आज मैं एक ख़ास दिग्गज की बात करना चाहती हूँ जिनकी कंपोजिशन ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दुनिया भर में अपनी पहचान बना रखी है। तो आज एक ऐसे कंपोज़र की बात करूँगी जो मेरी गुड बुक्स में तो है ही, लेकिन आज से उनकी कंपोजिशन सुनने के बाद वो भी आपकी गुड बुक्स में आ जाएंगे। यानी कि म्यूज़िक की जो गुड बुक्स आपने बनाई होगी उसमें वो नाम भी आपकी मतलब गुड बुक्स में शायद पहले या दूसरे नंबर पे होगा। सो लेट्स एंजॉय दिस ब्रेक।

सबलू जी, कैसे हैं आप? और स्वागत है आपका भी। और इस गाने को सुन के वो एरा तो याद ही आ गया होगा जिसमें शाहरुख

वो जमाना जब लोग कॉन्वर्सेशन कम करते थे, हर गाने के माध्यम से वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर किया करते थे। उस दौर का ये गाना सुनिए जरा।

0: सपना बावरा मन देखने चला एक सपना।
1: अच्छा आप बताइए, इस गाने को सुनने के बाद आपको नहीं लगा कि कुछ देर के लिए दुनिया फ्रीज सी हो गई है और बस यही गाना आसपास बज रहा है? लगा कि नहीं लगा, जल्दी बताइए। तो मैं आज उस इंसान की बात करने जा रही हूँ जिसकी कंपोजिशन ने सच में हमारी फीलिंग्स को लव्स नहीं दिए, हाँ म्यूजिक दिया। वो म्यूजिक जिसको सुनते ही यार मन कहता है यार यही तो मैं सुनना चाहता था। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ शांतनु मोहित्रा की, जो भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। और अगर उन्हें मैं बताऊँ, उनकी मुख्य जो कहते हैं ना कि रूप से उनके जो गाने हैं जिसमें उन्होंने अपने संगीत दिया, मूवीज़ हैं, तो थ्री इडियट्स हो गई, लगे रहो मुन्ना भाई, परिणीता, ये सारी मूवीज़ में इन्होंने अपना बेहतरीन म्यूज़िक देके दुनिया को म्यूज़िक की मतलब पहचान दी है। यार लफ्ज़ तो हम किताबों में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब लफ्ज़ों पे म्यूज़िक का या कह सकते हैं कंपोजिशन का श्रृंगार होता है ना, तब वो लफ्ज़ वाकई में लफ्ज़ बनते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि जनाब का जन्म हुआ है हमारे ही यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जन्मे 22 जनवरी 1968 को। और संगीत में आने से पहले उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया था और मैन के जैसे निजी एल्बम में इन्होंने अपनी पहचान भी बनाई। बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो फिल्म चुनी वो थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, 2005 में आई थी। और उस फिल्म के म्यूजिक के बाद इनके सामने ऐसे मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस। शांतनु मोहित्रा ने ब्लॉकबस्टर और मैं कहूँ कि ऐसे ऐसे सराहनीय म्यूजिक बनाए हैं जिन गानों को सुनने के बाद यार मन करता है कोई सारे के सारे काम आसपास रोक दे, बस ये म्यूजिक बजे। और उन्हीं में से ये गाना था बावरा मन। इस बावरे मन की जो लिरिक्स है वो तो खास है ही, लेकिन इस लिरिक्स को और खास बनाया है शांतनु के म्यूजिक ने। गुड इवनिंग, और विकास कैसे हैं आप? और फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ दोनों टीमों की, तुम्हारी टीम ए और टीम बी से। बी से तो सब लोग दिख रहे हैं, टीम ए से कोई क्यों नहीं दिख रहा है? क्या लड़कियाँ आज हारने की तैयारी से हैं? तो फटाफट से मुझे बता दें कि लड़कियाँ आज हारेंगी या फिर मैं तो भाई आज शांतनु जी की बात करने ही वाली हूँ। और मैं खास बताऊं कि फिल्मों के अलावा शांतनु मोहित्रा को बहुत ज़्यादा जो शौक़ है वो है ट्रैवलिंग का, ठीक है। उन्होंने 100 दिन तक हिमालय में अपना टाइम बिताया और वहाँ बैठ के आराम से संगीत को आयाम दिया। मतलब कोई इंसान म्यूजिशियन या फिर कह सकते हैं कि एक प्लेबैक सिंगर बनता है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, और ये स्टोरीज मुझे हमेशा से लोगों के लिए मतलब लगता है कि हाँ यार मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए जिनको लोग पढ़ें, जानें, बात करें। तो सबसे पहले तो ये गाना सुनिए, फिर बताइए बावरा मन का म्यूजिक सुनने के बाद और कौन कौन से गाने सुना दूं आपको जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं शांतनु मोहित्रा म्यूजिक कंपोजर नहीं, वो जादूगर है जो म्यूजिक बनाता है और गाने सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। चलिए सुनते हैं वही गाना जिसकी शुरुआत हो चुकी है थोड़ी देर पहले, लेकिन हम लोग फिर से शुरू सुनते हैं। लेट्स एंजॉय बावरा मन।

यस, आज भी अंताक्षरी का दिन है लेकिन लड़कियां नहीं दिख रही, इसलिए अंताक्षरी में देर है। अब इस गाने के साथ ही मैं थोड़े और इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ शांतनु के बारे में। आपको बताऊं कि शांतनु ने कभी म्यूजिक की कोई क्लास नहीं ली। अब आप इस बात पे तो कहेंगे आरजीबी ना तो झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। कहते हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट हो, ठीक है, टैलेंट मतलब कुछ नया कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर, तो जरूरी नहीं कि आप जाके किसी स्कूल में बाकायदा ट्रेनिंग लें। आपके अंदर का हौसला, आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपको उस मुकाम तक आराम से पहुंचा देती है। शांतनु ने एक इंटरव्यू में एक बार कहा कि कोई भी चीज जो है ना, सबसे पहले आपको नहीं मिल जाती, असफलता आपको पहले कदम पे जरूर मिलती है, और असफलता का मिलना ये दर्शाता है कि आगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। है ना मजेदार। वो अक्सर ये कहते हैं और इस बात पे जोर देते हैं कि असफलताएं जो होती हैं वो आने वाले जीवन में सफलता का जो कहते हैं ना एक मैसेज लेके आती हैं। तो अगर आपको किसी चीज में असफलता मिल रही है तो आप शांतनु की इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इन्होंने गिव मी सनशाइन गाना जब बनाया मूवी में बजा, तो एक दफ़ा ये गाना एक ऐसे जगह बजा जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते थे, और वहाँ पे एक नैनी जो सब बच्चों को देखती थी। तो जब गाना ये वहाँ बजा, वहाँ ये थे, मौजूद थे, तो उन्होंने जब ये गाना सुना तो उन्होंने समझा कि यार असली में ये गाना है, ये एक्चुअली में इस गाने का मतलब यही है कि रियली जिनको सनशाइन चाहिए वो सनशाइन उन लोग को मिल नहीं पा रही है। एंड वो उस समय पहली बार अपने ही गाने के म्यूजिक को सुन के रोए थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शांतनु ने कोई क्लास नहीं ली, कोई स्कूल नहीं लिया, किसी म्यूजिक स्कूल नहीं गए। अक्सर मतलब हम लोग ड्रामा स्कूल जाते हैं एक्टिंग सीखने के लिए, म्यूजिक स्कूल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब हमारे देश में भातखंडे हैं और बहुत बड़े बड़े म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे संगीत बाकायदा सिखाया जाता है। पर खास बात यह है कि शांतनु ने इतने बेहतरीन म्यूजिक बना दिए पर खुद कभी म्यूजिक की क्लास ही नहीं ली। हाँ हाँ, हैरान करने वाली बात है। उनके अनुसार म्यूजिक उन्होंने जानते कहाँ सीखा? रेडियो से। अब आप कहेंगे आरजीबी ना फिर अपने मतलब रेडियो पे बोल रही है तो इसलिए अपने रेडियो की बड़ाई कर रही है। जी हाँ, शांतनु ने अपने इंटरव्यू में ये क्लियरली बताया कि इन्होंने म्यूजिक की क्लासेस नहीं ली बल्कि रेडियो पे सुन सुन के म्यूजिक सीखा। जी हाँ, उनकी पहली कक्षा और आखिरी कक्षा रेडियो थी। तो आपको लग रहा होगा कि यार रेडियो क्या सिखा सकता है? बिल्कुल, रेडियो वो सब कुछ सिखा सकता है। देखिए, आपको जो आता है वो तो आप अपनी प्लेलिस्ट से ढूंढ के सुन सकते हैं, पर रेडियो चुन चुन के नई चीज़ें आपको सुनाता है, तो ऑफ कोर्स रेडियो खास है। तो शांतनु की ये बात मुझे हमेशा इंस्पायरिंग लगती है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा कि रेडियो कैसे दुनिया को जगाता है म्यूज़िक से, कैसे पक्षियों के चहकने की आवाज़ कभी शिक्षक बन के, कभी एक न्यूज़पेपर बन के हमें पूरी दुनिया की सैर करा देता है, हर अच्छी बुरी खबर से हमें रूबरू कराता है, नए म्यूजिक से रूबरू कराता है, पक्षियों की आवाज सुनाता है, तो बिल्कुल रेडियो खास बन जाता है। तो ये रही एक प्यारी सी मतलब स्टोरी शांतनु की। आप लोग बताइए कि आपने शांतनु के कंपोज हुए गाने में से कौन कौन सा गाना सुना है, जल्दी बताइए। एक और गाना सुनाती हूँ, इसको सुनने के बाद तो फिर आप दिल पे हाथ रख लेंगे कि आरजीबी ना आज ऐसे ऐसे गाने सुना के आज हम लोग को मतलब आप तुरंत डाउनलोड करने लगेंगे ये गाने। चलिए अगला कंपोजिशन, अगला गाना सुनिए जो कि शांतनु का कंपोज्ड है एंड अगेन मेरा फेवरेट है।

जी हाँ, ये कोई पुराना गाना नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि ये है 12th फेल फिल्म का गाना, जिसकी में आप अपनी खूबसूरत आवाज़ सुन रहे हैं अपनी श्रेया जी की और शान की। पर ये म्यूज़िक जिसमें छनक है, खनक है और बेहतरीन कंपोजिशन है। आई रियली लव दिस सॉन्ग। तो फिलहाल आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि लड़कियों की टीम तो हार चुकी है क्योंकि दिख नहीं रहे। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग फ्री मतलब फॉर्म में अपने गाने सुना सकते हैं, लेकिन गाने सुनाने के पीछे आपको अपने गाने का इतिहास बताना होगा। यानी कि जैसे आपने कोई गाना सुना तो वो गाना किस फिल्म का है, किस सिंगर ने गाया है, इस गाने से जुड़े कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है या इस गाने को लिखा किसने, ये सारी चीज़ें आपको अपने गाने के साथ बतानी है। तो गाने गाने वाले मेरे लिसनर जो भी हैं लड़कों में या लड़कियों में, वो गाना तो सुनाएंगे लेकिन अपने गाने की पूरी डिटेल्स साथ लेके आएंगे। तो चलिए पहले ये गाना सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं।

तो चलिए शुरुआत मैं ही करती हूँ पहले गाने से, यानी कि जैसे कि गाना सुनाने की बात हुई है और गाना ना सिर्फ सुनाना है, उस गाने के बारे में आपको फुल डिटेल पहले देनी है। तो शुरुआत मैं करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कौन क्या क्या सुनाता है। तो मैं आज आप लोग को एक गाना सुनाऊंगी, पहले गाना सुनाती हूँ फिर उसके बारे में उसकी डिटेल्स देती हूँ, क्योंकि गाना वाकई में बहुत अच्छा है और उस गाने को सुनने के बाद आपको भी ये गाने से मतलब प्यार हो जाएगा। ऑलरेडी होगा ही मुझे लगता है, ना सिर्फ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करने वाला ही गाना है।

तो पहले शुरुआत कर दी मैंने इसके म्यूजिक से, तो गाने के बारे में बता देती हूँ फिर गाना गाती हूँ। गाना है फिल्म परिणीता से, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, ठीक है। और इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने, मतलब इसकी जो लिरिक्स है उसे स्वानंद किरकिरे ने लिखी है। और म्यूज़िक, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर से बता रखा है कि म्यूज़िक आज मैं बात कर रही हूँ शांतनु की, तो इसे कंपोज़ किया है शांतनु ने, अपनी खूबसूरत आवाज़ से सजाया है इस गाने को श्रेया घोषाल ने और सोनू निगम ने, ठीक है। और इससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊँगी, पहले गाना सुना देती हूँ। और आई होप ये गाना आप लोग को बहुत पसंद आएगा, मुझे वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आता पर मन कर रहा है कि आप लोग को सुनाऊँ। तो इस गाने में कुछ लिरिक्स जो है वो इंग्लिश में भी है। आई होप आप लोग इस गाने से पहले भी रूबरू होंगे। मैं तो इस गाने को तब जानना शुरू किया मैंने जब मैंने विद्या बालन को जानना शुरू किया। विद्या बालन ने शायद इस फिल्म से डेब्यू किया था या नहीं मुझे याद नहीं है, पर हाँ मुझे जहाँ तक मालूम है कि इस फिल्म में ये बहुत सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो चलिए मैं पहले गाना सुनाती हूँ फिर स्टोरी सुनाती हूँ।

आई होप ये गाना आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया, मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता था, बट जैसा कि मैंने आज आप लोग को बोला ना कि गाने के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देनी,

बस आगे मुझे गाना नहीं याद है। तो कहानी बताती हूँ कि ये गाना जो है ना वो शेखर और ललिता के ऊपर फिल्माया गया, यानी कि शेखर इसमें सैफ अली खान बने हैं और विद्या बालन इसमें ललिता बनी है, जो कि दोनों बहुत ही मासूम हैं और दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं, और बचपन के दोस्त होने के साथ साथ दोनों की दोस्ती इतनी गहरी होती है वो प्यार में बदल जाती है। एक दूसरे से सीधे इजहार करने में दोनों झिझकते हैं। ये गाना ही है जो इनडायरेक्टली इन दोनों की प्यार वाली फीलिंग्स को, मतलब क्या कह रहा है, मतलब भावनाओं की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह ये गाना कंपोज हो गया। तो मेरे गाने की कहानी भी मैंने बता दी है और गाने के बारे में भी बता दिया। अब आप लोग की बारी है, अपना गाना सुनाइए और अपने गाने के पीछे की कहानी भी बताइए। गाना किसने लिखा, गाना किसने गाया, गाना किसने कंपोज किया, ये भी बताइए। और तब तक के लिए शांतनु का एक और कंपोजिशन मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आज उनके गानों को मैं लेके आई हूँ। स्पेशली शांतनु की बात की है मैंने, तो मैं भी आप लोग को रूबरू कराना चाहती हूँ कुछ स्पेशल स्पेशल क्रिएशन से, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी यार इतने अच्छे अच्छे गाने कैसे बन जाते हैं। तो अगर आप कुछ बेहतरीन मजेदार सुन रहे हैं, म्यूजिकल सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आरजी बीना के साथ शो सुन रहे हैं गोंडा मैसेज मसाला। आरजी बीना वाला अपनी पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 91.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन के साथ।

0: मोर पता।
1: यस, ये गाना आप सुन रहे हैं फिल्म पीके से, आवाज है शान श्रेया की, और आपने फिल्म में सुशांत और अनुष्का को इसमें अपनी ब्यूटीफुल केमिस्ट्री के साथ तो देखा ही होगा। सो लेट्स एंजॉय अगेन म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ शांतनु। गुड इवनिंग ममता, कैसी हैं आप? तो भाई जो भी कॉल करके अपना गाना सुनाना चाहता है फटाफट से सुना दे, क्योंकि टाइम ऐसा ना हो कि बीत जाए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

सो गुड इवनिंग अगेन एवरी वन। एंड यस, अभी हमारे साथ कमल एन जी भी लाइव हो गए हैं। एंड यस, आज की प्लेलिस्ट बहुत अलग है, बहुत सारे गानों वाली है। चलिए सुनते हैं ये वाला गाना भी, और मेरे सारे लिसनर्स के लिए ये मेरी तरफ से डेडिकेशन है, रंगीले मेहमानों के लिए, रंगीले लिसनर्स के लिए गाना।

भाई शादी का सीजन आ रहा है और जिसकी भी शादी सेट ना हो रही हो, मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग फटाफट से ये गाना उसको भेज दो गा के और अपनी शादी सेट कर लो, क्योंकि देखिए विलंब नहीं होना चाहिए, शादी जल्दी होनी चाहिए क्योंकि मुहूर्त बीत जाएगा। तो फाइनली इस बार वैसे भी एक महीने मुहूर्त लेट हो गया, बहुतों की शादियां हो सकता है डिले या कैंसिल हो गई हूँ, तो फिलहाल अगर

0: तो चलिए सुनते हैं, पहला कॉल आ चुका है, आवाज सुनते हैं किसके। हेलो,
1: हाँ नमस्कार मिनल।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? अनिल जी, आपकी आवाज पहचान गई मैं। और आज जैसा कि मैंने आप लोग को एक छोटा सा, मतलब कह सकते हैं कि ट्विस्ट दिया है कि आपको अपने गाने के साथ अपने गाने के बारे में भी बताना है, तो फिलहाल आज आप क्या लेके आए हैं?
1: क्या मतलब आज अंताक्षरी नहीं होगी क्या?
0: आज अंताक्षरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारी लड़कियों की टीम तैयार नहीं दिखी, तो इसलिए मैंने डिले करने के बजाय अंताक्षरी ही कैंसिल कर दी। जी, तो मैंने आप लोग को ये एक, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक वो दिया है, ट्विस्ट दिया है कि आप लोग को क्या करना है, आज गाना तो सुनाना है अपनी पसंद का।
1: अच्छा, गाना सुनाना है?
0: हाँ, लेकिन अपने गाने के बारे में भी बताना है कि गाना किस फिल्म का है, किस हीरो हीरोइन पे फिल्माया गया, सिचुएशन क्या थी उस गाने की, और उस गाने को कंपोज किसने किया, उस गाने को गाया किसने।
1: अच्छा, मतलब काफी टास्क दे दिया आपने।
0: नहीं, तो वो तो हमें देखिए, अक्सर हमारे जो पसंदीदा गाने होते हैं उनके बारे में हमें पता तो जरूरी होता है। हाँ, हो सकता है उस फिल्म को हमने ना देखा हो तो बात अलग है, उसकी सिचुएशन ना पता।
1: चलिए, तो फिर मैं अब एक पुराना गीत है रफी साहब का।
0: जी,
1: ये मर्यादा का है।
0: हाँ, फिल्म मर्यादा का।
1: बहुत के सुहाने और ये 1971 की पिक्चर थी। कल्याण जी आपने संगीत दिया है और आनंद बख्शी जी ने लिखा है।
0: वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके पास।
1: और फिलहाल तो ये चल जाएगा ना अपना।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सुनाइए, अब काफी कुछ आपने बता दिया। इसमें हीरो हीरोइन कौन है? हीरो हीरोइन इसमें कौन है?
1: इसमें राजकुमार।
0: राजकुमार, ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं, आवाज की आपकी।
1: चलिए देखिए, प्रयास कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है।
1: वैसे आज कुछ गला बैठा है हमारा।
0: हाँ, चलिए कोई बात नहीं।
1: चलिए ठीक है, मैं शुरू करूँ। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसीरा, जुदाई में नजर आती है ये अब खाब। मोहब्बत के सुहाने दिन, ये तन्हाई नहीं थी इस दर्द की, प्यार की महफिल, ये तन्हाई नहीं थी इस जगती, प्यार की महफिल, तेरे गम से गले कर जहाँ हो रहा है दिल, ये हस

जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन मेरे मायूश होठों पे तेरे गम की आनी है, मेरे मायूश

0: गम की ये उल्फत की निशानी है, ये आंसू और ये आवे मोहब्बत की है, तो बाते मोहब्बत के सुहाने दिन पानी की हसी आते जुदाई में नजर आती है, ये सब ख्वाब की बातें मोहब्बत के सुहाने दिन। धन्यवाद।
1: क्या बात है, क्या बात है। और खास बात ये है कि लिरिक्स एज इट इज़ आपने मतलब फॉलो की, एक शब्द इधर उधर नहीं। क्या बात है, कैसे आपको ये गाने याद रहते हैं? आज हम लोग को भी टिप्स दीजिए, हम लोग भी याद कर सके ये सब गाने।
0: देखिए ये गाने तो पहले हम बहुत गाते थे, तो अब तो काफी दिनों से जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, मौका नहीं मिल पाता, नहीं तो घर वालों को परेशान करते थे हारमोनियम लेके रात भर।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
0: और मैं एक्चुअली से भी जुड़ा रहा, रेडियो दूरदर्शन तो मैं अप्रूव कलाकार।
1: क्या बात है, क्या बात है, तभी वो मतलब आपकी अदाकारी वो लहजा वो बरकरार है, क्या बात है। बिल्कुल, गोंडा शहर आइएगा तो बिल्कुल स्टूडियो में बता रहिएगा, क्या बात है। तो अनिल जी से बात हो गई, और देखिए आप लोग एक से एक दिग्गज कलाकार, और आप लोग की आवाज़ सुनना और सुनाना हम लोग का मतलब क्या कहते हैं ना कि एक मज़ेदार पल होता है हम लोग के लिए। तो चलिए अगली आवाज़ सुनते हैं, किसकी है। हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम
2: जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
1: नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बात कर रहे हैं, आपका नाम
2: जी? मेरा नाम है अविनाश।
1: अविनाश, वेरी गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं शो गोंडा मैसेज मसाला ज्ञान स्ली 89.6 FM पर, और अभी हम कॉल इन पे बात कर रहे हैं लाइव आपसे। तो त्रिपुरा से यहाँ डायरेक्ट कैसे कनेक्शन हुआ, पहले तो आपकी कहानी ये जानने वाली है।
2: जी, आप बताइए,
1: आप गोंडा शहर से हैं या फिर मतलब परमानेंट?
2: नहीं नहीं नहीं, मैं उत्तर पूर्वी भारत मतलब कि बहुत दूर से त्रिपुरा जो कि असम के पास है, यानी के बांग्लादेश बॉर्डर के पास पड़ता है ये।
1: यस यस, आई एम गेटिंग। और मैं ये जानना चाह रही थी कि आप प्रॉपर वहीं से हैं या फिर आप हम लोग को पहले से भी जानते हैं मतलब?
2: नहीं नहीं, मैं वहीं से हूँ, लेकिन आपका कार्यक्रम सुना तो अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए कॉल लगाते हैं।
1: ओह वाह, क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए आप क्या करते हैं त्रिपुरा में?
2: जी मैं तो देखिए मेरा बिजनेस है वेल्डिंग का, जो काम है मतलब कि लोगों के घरों की सुरक्षा करने का दायित्व है।
1: वाओ क्या बात है, मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, लोग काम तो करते हैं लेकिन काम करने के साथ उनका ये होता है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन आपने आज ये जो कहा कि लोगों के घरों की सुरक्षा करता हूँ, वाओ मतलब थॉटफुल काम कर रहे हैं, क्या बात है। तो सभी गाना सुना रहे हैं, तो आप भी आज कोई गाना सुनाना चाहेंगे या फिर कुछ ऑन एयर कहना चाहते हैं लिसनर्स से या इंडिया में जो
2: जी, जी, बिल्कुल, जी मैं गाना तो बिल्कुल सुनाऊंगा क्योंकि मुझे भी गाना का शौक बिल्कुल है। तो मैं ये आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि इसमें जो आपके चैनल है इसमें लाइव फोन इन कब कब आता है, मतलब कब हम जुड़ सकते हैं?
1: आप हमारे जब स्केड्यूल को देखेंगे हमारे एप्लीकेशन पे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शो कितने कितने टाइम पे आता है। सो इवनिंग में मैं होती हूँ लाइव गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाला के साथ, और 6 बजे से लेके 7:45 तक मंडे और वेंसडे को मैं कॉल इन लेती हूँ, मतलब लिसनर्स मुझे कॉल करते हैं और ऑन एयर हम लोग बात करते हैं।
2: अच्छा टाइम वही होता है ना, 6 बजे से 7:45 तक?
1: जी जी बिल्कुल।
2: ओके तो चलिए, तो आप आज आपने जिस प्रकार से, अच्छा इसमें अंताक्षरी भी होता है ना?
1: यस yes, आज वेंसडे को अंताक्षरी होता है, बट आज मैंने कैंसिल कर दी अंताक्षरी बिकॉज लैक ऑफ फीमेल लिसनर्स, क्योंकि लड़के और लड़कियों में होती है अंताक्षरी।
2: अच्छा फिर तो मजा आएगा, फिर अगले हफ्ते जब फिर शुरू होगा तो मैं तो बिल्कुल हिस्सा लूंगा, क्योंकि मुझे अंताक्षरी खेलने का बचपन से शौक है, क्योंकि मैं देखिए जब स्कूल लाइफ में था तभी से मैं अंताक्षरी बहुत खेलता था। और जी
1: मैं इंतजार करूंगी आपके टैलेंट का, क्योंकि अंताक्षरी तो होगी लेकिन अंताक्षरी में बहुत सारे राउंड्स होंगे और उन राउंड्स में अलग अलग तरह से परफॉर्म करना होगा। चलिए आपके टैलेंट को भी उस समय हम लोग देखेंगे। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं?
2: जी आज मुझे आज मैं सुनाने वाला हूँ जो जैसे आपने कहा कि उस गाने के बारे में बोलना है और उसका लिरिक्स के बारे में बोलना है, म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैं बता दूं कि मैं 1994 में मूवी आई थी मोहरा, और इसमें कुमार सानू जी की आवाज में गीत है और वही गीत मैं गाना वाला हूँ। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी जी ने और इसमें संगीत दिया है बिजू शाह ने।
1: क्या बात है।
2: और और इसमें इस गीत में अक्षय कुमार जी के मतलब कि उसमें एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो गा रहे हैं, वो बहुत ही इमोशनल होकर गा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके उनके साथ जो रवीना टंडन जो इस मूवी में अभिनय करते थे वो उन्होंने वो मैं ऐसा सोच दिया था कि सुनील शेट्टी से वो प्यार करने लगे हैं, उनको मतलब कि धोखा दे रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने इस गीत को गाया था उस मौके पर।
1: क्या बात है, मतलब आपकी मैं जितनी तारीफ करूं, और मैं चाहूंगी अपने बारे में आप फिर से लिसनर्स को बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं, आपका नाम क्या है, जिससे लिसनर्स वापस से आपको कनेक्ट कर पाए नेक्स्ट वेंसडे।
2: जी तो मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूं, अविनाश दिल्ली।
1: ओके अविनाश जी, तो मैं चाहूंगी कि आप गाना सुनाएं मोहरा का।
2: जी।

होता ये दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में, एक टूट भी जाता इश्क में, तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में, है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। सच कहते हैं, सच कहते हैं लोग कि देखकर रंज नशा बन जाता है, कोई भी हो रोग दिल का।

0: जिंदा किसी ने ऐसा दर्द दिया है परसों मुझे पाएगा जी। इस गाने का थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ तो जितना अभी तो फिलहाल इतने तक ही और आगे से मैं सुना दूंगा दूसरा कुछ गीत।
1: वाह क्या बात है अविनाश, मतलब आपने गाने को गाया तो लेकिन फील करके गाया, दैट्स ग्रेट, क्या बात है क्या बात है। सो आरजू बीना की तरफ से आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया है शो में, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है मेरे फर्स्ट टाइम कॉलर के लिए, आप अपनी पसंद का एक गाना ऑन एयर सुन सकते हैं। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: अच्छा तो ऑन एयर सुन सकते हैं तो फिर आप मुझे वो जैसे कि मेरी आवाज हमेशा ही आपके कार्यक्रम में गूंजता रहेगा क्योंकि मुझे आपका चैनल बहुत ही पसंद आया, तो मुझे आप और मेरी आवाज इस चैनल पर गूंजता रहेगा, तो ऐसा ही एक गीत है मूवी का नाम है शोरबीर और इसमें गीत है आवाज जाता हूँ, ये गाना मैं थोड़ा सा गुनगुना सुनाता हूँ।

0: लाला आवाज हमारी इस वादी में रहेगी, आज की बातें कल भी कहेंगे, गूंजेगा गीत सुहाना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। आती है पहचानी सी आवाज कहाँ से, कहानी तो है अपनी मगर किसकी जुबां से। हो यार मेरे दिल के तो गले जरा मिलके, यादों के गीत पुराना, हमको न भुलाना कभी, हमको न भुलाना। जी
1: क्या बात है, शूरवीर फिल्म का गाना है ये, और बिल्कुल मैं ये गाना सुनाऊंगी। 1988 में ये फिल्म आई थी और आपने बहुत अच्छा गाया और बहुत एनर्जी से गाया। थैंक यू सो मच अविनाश, अगले वेंसडे इंतजार रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए ज्ञान स्टूडियो 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड। तो अविनाश की आवाज़ में हमने गाना सुन लिया, अविनाश ने बहुत अच्छा गाया। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग के अंदर इतना टैलेंट है। एंड यस, कभी कभी मैं फॉर्चुनेट फील करती हूँ कि मैं आपकी आवाज़ को ऑन एयर अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरे साथ आप लोग ऑन एयर जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी सारे लोग क्या सो रहे हैं, मेरे गोंडा शहर के दिग्गज क्या कर रहे हैं, फटाफट से अपना नंबर डायल करिए 6329336429। और तब तक चलिए सुनते हैं आवाज़ हमारी फिल्म शूरवीर से। लेट्स एंजॉय।

0: तो फिलहाल इश्क बर से सॉन्ग सुन रहे हैं आप, और इसे भी कंपोज किया है शांतनु ने। और फिलहाल अभी हमारे साथ हमारे लिसनर्स में हमारी लिसनर हैं दीपांशी, दीपांशी के साथ इम्तियाज, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? और भाई सारे चाय वाय लेके आ गए हैं, एंड लेट्स एंजॉय। आप जाने मन कह के ना मेरी जान निकाल रही है, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। हाँ, ये गाना सुनने का टाइम आ गया है। और आपको याद है ये किस फिल्म का गाना है, जल्दी से आप लोग बताइए। हमसे हमारी पहचान ले गए, आप जरा सोच के बताइए। फिलहाल मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको याद होगा कि ये गाना किस फिल्म का है, सोच के बताइए। तब तक के लिए गाना एंजॉय करिए, और मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। और अभी भी टाइम है, अगर कोई कुछ सुनाना चाहता है तो ऑफकोर्स सुना सकता है, और कॉल्स करने का टाइम अभी भी आपके पास है, बहुत सारा टाइम है, सो यू कैन कॉल राइट नाउ।
1: दिल के दर्द दिल दे गए।
0: थैंक्स दीपांशी सबके लिए चाय भेजने के लिए।

चाहे शहर की गलियां हों, चाहे गांव के चौबारे हों, हमारी आपके बातें म्यूजिक हर जगह पहुंच जाता है। इसीलिए तो हम आप एक दूसरे के लिए खास बन जाते हैं। जैसे कि आज शांतनु की स्टोरी ने हमें एक मैसेज दी कि अगर सीखना हो तो किसी प्लेटफॉर्म के लिए कोई जरूरत मतलब की जरूरत नहीं है। कब कौन सा जरिया हमारे लिए हमारे फ्यूचर को डिजाइन कर देगा कुछ पता नहीं। शांतनु ने म्यूजिक रेडियो सुन सुन के सीखा, तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन है तो क्यों ना हम भी इस म्यूजिक को एंजॉय करें और बहुत कुछ सीखें। तो सीखने की चाह में आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही बात करते आए हैं और आगे बात करते रहेंगे। दीपांशी, सबलू, कमल, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कमल जी, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। एंड यस, आप चाहें तो अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं क्योंकि आपने सही आंसर दिया। वांटेड फिल्म जिसमें सलमान खान है और आयशा टाकिया इसमें है इनके साथ, और मूवी बहुत ही बेहतरीन है। तो कमल, अगर आप गाना सुनना चाहते हैं फटाफट से चैट रूम में लिख के भेज दें। और इसी के साथ अब समय हो चुका है मुझे आप लोगों से विदाई लेने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन। कल मिलते हैं भोजपुरिया शाम में, करने बहुत सारी भोजपुरी बातें, अपने अवध की खुशबू दुनिया तक फैलाने और करेंगे आपके साथ बातें अटरिया पे चढ़ के। तो अपनी अपनी अटरिया पे चढ़ के आ जाइएगा क्योंकि हमारी अटरिया पे हाजर है सवरिया। थोड़ी पंचायत थोड़ी हो जाए। तो बाय, टेक केयर। आप कुछ म्यूजिकल सुन रहे हैं तो डेफिनेटली 69.6 FM सुन रहे हैं। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपके साथ लाइव हूँ मैं आरजे बीना, आपके वाले शो गोंडा में से मसाला आरजे बीना वाला के साथ।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

नमस्कार आदाब एंड सशकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को अभी तक नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और गीत आपके नाम से तो ऑब्वियसली हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे ही रहेंगे। और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनुष्का श्रावस्ती से, बबीता गोंडा से, इट्स कुमार एमपी रीवा से, कमल नैन जुगल, किशोर वर्मा जी एमपी से, दीपांशी तिवारी गोंडा से, सबलू जी, सबलू सावंत जी बोरीवली मुंबई से, और फिर इसके बाद में सुरेश कुमार जी चौक से, निबरजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा जी उदालक शर्मा मनकापुर से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आरजे सिंपल हुज नॉट सो सिंपल मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निबरजी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, नव्या गोंडा से, नव्या माधोपुर गोंडा से, सौरभ मौर्य गोड़वा घाट गोंडा से, आप सभी का स्वागत है और एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश। सो दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश जानते हैं किसकी है? हमारे पास में है पहली फरमाइश अनुष्का की श्रावस्ती से, और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना अपनों की महफिल में मेंबर। ये क्या, अपनों की महफिल में बेगाने हम? आपको किसने बोल दिया कि आप अपनों की महफिल में बेगानी हैं? आप तो चुलबुली सी, नटखड़ी सी अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, और आप बेहतरीन बेहतरीन अतरंगी अतरंगी नगमों की डिमांड करते हैं और हम लोग के दिल में बल्ले बल्ले की दस्तक देती हैं। तो आप कहां से बेगानी हुई हम सभी के अपनों की महफिल में? फिलहाल मैं तो फरमाइशी की महफिल की बात कर रही हूं, और दुनिया में तो लोगों की जिंदगी में बहुत सारी महफिलें होते हैं, कुछ में वो अपने होते हैं, कुछ में वो बेगाने होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये जिंदगी है, यहाँ उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। फिलहाल मैं अपनी भगभग को करती हूँ नॉन स्टॉप, आई मीन फुल स्टॉप, और दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की ये वाली फरमाइश। फिलहाल तो मैंने सिर्फ नाम से इस गाने को जज कर लिया है, फिलहाल इस गाने को सुनकर फिर अंदाजा लगाएंगे कि आखिर इस गाने में कहना क्या चाहता है सिंगर। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना हमारी अनुष्का की फरमाइश पर, जो की है श्रावस्ती से, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो तेरे इश्क में नाचेंगे, किसके इश्क में नाचना है, मैं भी झूम झूम के नाचना चाहूंगी दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा। वैसे इसीलिए कहते हैं कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, पहले उस बुक को खोल के पढ़ लेना चाहिए। स्टे ट्यून्ड।

हम भी आपके साथ में आप सभी के इश्क में नाचेंगे। और उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग आई है। वैसे आज की रात में ही नहीं, हर रात में फरमाइशी की महफिल में मोहब्बत तो रंग लाती खिलाती है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है बबीता जी की गोंडा से। और बबीता जी को दोस्तों गोंडा से सुनना है गाना, दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा हाँ रोमांटिक वाला नगमा बबीता जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। उदित नारायण अलका याग्निक जी की आवाज़ में धड़कन का ये गाना हमने इंजॉय किया है, सिर्फ और सिर्फ बबीता जी की फरमाइश पर। थोड़ा सा और सुनिए।

वाओ, आई लव दिस सॉन्ग। मुझे तो मजा आ जाता है। वैसे तो पर्सनली, मतलब सही बताऊंगी, बीइंग ऑनेस्ट, पर्सनली तो मैं कभी इस गाने को टाइप करके तो नहीं सुनती हूँ कि मेरा मन कहे मैं इस गाने को सुनूं, लेकिन जब कभी कोई और इस गाने को सुनना चाहता है, किसी और के थ्रू मुझे इस गाने को सुनने का मौका मिलता है, तो इस गाने को बस मैं सुनना चाहती हूँ और इस गाने में खो जाना चाहती हूँ। सो हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी बबीता जी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, और इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, जुगल किशोर वर्मा जी की। और जग्गू दादा को, जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है गाना इतना तो याद है मुझे। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर डुपर हिट नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर। मुझे तो बहुत कुछ याद रहता है, लोगों का अच्छा याद हो चाहे ना हो, लेकिन लोगों ने मेरे साथ क्या ऐसा किया है बुरा जिससे मैं हर्ट हुई।

इतना तो याद है मुझे, हमने एंजॉय किया है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। जग्गू दादा की फरमाइश पर बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दीपांशी तिवारी की। दीपांशी तिवारी को सुनना है गाना मेरे घर आई एक नन्ही परी। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, नन्ही परी प्यारी परी वाला नगमा, लता जी की आवाज़ में फिर से ओल्ड इज गोल्ड नगमा दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर।

घर आई एक नन्ही परी, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा लता जी की आवाज में। दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश

संदेश हमारे पास में है सावन को आने दो गीत की, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास में आई हुई है सबलू सावंत जी की तरफ से, जो कि है मुंबई से। सो सबलू सावंत की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

गाने दो, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों राजेश मीना की, और उनको सुनना है गाना एक दिलरुबा है। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा, अक्षय कुमार का नगमा, अक्की भाई का नगमा, हमारे राजेश मीना की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

दिलरुबा है। दिलरुबा कहने में ही कितना प्यार लग रहा है ना, इस गाने को सुन के सच में लगता है कि सच में कितना प्यार करता है ना, है ना। वैसे उदित नारायण की आवाज को आप सच में फील कर सकते हो। आई लव दिस सॉन्ग, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा राजेश मीना की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों कमल नयन की। कमल नयन को सुनना है गाना इश्क और प्यार का, मजा लीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कमल नयन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

वैसे अल्ताफ रजा किस किस को, अल्ताफ रजा किस किस को मेरी तरह और कमल नयन की तरह पसंद है मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो दीपक खतियागर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का बहुत सारा मजा लीजिए। हमने एंजॉय किया है ये नगमा कमल नयन की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की। मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना आपका आना दिल धड़काना, और मेहंदी लगा के यूं शर्माना, प्यार आ गया है प्यार आ गया है। अगर वो आएंगी नहीं, मेहंदी लगा के शर्माएंगी नहीं, तो प्यार नहीं आएगा क्या? मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा से मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। आवाज़ है कुमार सानू अलका याग्निक की और मूवी है कुरुक्षेत्र।

आप काना दिल धड़काना और डाल के जाना मुझे सताना, प्यार आ गया रे प्यार आ गया। हमने एंजॉय किया कुमार सानोल का याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों उदालक शर्मा की मनकापुर से। मनकापुर से उदालक शर्मा को सुनना है समर स्पेशल वाला गाना, ये है पानी वाला डांस। सो एंजॉय करते हैं कुछ कुछ लोचा है मूवी का ये वाला गाना हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है मनकापुर से। स्टे ट्यून्ड। Now it's really summer special song and also high energy.

सुपर डुपर डुपर हिट नगमा उदालक शर्मा की फरमाइश बजो की है मन कपूर से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना आज रात का सीन बना ले। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, बादशाह का नगमा, चांदनी की फरमाइश पर।

खूबसूरत तड़कता भड़कता सा नगमा, बादशाह और श्रद्धा पंडित का नगमा, जज्बा का नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी चांदनी की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? बताऊंगी जरूर, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुस्तफ़ा जी सऊदी से और नव्या गोंडा से, आप दोनों का स्वागत है आपके अपने शो फरमाइशी में। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों बादशाह के गाने मर्सी की, इंजॉय करते हैं कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना, और कृष्णा वर्मा है दुखरनाथ गोंडा से। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, ये बने रहिएगा अपने रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। लव यू ऑल, एंजॉय करते हैं ये तड़कता भड़कता सा और कहीं गुम हो गया हुआ गाना कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जो लोग पेट पूजा नहीं कर कर रखे हैं, पेट पूजा करके आना, फिर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही करेंगे अपनी फरमाइशी की महफिल में।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य

0: की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
3: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जा बजा जू बजू। सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल आपके अपने शो फरमाइशी में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। एंजॉय करते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। राजेश सिंह जी को मालवे नगर से सुनना है गाना मुझसे भला ये काजल। तो एंजॉय करते हैं रफ़ी जी और लता जी की आवाज़ में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनिल शास्त्री जी, गोरखपुर से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों का ये गाना क्या बात है,
1: तेरा कंगना कंगना कंगना।
0: आहा, हमने एंजॉय किया ये गाना संजय की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और इस तरह उदास नहीं होते हैं ना, ऐसे मैं अपने लिसनर्स को अपने रहते हुए उदास थोड़ी होने दूंगे। इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा हूँ। एंजॉय करते हैं इट्स कुमार की फरमाइश पर देसी बॉयज मूवी का गाना मेक सम नॉइज फॉर द देसी बॉयज। सो एंजॉय करते हैं मेरा फेवरेट वाला गाना, मेरी फेवरेट मूवी का मेरा फेवरेट गाना हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो कि है एमपी रीवा से। स्टे ट्यून्ड। आई लव दिस सॉन्ग, आई रियली लव दिस सॉन्ग एंड आई रियली अप्रिशिएट देसी बॉयज। यू नो आई लव देसी बॉयज।

your voice and make some noise. तेरे लिए आए हैं देसी बॉयज. हमने enjoy किया है ये वाला गाना, super duper duper hit गाना. It's कुमार की फरमाइश पर जो कि है एमपी रीवा से. Now let's go to अगले वाले डिमांड की तरफ. और अगली डिमांड हमारे पास में है दोस्तों मोहित की मालवीय नगर गोंडा से. enjoy करते हैं आदत से मजबूर लेडीज वर्सेज रिकी बहल का ये गाना है अनुष्का. रणवीर सिंह का सुपर डुपर डुपर हिट वाला गाना. स्टे ट्यून्ड एवरीवन.

से और क्या करूं लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। एंजॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है खुशबू तिवारी की, और खुशबू तिवारी को सुनना है शिल्पा राव का गाना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ खुशबू तिवारी की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास गोंडा से रवि। स्टे ट्यून्ड।

तो बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की गोंडा से, और सबीहा को सुनना है गाना अल्लाह माफ करे। सो एंजॉय करेंगे ये वाला नगमा, और इसी के साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश है सबीहा की, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल, बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, नमन और प्रणाम। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। और आज तो हमारी शाम को खास बनाने की जिम्मेदारी आपकी होती है, क्योंकि आज के दिन आप होते हैं वक्ता और हम होते हैं श्रोता। हमारे साथ भाई नितिन सिंह जी हैं। हेलो सर जी, हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और जी कमल नयन हमारे साथ है। गुड इवनिंग मनु सर जी। हाँ, शुभ संध्या आपको भी। और देखते हैं भाई, अब इस कार्यक्रम की आधारशिला यानी कार्यक्रम की नींव कौन रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल। देखते हैं पहले श्रोता कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो, हाँ नमस्कार मनु जी।
0: जी नमस्कार,
1: मोहनलाल श्रीवास्तव बोल रहे हैं।
0: अच्छा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम
1: प्रणाम प्रणाम। और कैसे हैं आप?
0: आप बताइए, आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: हाँ, अब हम ठीक हैं।
0: अभी मतलब अयोध्या में ही हैं कि आ गए गोंडा?
1: जी हाँ, ठीक हूँ मैं, और हमारा पोता भी बैठा हुआ है बगल में।
0: जी जी
1: तो एक गाना मैं सुना देता हूँ आपको।
0: जी
1: विथ म्यूजिक सुना देता हूँ।
0: जी
1: आवाज तो जा ही रही है?
0: जी बिल्कुल।

मत में किस्मत ने प्यार सब दीवार किया है।

0: हो गया सर।
1: क्या बात है भाई,
0: ये मुकेश और कंचन का गाया हुआ है, धर्मात्मा फिल्म का गीत है
1: जी। मैं बहुत अच्छे से जानना हूँ, और क्या बात है, गीत के साथ संगीत था तो मतलब सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो गई।
0: धूम के साथ सर, अच्छा मजे थोड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है।
1: जी जी जी, और दादा ने लिख दिया, अनिल जी प्रणाम आपको, और लिखते हैं क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाया।
0: थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, आज तो आप एकदम रंग में थे।
0: थैंक यू।
1: ईश्वर आपको एकदम स्वस्थ कर दे, बस यही कामना है।
0: जी जी, एकदम स्वस्थ हो जाएंगे सर, तो आपके वहाँ पर मैं आऊँगा फिर।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रतीक्षा करेंगे।
0: जी
1: प्रणाम
0: प्रणाम सर, प्रणाम।
1: हेलो
2: हेलो,
1: अरे प्रभु चरण स्पर्श, हम आपको विशेष
2: खुशी हुई आज आपका कार्यक्रम सुन करके कि अपने प्रभु श्रोतागण ऐसे भी हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और निसंदेह आपके श्रोतागण अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: और
2: कभी मैं भी उस लाइन में आ पाऊंगा तो हमको भी अच्छा लगेगा।
1: अरे नहीं, मतलब ये रिटायर्ड है रेलवे से कि बहुत अच्छे पोस्ट से।
2: हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने देखे, एक यही है आत्मीयता, एक लगाव है कि हम अपनी बात इतने सुंदर ढंग से कहेंगे कि सुनने वाला सुने।
1: और आपको बताऊं, अभी मतलब 15 दिन पहले आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और पेसमेकर लगा है। हाँ, और उसके पश्चात जो है भी वो जो प्रेम है संगीत से वो बरकरार है।
2: बिल्कुल जादू है संगीत।
1: हाँ जादू है, जिसे आप तो जानते हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है।
2: म्यूजिक को मैजिक कहा जाए तो कोई गलत नहीं हो सकता।
1: कुछ गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल। कहीं एक सेंटेंस हमने पढ़ा था, विलियम शेक्सपियर में ने लिखा था, कहीं इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन।
2: यस,
1: शायद ये 12th night का है, या एज यू लाइक
2: 12th night का है। यस 12th night का है,
1: उसी का है ना।
2: हाँ, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, गिव मी एक्सेस ऑफ दैट सेल्फ ईटिंग, लव बी डाइट में सेकंड।
1: मतलब यही से ये शुरू ही होता है, यहाँ से यही से
2: प्ले शुरू ही होता है। लॉर्ड डंकन आता है, उसके सामने लोग गाना शुरू करते हैं।
1: हाँ, वही मुझको याद आया कि हमने, आपने कहा संगीत, तुमको याद आया कि कहीं शेक्सपियर ने भी इसकी तारीफ की है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आप तो राग यमन कल्याण के बादशाह हैं।
2: मैं राग यमन कल्याण के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूं, और चूंकि आपके कार्यक्रम का नाम बहारे गजल है, भले आज के दिन आप गजलों को उतना तवज्जो नहीं दे पाते होंगे, बट बहारे गजल है तो हमारा तो फर्ज बनता है कि मैं गजल से ही स्टार्ट करूँ, यमन कल्याण की गजल ही स्टार्ट करूँ।
1: अरे वाह क्या बात,
2: और उसी में मैं कोशिश करूंगा कि कितने रंग उसमें भरे जा सकते हैं, कि रंगीन दिखाई पड़े, बदरंग न होने पावे, तहां तक मैं खींचूंगा, और जहां से लगेगा कि नहीं खींच पा रहा हूं वहीं पर वाइंड अप करूंगा।
1: नहीं तो ये हमको लगता है 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम आपके नाम है।
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सारे हीरो को समय मिलना चाहिए, मैं बस केवल अपना ही समय लूंगा, मैं आपका अधिक समय नहीं जाया करूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बाहरी गजल में गजल से शुरू करूंगा और जहां तक चल पाऊं वहां तक चलूंगा।
1: जी, मैं अपने श्रोताओं को बता दें कि ये श्री अशोक त्रिपाठी जी हैं और डाक अधीक्षक इस समय प्रयागराज, और आशीर्वाद ये है कि गोंडा में कुछ दिन रहे, लेकिन दूरी होने के बावजूद भी हमारे रेडियो स्टेशन से स्नेह बना है, इसके लिए हम आभारी हैं आपके।
2: धन्यवाद आपका, और मैं शुरू करता हूँ जगजीत सिंह जी के गजलों से स्टार्ट करता हूँ, और आगे मन कल्याण में ही है, जितने भी गीत उसमें है, जो भी लाइन दर लाइन इधर से उधर हमने जैसे ताना बना उसका बुना है, वो सारा कुछ राग यमन कल्याण पर भी है, बट कोशिश करता हूँ कि कहाँ तक इसमें सफल हो पा रहा हूँ, ये तो हमारे श्रोतागण जज करेंगे, और मेन जज आप है।
1: अरे धनी प्रभु, ये
2: मैं शुरुआत करता हूँ मैं
1: जी।
2: तुम इतना जो मुस्कुरा

0: ना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में।
1: हाँ।

जलाना, ऐसे में झूलाना, मौसम है आशिकाना।

0: जलाए बुझाए मुझे याद आए, बहुत याद आए मुझे भी याद आए, बहुत याद आए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, अगला स्टेंजा है
1: जी।
0: इससे आगे की अब दास्ता मुझसे सुन सुन

मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें तू या दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं, एक एहसान कर।

होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अगला स्टेंजा है कि मैं

0: चले आना, जल्दी चले आना, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ओके, यहीं तक खींच पाया हूँ,
1: मतलब। अच्छा ये बताइए, जितने प्रभु ये सारे गीत हैं, ये सभी राग यमन कल्याण पर
0: हैं? यमन कल्याण पर ही है, इसीलिए तो एक दूसरे में गुंथ जाते हैं, नहीं तो बन नहीं जाते एक दूसरे से। फिर आदमी को अगला गीत गाने के लिए उसका आलाप और टोन चेंज करना पड़ जाता।
1: अरे मतलब ये विश्लेषण आपने कितनी मेहनत की होगी एक एक गीत को चुनने के
0: पीछे। करता तो लौटता हूँ कि कौन किसके साथ जुड़ पाएगा, नहीं तो जुड़े ही नहीं।
1: मतलब ये सामान्य बात नहीं, ये बहुत मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसको कहा जाएगा।
0: यही सब है कि जैसे कोई किसी क्षेत्र में थोड़ा सा सोचता रहता है कि इसमें क्या किया जाए, क्या नई चीज खोजी जाए, क्या घटाया जाए, क्या बढ़ाया जाए।
1: वाह, मतलब हमको लगता है कि संगीत वालों को आपको बुलाकर जो है पद्मश्री देना चाहिए।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, बुलाएंगे अगर तो हम वहाँ जा करके कुछ जरूर ही सीखेंगे, और नहीं बुलाएंगे तब भी मैं जाऊँगा उन लोगों की शरण में कुछ सीखने के लिए, सीखना ही चाहता हूँ इसमें।
1: नहीं नहीं, मतलब आपने जो आज बात सिखाई कि इतने सारे राग, मतलब आप लगा ही नहीं कि कभी कोई दूसरा गीत बजा, लगा एकदम एक उसी में चल रहा है,
0: एक ही उसी के मुखड़े पर ये सारे अंतरे फिट हो गए उस पर।
1: हाँ हाँ, मतलब ये जादू है। आपने कहा था कि म्यूजिक को जादू कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और आपने स्वयं इसे साबित कर दिया,
0: प्रयास किया है। बाकी
1: अरे क्या
0: अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छा।
1: मोहनलाल जी लिख दिया भाई, वेरी नाइस मिक्सिंग, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को हमको मिला कि रागमन कल्याण में क्या क्या गीत हो सकते हैं। ठीक है प्रभु, चरण स्पर्श। जी हाँ भाई, तो देखिए राग यमन कल्याण, भाई राग यमन कल्याण क्या कहा जाए, और अपने आप में मतलब ये एक बहुत अनूठी बात है कि हम एक राग को लेकर चल रहे हैं, राग यमन कल्याण, और उस पर हमने एक स्टैंजा लिया और इसके पश्चात तीन स्टैंजे हम बनाते हुए चले गए और वो कहीं भी टूटने नहीं पाया। जी हाँ, देखते हैं कौन हमारे साथ।
2: हेलो,
1: नमस्ते जी। नमस्कार जी, थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है। आप रायबरेली से बात कर रही हैं, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? जी रिंकी जी। जी प्रणाम
2: सर। रिंकी पिंकी एक कॉल में दो श्रोताओं के नाम।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, रिंकी पिंकी। तो क्या सुनाने? जी बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे नए श्रोता हैं और रायबरेली से हैं।
2: अनु पांडे जोड़ा है आपके चैनल।
1: अच्छा अनु जी, हाँ बहुत अच्छे श्रोता है भाई हमारे वो जी। तो कुछ सुनाने वाली है आप?
2: जी जी सर बिल्कुल
1: जी। थोड़ा सा अपनी आवाज़ थोड़ी सी माइक फोन के पास के लिए थोड़ी सी दूर से आवाज़ आती हुई लग रही है।
2: जी सर अभी आ रही है।
1: जी अब सही आ रही है, इतनी ही दूरी पर रखिए।
2: सर शेर व शायरी सर कर सकते हैं हम?
1: जी जी बिल्कुल कीजिए।
2: उम्मीद को आंखों में बचा कर देखो, उम्मीद को आंखों में बचा कर देखो, गिरती हुई पलकों को उठा कर देखो, परवाने हर एक शब्द से आएंगे, परवाने हर एक शब्द से आएंगे, मगर शम्मा को खुद के लिए कभी जला कर जुड़े।
1: क्या बात है,
2: शम्मा को खुद के लिए कभी जला कर जुड़े।
1: क्या बात है
2: भाई। और सर दूसरी बोलना चाहेंगे सर?
1: थोड़ा सा तेज बोलिए, थोड़ा सा तेज।
2: जी सर बिल्कुल सर, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है सर।
1: नहीं नेटवर्क सही है, बस खाली आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे तो आ जाएगा।
2: दूरियों की न परवाह किया कीजिए, दूरियों की न परवाह किया कीजिए, फिर जब भी चाहे बुला लिया कीजिए, ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, ज्यादा दूर नहीं है हम आपसे, फिर जब भी चाहे बुला लिया कीजिए।
1: क्या बात है जी, हाँ बिल्कुल, जहनों में दीवार न हो तो मिलना कोई दुश्वार नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जी जी बिल्कुल। और सर जाते जाते सर एक सॉन्ग भी अनु दीदी के लिए हम गाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी फरमाइश थी कि हम अपनी आवाज में एक गीत सुनाएं उनको।
1: जी लेकिन फोन को नजदीक रखें।
2: जी जी सर बिल्कुल
1: जी।

0: तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलके तुमको है बताना।
1: जी बहुत प्यारा गाया आपने भाई, बहुत प्यारा गाया।
0: थैंक यू सर।
1: और एक बार अपना नाम आप पुनः बता दें।
0: जी सर, मैं रेडियो की वही जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली।
1: जी जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से पिंकी रिंकी।
0: जी सर,
1: पहली बार आपसे बात की और बहुत अच्छा लगा, और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगी।
0: जी, और सर अनु दीदी की फरमाइश थी कि हम दोनों बहनें बात करें, तो सर हमारी बात तो आपसे होगी, हमारी सिस्टर से भी कर लो।
1: जी कर लेते हैं।
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: जी प्रणाम, नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: सर हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: आपका स्वागत है आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में।
2: हेलो।
1: जी आपका स्वागत है आपके ही कार्यक्रम बहारे गजल में।
2: थैंक यू सर।
1: जी तो क्या सुनाने वाली हैं आप?
2: सर वैसे तो हम गाते
1: जी
2: गाते हैं नहीं,
1: जी
2: बात कर लेते हैं बस।
1: चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? हेलो जी, लगता है फोन स्वतः डिस्कनेक्ट हो गया भाई। और क्या बात है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाया है आपने रिंकी पिंकी जी। जी और हमको तो राग यमन कल्याण की मिक्सिंग, मतलब तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो का तीनों स्टैंजा, और श्री मोहनलाल श्रीवास्तव जी ने तो म्यूजिक के साथ आज एक नई शुरुआत की, संगीत के साथ गायन, क्या बात है भाई। ये एक अच्छी परंपरा की आपने पहल की है, शुरुआत किया है, इसके लिए हम आपके भाई मुबारकबाद देते हैं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
3: हेलो।
1: हेलो
3: नमस्कार।
1: अरे दादा प्रणाम, ये आवाज़ गोरखपुर की है।
3: और कैसे हैं मधु जी?
1: जी आपका आशीर्वाद दादा। आप कैसे हैं दादा?
3: बस आप लोगों की दुआएं हैं।
1: जी तो आज हम रोमांटिक कुमार सुनेंगे कि कुछ दर्द कुमार सुनेंगे?
3: अब आप जो कहें मैं वही सुना दूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, आप जो चाहें।
3: मैं सोच रहा था रफी साहब का, देखिए मैं तो पुराना ही गाना सुनाता हूँ।
1: जी बस वही अच्छा, अच्छी बात है।
3: तो मैं हफ्ते जख्म का गाना नवीन निश्चल जी जी ने गाया है।
1: अरे हम पहुँच गए साहब,
3: तुम जो मिल गए।
1: हाँ बहुत प्यारा गीत।
3: मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ।
1: अरे अरे साहब, अरे
3: मेल नहीं, इसको सुनिए, फीमेल नहीं, मेल समझिए।
1: जी जी, जी।
3: दारा जाओ आप लोग। हाँ ठीक है जाओ। ये हमारे पुराने डागी हैं सर।
1: जी जी कोई बात। जी
3: अरे वो सब वही जो है।
1: नहीं कोई बात नहीं, मतलब इतना तो होता है संगीत।
3: तो क्या मैं शुरू करूँ?
1: जी जी निसंदेह।
3: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है के जा मिल गया के जा मिल गया एक भटके हुए राही को कालुआ मिल गया तुम जो
4: मिल जाओ तो ये लगता है के जहां मिल गया के जहां मिल गया। बैठो न दूर हमसे देखो अपन हो, बैठो न दूर हमसे देखो अपन हो, किस्मत से मिल गए हो मिल के जुदा न हो, किस्मत से जो मिल गए हो मिल के जुदा न हो।

0: दादा एकदम निभा दिया आपने गीत को,
1: सुपर डुपर सिंगिंग।
0: अरे बहुत मतलब लिखा है, सुपर डुपर सिंगिंग, तुम जो मिल गए हो श्री मोहनलाल श्रीवास्तव जी ने, क्या बात है।
1: अरे धन्यवाद उनको भी, मोहनलाल जी को भी धन्यवाद।
0: हाँ मतलब आज उन्होंने संगीत के साथ गीत मिलाया है।
1: धन्यवाद
0: दादा, अच्छा स्पर्श।
1: ओके सर, बहुत बहुत आपको भी
0: जी प्रणाम। बहुत प्यारा गाया भाई आपने, बहुत प्यारा। जी हमारे साथ भाई राजेश सिंह जी हैं और इसके पश्चात नमस्ते जी, हाँ प्रणाम आपको भी, और कमल नैन जी हैं, नाइस जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और देखते हैं अब हमारे साथ अगली श्रोता कौन है हमारे साथ।
2: हेलो।
0: हेलो
2: जी सर, नमस्ते।
0: जी सर नमस्ते,
2: नमस्ते। अच्छा
0: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बस हम पहचान गए, ये पूरब दिशा बोल रहे, प्राची जी बोल रही हैं।
2: जी जी बिल्कुल
0: जी, कैसी हैं आप।
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं।
0: आशीर्वाद आपका,
2: आपका भी आशीर्वाद है।
0: जी जी वो हमेशा रहेगा सदैव। तो आज आप क्या सुनाने वाली हैं।
2: आज सुनाने वाली हूँ हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते।
0: हाँ क्या बात है
2: जी, तो स्टार्ट करूं।
0: जी जी बिल्कुल।

0: क्या बात है भाई, यही लगता है इस गीत को निभाना है आपने बहुत कायदे से। आशिकी 2 बहुत दिन के बाद मेरे सामने आई
1: जी, थैंक यू।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: नमस्कार जी। हाँ भाई, ये प्राची जी, क्योंकि तुम हो आज एक नए, मतलब लगता है कि हाँ हम लोग बहुत दिनों के बाद आशिकी 2 पर पहुंचे। अपने ज़माने में ये मतलब गीत लोगों की ज़ुबान पर हुआ करता था, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। भाई हमारे राजेश सिंह जी इतने प्यारे और इतने जानकार श्रोता हैं, लेकिन जो है सर्दी में गर्मी का एहसास, मतलब गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है। और इसके पश्चात भाई हम चाहते हैं कि भाई राजेश सिंह जी भी कभी कुछ सुनाएं, और अपने मुखारविंद से बहुत जानकार हमारे श्रोता सब बहुत प्यारे हमारे भाई। तो राजेश सिंह जी, जी आप देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार
2: जी, मैं राम नरेश तिवारी बोल रहा हूँ सुरैना से।
0: जी बस आवाज अपनी आप कहीं अगर रेडियो रखा हो तो उसको जरा दूर कर दीजिए।
2: अच्छा जी, अच्छा हो गया
0: जी। अब आपका शुभ नाम।
2: शुभ नाम राम नरेश तिवारी सुरैना से बोल रहा।
0: जी प्रणाम आपको।
2: नमस्ते सर, प्रणाम मत कीजिए सर, आप इतने आम आदमी पढ़े लिखे।
0: नहीं नहीं, आप हमारे श्रोता हैं और श्रोता हमारे लिए जो है वो बहुत
2: महत्वपूर्ण। वैसे सर मैं योग का नियमित करता हूँ।

0: अंजनी कुमार।
1: अरे चलो स्पर्श
0: नमस्ते।
1: हाँ आप आशीर्वाद दिया कीजिए जी। कैसे हैं आप
0: जी? ठीक है।
1: क्या बात है, मतलब प्रबुद्ध श्रोताओं की भरमार हमारे पास सुनने लगी है धीरे धीरे। और जो प्रबुद्ध श्रोता है वो आज प्रबुद्ध वक्ता है।
0: जी
1: जी, तो क्या सुनने वाले हैं
0: जी? एक तरफ महमूद जी का एक गाना है
1: जी,
0: पुराना है
1: जी,
0: तो उसी को सुनाना चाहते हैं
1: जी। बिल्कुल स्वागत
0: जी। सुनाऊं मैं?
1: जी जी निसंदेह।
0: ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। अपना पराया मैं हर बा ना मैं हर बा कोई ना हो। ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो। जा कर कहीं खो जाऊं मैं, जा कर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जा कर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, दुनिया

दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो उल्फत का बदला मिल गया वो गम लुटा वो दिल गया उल्फत का बदला मिल गया वो गम लुटा वो दिल गया चलना है सबसे दूर दूर अब का

0: ना मेहरबा कोई ना हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, है दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। पहली बार ये हमने नगमा सुना, क्या बात है, क्या खजाने में से क्या ढूंढा है आपने, क्या ये एकदम क्या कहेंगे कोहिनूर ढूंढ लिया, क्या बात है, बहुत शानदार बहुत शानदार।
2: और एक दो लाइन का शेर भी है
1: जी।
2: कुछ और जमाना कहता है
1: जी,
2: कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात करूं अपने दिल की।
1: क्या बात है, आज पहली बार किसी शेर ने शेर पढ़ा है
2: जी।
1: क्या बहुत शानदार, क्या बात है, आज शेर ने शेर पढ़ दिया।
2: अरे एक से एक आपके पास कलाकार है।
1: अरे नहीं नहीं, मतलब आज शेर ने शेर
2: सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है,
1: बहुत अच्छा।
2: और आपका अपनापन जो प्रेम आप देते हो उससे हम लोगों का साहस बढ़ता है।
1: अरे मतलब आप लोग हमारे लिए कोहिनूर है
2: जी,
1: कोहिनूर से कम नहीं, बहुत अच्छा लगा, हमने तो पहली बार ये सुना, हमको बहुत पसंद आया
2: जी, थैंक यू।
1: अच्छा सर स्पर्श
2: खुश रहिए
1: जी। क्या बात है, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले

0: चल जहाँ कोई ना हो। बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, निसंदेह। जी हाँ भाई, अब देखते हैं ऐसी जगह लेकर कौन चलता है जहाँ पर कोई ना हो, कोई ना हो। और ये भी होता है कभी कभी कि यहाँ चाहते हैं और नहीं, शायद मैं दिल की सुनूं या अपनी सुनूं, क्या बात है, देखते हैं वैसा तो कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ मनु सर नमस्ते।
0: अरे मुमताज भाई सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर जी, और आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप बताएं।
1: जी हम भी खैरियत से हैं, बस आप ऊपर वाले की दुआ है, आप लोगों की भी करम है।
0: जी जी जी।
1: और सर ठीक ठाक है आप?
0: जी, तो आज हम क्या सुनने वाले हैं आपसे?
1: अब जो आप फरमाइश करेंगे सर, कुछ गुनगुना देंगे हम भी।
0: जी जी, जो गुनगुनाना हो आपको।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ सर
0: जी,
1: बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा।
0: हाँ।
1: आवाज आ रही है सर?
0: अरे बिल्कुल, आपकी आवाज गूंजती है कि आती है।
1: बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा।
0: हाँ।
1: दानेश्वरों को रास्ता पागल बताएगा।
0: जी।
1: महिला लिबास देख कर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा।
0: हाँ, क्या बात है, मैं कौन सा फल हूँ ये दरख्त बताएगा। क्या बात कही आपने, यहाँ डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही।
1: मर्मन के सर जी,
0: जी
1: सुनाता
0: जी,
1: पर के मरमर के मोहब्बत में जिया कौन करेगा।
0: हाँ?
1: और ये शक्ल हंसी तेरे सिवा कौन करेगा।
0: हाँ?
1: आगव से मोहब्बत से नजरे न चुराओ, बीमार तुम्हारा हूँ दवा
0: कौन करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शानदार।
1: तो इसीलिए कहना है
0: जी,
1: मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू ही, प्यार तू ही, चाहत तू ही, आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला न पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी हर खुशी है। जी सर
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तू मेरी जिंदगी है, क्या बात है।
1: जी सर,
0: बहुत बुलंद आवाज में बहुत अच्छी बात आपने कही और शायरी भी बहुत गजब।
1: जी सर, आप लोगों की दुआ है, उपाय का करम है।
0: जी जी जी जी, अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज सर।
0: जय भाई, जो मुमताज अंसारी साहब जी थे और इनकी तो बुलंद आवाज, क्या एकदम मोहम्मद अजीज के बाद अगर किसी की आवाज में हमको बुलंदी दिखाई पड़ी तो ये हमारे भाई

0: हेलो
1: सुरेश कुमार।
0: अरे दर्द कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ ठीक है भैया।
0: जी
1: और आप ठीक हैं?
0: जी जी जी, मतलब आज आपकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली, हमको लगा कहीं ऐसा ना हो, कहीं न सुनने को मिले। अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, जी जी नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नंबर लगेगा।
1: सभी तो अपने हैं ना
0: जी,
1: वो सब अपने भाई हैं, अपने बहन हैं। चलो बिना देरी किए हल्का फुल्का एक एक लाइन सुना देते हैं।
0: जी
1: तो शुरू में आए
0: जी।
1: हाँ दादा की आवाज़ आएगी।
0: आहा क्या बात है।

देखो हमारी याद आएगी आएगी आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। मेरा मन कहता है जीवन को कभी कोई बदली छाएगी आएगी या कभी कोई बदली छाएगी आएगी किसी को हमारी याद आएगी दुनिया में कौन हमारा है उम्मीद का एक सहारा है। कष्ट है और कितनी दूर किनारा है, मर ही ना सही कोई मौत।

0: क्या बात है, दोनों हेमा मालिनी और दोनों लता जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या चुना है, क्या बिछाला है आपने। और राजेश सिंह देखते हैं भाई, लता जी के सांग, सुरेश जी नमस्कार, वेरी नाइस भाई, बहुत अच्छा लगा उनको।
1: अच्छा अच्छा
0: जी जी प्रणाम। जी हाँ भाई, अब तो सुपर स्टार से भर चुके हैं अब हमें भाई। देखिए अनूप मिश्रा जी भी आ चुके हैं, प्रशांत जी का भी फोन हमारे पास आ चुका है। जी हाँ, फोन कीजिए आप। 100 चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी भाई। हमारे पास भी 2 सुपरस्टार हैं, एक हमारे अनूप मिश्रा जी हैं और एक प्रशांत जी हैं। तो आप दोनों से निवेदन है कि कृपया 6393-31-64-29 ये आपका ही नंबर है और इसे आप तत्काल डायल कर लें। वो कुछ नेटवर्क की समस्या थी, वो दूर हो चुकी है।

0: जी हाँ, मौलाना सरोज ने कहा है सुपर सिंकिंग और गैनस्ली का ये प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों की तमन्ना पूरी हो रही है, चाहे जो चाहे जिस एज का हो। इसीलिए अनु जी आपको और गैनस्ली जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, और अब देखते हैं हमारे साथ कौन उपस्थित है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, बोलिए ना आप।
1: सर नमस्कार।
0: अरे प्रशांत जी प्रणाम, कैसे हैं आप?
1: प्रणाम प्रणाम सर, बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं?
0: पिछले बुधवार से, मतलब पिछले कई बुधवार को आपको मिस किया हमने।
1: जी जी, मिस तो हम भी सर रोज करते
0: जी,
1: लेकिन जब भी टाइम मिलता है आजकल इतना इंगेज जा रहा है कि जल्दी फोन ही नहीं लगता।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब समय नहीं मिलेगा उसमें मिलाया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो क्या मधुर आवाज में क्या सुनने वाले हैं आपसे हम?
1: सर आज आपको लता जी का एक गाना सुनाते हैं।
0: अरे वाह।
2: अगर मुझसे मोहब्बत है

दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते, तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है।

दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो।

0: से मोहब्बत है।
1: थैंक यू सर।
2: कलेजा निकाल लिया आपने प्रशांत जी, मतलब वास्तव में वाह भाई, दादा लिख रहे हैं प्रशांत जी ने लतला जी का सेंग सांग को निभाया है, बहुत खूबसूरत गाया, नहीं वास्तव में निभा दिया आपने। अब आपको हम गोंडा के उदित नारायण कहते थे साहब, अब बताइए अब हम आपको गोंडा की लता कैसे कह दें, लेकिन क्या गाया है आपने, मतलब
1: तो नहीं,
2: बहुत शानदार। अब हम चाहेंगे कुछ आपसे और सुन लें।
1: अब क्या सुना दें आपको,
2: जो आपका मन हो बस आपके ही गीत से समापन करेंगे। बुधवार को आपने नहीं सुनाया था तो इस बार आपको दो सुनना पड़ेगा।
1: चलिए सर, एक आपको उदित नारायण जी का गाना सुना देते हैं, छोटा सा लाइन
2: जी।
0: आखिर तुम्हें
2: आए हाय।

0: बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। थैंक यू सर।
1: क्या बात है प्रशांत जी भाई, क्लैपिंग मैं यहाँ से आपके लिए कर रहा हूँ। क्या शानदार, मतलब भाई हमारे इस कार्यक्रम को अंत में सफल बनाने के लिए बहुत सारी तारीफें बटोरी आपने। अनिल दादा कहते हैं प्रशांत ने लता जी का के सांग को निभाया है बहुत खूबसूरत, और श्री मोहनलाल जी लिखते हैं बहुत बहुत सुंदर गाया आपने सभी दर्दो अलम दे दो, और कायनात जी ने तो क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, तालियां तालियां, मतलब सब आपके इस्तकबाल में है। क्या बात है प्रभु, बुधवार को 10 मिनट का समय निकाल दिया कीजिए, हम लोगों का भी जीवन थोड़ा सा सार्थक हो जाया करे।
0: नहीं नहीं सर, बिल्कुल आपसे ज्यादा सर हमारी ख्वाहिश रहती है, लेकिन क्या करें थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रहती है, उसी में सर निकल जाता है टाइम का, थोड़ा ड्यूरेशन फिगर गड़बड़ हो जाता है।
1: देखिए हमने टाइम आज 5 मिनट बढ़ा दिया, आप आए तो आप महफिल में शरीक तो हो,
0: और नहीं नहीं बिल्कुल
1: रिश्ते जब बन जाते हैं तब समय निकाल लेता है इंसान।
0: नहीं नहीं बिल्कुल सर, हम पूरा प्रयास करते हैं सर।
1: जी हाँ, मोहनलाल सचिन ने लिखा वेरी वेरी नाइस वॉइस, आपका गाना सुनकर तबीयत खुश हो गई। क्या बात है भाई, आपने एक बहुत अच्छे इंसान को, भी उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने आपने उनको एक नई जिंदगी दी, मतलब
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: ये संगीत में जादू है और ये बात आप साबित करते हैं
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता दी है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर सके प्यारी सी मुस्कान, आसमान वाले ने चाहा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्रोग्राम बाहर ए गज़ल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए रेडियो नस्ती 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: आज की कहानी प्यार की जीत। फिर पड़ोसियों के लिए तुमने 3 प्लेट्स लगा दी। हर त्योहार पर अपना दिल दुखी करवाने से थकती नहीं हो, अभी उतरामू लेकर चली आओगी। कहते कहते आमिर किचन में अपनी पत्नी इला के पास पहुंच गया। इला ने बनावटी गुस्सा दिखाया, परेशान मत करो। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा, आमिर की तरफ घूम गई और मुस्कुरा कर बोली, आमिर कितना अच्छा लगता है ना, हर त्योहार कैसा सुंदर लगता है। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को हर त्योहार मनाना चाहिए। पर हम तो सब फेस्टिवल्स मनाते हैं ना मम्मी। बच्चों के आने की आहट पर इला अब तक अपना काम करने लगी थी, बोली हाँ हर त्योहार सेलिब्रेट करना चाहिए। अब आमिर के साथ साथ स्वरा और हर्षल ने भी एक कोने में रखी थाली से पिन्नी उठाकर खानी शुरू कर दी थी। स्वरा की नजर 3 प्लेट्स पर पड़ी। उन आंटी को भी दोगी जो हर बार आपके साथ इतना मिसबिहेव करती हैं? हाँ अच्छा तो नहीं लगता, पर फ्लोर के 2 फ्लैट्स में त्योहार पर कुछ दूं और एक को ना दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इला बोली। हर्षल ने कहा, पर वो आंटी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मम्मी, मत दो उन्हें कुछ। आमिर ने कहा, पिन्नी बहुत अच्छी बनी है इला, उसे मत दो। क्यों ऐसे घर में दे आती हो जहां मुझे पूरा यकीन है कि ये सब डस्टबिन में जाता होगा। इससे अच्छा तो किसी गरीब को दे दो, वॉचमैन को दे दो, हाउसकीपिंग वालों को दे दो, धोबी को दे दो, इस घर में क्यों देती हो। इला ने शांत भाव से कहा, रिलैक्स तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे उस घर में बार बार इंसल्ट करवाने के बाद कुछ भी नहीं देना चाहिए। चलो अगली बार से कुछ नहीं दूंगी, सचमुच हर बार मन बहुत दुखता है। मलाड की कामधेनु सोसाइटी की इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर 4 फ्लैट्स थे। हमेशा की तरह सबसे पहले इला ने ज्योति आंटी फिर कुलकर्णी फैमिली को हैप्पी लोहड़ी कहते हुए प्लेट्स दी। फिर दिल पर पत्थर रखकर एक ठंडी सांस लेकर इला ने अमला के फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा खुला, अमला ने कर्कश आवाज में बोला, क्या है? हैप्पी लोहड़ी, ये आपके लिए मैंने पिन्नी बनाई है। अमला ने प्लेट झटके से ली और दरवाजा झट से इला के मुंह पर बंद कर दिया। इसमें कुछ भी नया नहीं था, 3 साल से यही हो रहा था। इला मन ही मन बहुत उदासी हुई, चुपचाप अपने फ्लैट में चली गई।

0: तो बताओ हमको,
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना।
2: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की जीत। अब तक आपने सुना इला और आमिर का परिवार सभी धर्मों के सारे त्योहार मनाता था। हर त्योहार में इला अपने पड़ोसियों को कुछ न कुछ जरूर देती थी, लेकिन उनके एक पड़ोसी हर बार उसके साथ खराब व्यवहार करते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अब आगे, आमिर और बच्चों ने उसे ध्यान से देखा, समझ गए वही हुआ जो हमेशा होता था। इला अपने परिवार में खूब खुश थी, उसने आमिर से प्रेम विवाह किया था। इला की सहेली विनी की शादी में मिले थे दोनों। थोड़ी मस्ती शरारत के मूड में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। फिर चल निकला था एक सिलसिला मोहब्बत का, लंबी लंबी बेचैन रातों का, एक दूसरे की कॉल्स के इंतजार में कटते दिन रात का। इला और आमिर ने धर्म की हर दीवार को अपनी लाइफ से निकाल फेंका था। यही शिक्षा बच्चों को भी दी थी। सब हर त्योहार सेलिब्रेट करते, सब ठीक था, पर जब से अमला आई थी, इला का मन त्योहार पर जरूर दुखता। वो हंसमुख मिलनसार स्वभाव की थी, लोग उसे पसंद करते थे। आमिर भी ऐसा ही था, बिल्डिंग में किसी को कोई भी परेशानी होती वो हाजिर रहता, सबके काम आता। आमिर और इला सब समझ रहे थे कि मुस्लिम पति और हिंदू पत्नी का ये जोड़ा अमला को नागवार गुजरता था। कई बार ऐसा होता था कि कभी आते जाते अमला और इला मिलते, अमला एक झटके से तुरंत इला की तरफ पीठ कर लेती, कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं। उसके चेहरे से ही समझ आ जाता कि अमला को ये परिवार बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार जब अमला का बेटा अर्नब इला को देखकर मुस्कुराता, तो अमला तुरंत उसे अपनी ओर खींच लेती। आज भी यही हुआ था। इला को हमेशा इस बात का दुख होता कि कुछ लोग अपने इर्द गिर्द अपने धर्म की दीवार के अंदर ही रह जाते हैं। वो देखते ही नहीं कि धर्म की दीवार के पार दुनिया कितनी सुंदर हो सकती है। नीचे से ढोल का शोर सुना तो इला खिड़की की तरफ भागी। उसे ये देखकर बहुत मजा आया कि आमिर और बच्चे सबके साथ मिलकर डांस कर रहे थे। तीनों रंग बिरंगे हो चुके थे। आमिर ने फिर उसे देखा, हंस दिया, इशारा किया, बस खाना खाकर आ रहे हैं। थोड़ी देर में हर्षिल आया, मम्मी पापा ने आपके लिए खाना भेजा है, ये सारे डिब्बे जल्दी से खाली करके दे दो, कैटरर के हैं। इला को आमिर पर बहुत प्यार आया, बोली अब तुम लोग भी जल्दी आ जाओ, लोहड़ी अच्छे से बीत गई। सबका दिन बहुत अच्छा बीता था। कुछ दिन और बीते, जीवन सामान्य गति से चलता रहा। एक दिन आमिर ऑफिस में था, बच्चे स्कूल गए हुए थे। इला ने सोचा पार्लर हो आती हूँ। उसने जैसे ही लिफ्ट में पैर रखा, अचानक अमला भी लिफ्ट में घुसी। उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि इला भी लिफ्ट में है। जब देखा तो उसकी तरफ पीट कर ली। लिफ्ट चलने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक रुक गई।

जान बचाओ।

0: अरे सीटी बज गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे दिन तिनक दिन, अरे सीटी बज गई, ओ गड़बड़ हो गई।
1: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की जीत। अब तक आपने सुना, इला और आमिर ने इंटरकास्ट शादी की थी। वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देते थे और हर त्योहार मनाते थे, लेकिन ये बात शायद उनके एक पड़ोसी को पसंद नहीं थी। इला कितनी भी कोशिशें करती पर अमला उसे फूटी आंख पसंद ना करती। एक दिन वो दोनों साथ में लिफ्ट में जा रहे थे कि लिफ्ट अचानक बंद हो गई। अब आगे अमला बेचैन हो गई, इला से बात करनी नहीं थी, इधर उधर देखती रही, फिर इला की तरफ पलटी। एक वाइट टॉप, रंग बिरंगी सी स्कर्ट, गले में स्टाइलिश सा स्कार्फ डाले इला को आज पहली बार अमला ने ध्यान से देखा था। इला चुपचाप ऊपर नीचे देखती रही। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई नहीं आया तो वो इंतजार करने लगी। अमला जोर जोर से वॉचमैन वॉचमैन चिल्लाने लगी। इला समझ गई कि वो घबरा रही है। इला ने कहा, अमला 10-20 मिनट लगेंगे, कोई आ जाएगा, वॉचमैन तक आवाज नहीं जाएगी, घबराओ मत। पर अमला को तो जैसे पैनिक अटैक आ रहा था। वो चीखने लगी तो इला ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी, रिलैक्स, ऐसा हो जाता है, नई लिफ्ट है, ठीक हो जाएगी, इधर से कोई निकलेगा तो देख लेगा। अमला अचानक चुप हुई, इला को देखने लगी, कैसी शांत सी खड़ी है ये, जरा भी नहीं घबरा रही है, मेरे कंधे पर हाथ रखा। अमला को रोना आ गया, मुझे सफोकेशन हो रहा है, मेरा दम घुट रहा है। इला ने उसे गले लगा लिया, मुस्कुराई, कुछ नहीं हो रहा है, देखो चैनल से बाहर की हवा आ रही है, लिफ्ट पूरी तरह से बंद थोड़ी है। इला के स्नेह भरे स्पर्श से अमला को कुछ राहत मिली। प्रेम पूर्ण स्पर्श में बड़े से बड़े दुख को कम करने की ताकत होती है। तभी 10वीं फ्लोर के संजय गुप्ता ने उन दोनों को लिफ्ट में फंसे देखा और हैरान परेशान होकर बोले, मैं वॉचमैन को भेजता हूँ, आप दोनों बिल्कुल परेशान मत हो। संजय के जाते ही थोड़ी देर बाद सीढ़ियां चढ़ते हुए भागता हुआ सा वॉचमैन सुधीर आया। वॉचमैन को सब पहचानते ही हैं। वो बोला, संजय सर ने बताया तो लिफ्ट वाले को फोन करके पूछा था, उन्होंने बताया है कि उन्हें आने में टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे में वो लोग आकर ठीक कर पाएंगे मैम। 1.5-2 घंटा सुनकर अमला सुधीर पर गुस्सा होने लगी, लिफ्ट वालों को बोलो अभी आए फौरन, उनका दिमाग खराब हो गया है क्या, ये सुनकर भी कोई लिफ्ट में फंसा है, 2 घंटे बता रहे हैं। मैडम वो अंधेरी में है, उसने कहा वो निकल रहा है, जल्दी ही आ रहा है, आपको पानी दूं? सुधीर फिर बोला, दफा हो जाओ। अमला चिल्लाई, सुधीर डांट खा कर नीचे चला गया। अब आते जाते लोग थोड़ी देर रुकते, परेशानी समझते, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था। अमला ने चिढ़ते हुए बोला, अच्छा है मेरा बेटा स्कूल में है, उसके आने तक तो निकल ही जाएंगे। हाँ, इला बोली,

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की जीत। अब तक आपने सुना इला और आमिर ने इंटरकास्ट मैरिज की थी। ये बात उनके पड़ोस में रहने वाली अमला को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उन दोनों से नफरत करती थी। यहाँ तक कि त्योहारों पर जब इला उन्हें कुछ देने जाती तब भी वो बड़ा रूखा व्यवहार करती। एक दिन इला और अमला एक साथ लिफ्ट में फंस गए। अब आगे इला बेचैन सी लिफ्ट से बाहर देखती, गुस्से में कुछ बड़बड़ाती। इला ने अमला को कनखियों से देखा। उससे कम ही उम्र की थी अमला। इस टाइम कुर्ते और जीन्स में थी, बाल यूं ही लपेट रखे थे। देखने में सुंदर थी। उससे बात करने की गरज से यूं ही पूछ लिया, तुम कहाँ जा रही थी?
1: टेलर के पास।
0: यही टाइम मिलता है जब अर्नब स्कूल में होता है, ऐसे ही काम निपटाती हूँ। तुम कहाँ जा रही थी?
1: पार्लर।
0: मैं भी बच्चों के स्कूल के टाइम के हिसाब से ही अपना रूटीन रखती हूँ।
1: मैं क्या, सारी माँ यही करती हैं।
0: इला मुस्कुराई। अमला ने सोचा ये कितनी शांत रहती है, जब से हम लिफ्ट में फंसे हैं ये आराम से सब हैंडल कर रही है। उसने पूछ लिया, तुम्हें लिफ्ट में फंसने से दिक्कत नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही है? आराम से शांत खड़ी हो।
1: इला बड़ा प्यारा मुस्कुराई।
0: अमला को वो पहली बार अच्छी लगी। इला ने दोस्ताना लहजे में कहा, तुम्हारी बात का जवाब बाद में जरूर दूंगी, पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? अमला के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आए। क्या कहती, उसकी ऐसी सोच क्यों है, कैसे बताए? इला ने उसे कुछ दुविधा में देखा तो कहा, चलो कुछ ना कहो, चाहो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। अमला चुप रही, फिर कहा, थोड़ी देर नीचे ही बैठ जाएं, खड़े खड़े पैर दुखने लगेंगे। रुको, कोई आता है तो उससे बिछाने के लिए कुछ मांग लेंगे, अमला बोली। अमला और इला बीच बीच में अपना नेटवर्क भी चेक कर रही थीं। अमला अचानक बोली, मेरा नेटवर्क आया, जल्दी से किसी पड़ोसी से कुछ बिछाने के लिए मांग लो, इला बोली। अमला ने चौथी फ्लोर पर रहने वाली एक फ्रेंड शैली को फोन करके सब बात जल्दी से बता दी। वो फौरन भागी आई, कहा, ओह ये तो बड़ी परेशानी में फंस गई तुम दोनों, चलो ये लो चादर। कहती हुई लिफ्ट के बीच की डिजाइन से चादर दे दी, फिर पूछा, कुछ बिस्किट दूं?
1: नहीं, अभी नाश्ता किया ही था, कुछ नहीं चाहिए।
0: अच्छा, कुछ भी चाहिए तो मुझे फोन करते रहना, मैं सेक्रेटरी और चेयरमैन से बात करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई बुजुर्ग होता तो, ये गलत बात है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की जीत। अब तक आपने सुना इला और आमिर ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, इसी वजह से उनकी पड़ोसन अमला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन अमला और इला लिफ्ट में फंस गए। वहां पर उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। अब आगे अमला को फिर लिफ्ट वाले पर गुस्सा आ गया। इला चुप रही, शैली चली गई। अमला ने चादर बिछाई, कहा, बैठ जाओ, मुझे तो थकान होने लगी थी, मेरा तो वैसे भी बीपी हाई रहता है। इला उसके साथ बैठ गई। अमला ने फिर खुद ही बात शुरू की, मुझे पता है कि तुमने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर हमें बचपन से अपने आसपास ऐसी चीजें सुनने को देखने को मिलती हैं कि हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं और उसी के हिसाब से फिर व्यवहार भी करने लगते हैं। अमला ने बहुत ध्यान से इला को देखा। अब इला का स्नेहिल गंभीर चेहरा देखकर उसे लगा जैसे इला उसकी कोई सहेली है। अमला अंदर से पता नहीं कितना भरी हुई थी, कहने लगी, तुम लोगों से मैंने बहुत नफरत की, मुझे तुम लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर मैं क्या करूं, ये सब मेरे बस में नहीं था। इला को उस पर बहुत तरस आ रहा था। उसने अमला के हाथ पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर सोचती रही, फिर कहा, अमला, मैं सब समझ गई, तुम हम लोगों से नफरत करती हो, इसके पीछे का क्या कारण है ये समझना मुश्किल है भी नहीं। हमारे समाज में हर धर्म ने अपनी अपनी दीवार खड़ी कर रखी है। हम अपनी चारदीवारी में सीमित सोच के साथ जिए जा रहे हैं। दीवार के उस पार के लोगों को अपने से कमतर समझते हैं। ये दीवारें जब तक नहीं ढहेंगी, अमला का परिवार यूं ही इला के परिवार से नफरत करता रहेगा। अमला सांस रोके हुए इला को बोलते सुनती रही। इतने में कई लोगों के आने की आहटें आईं। दोनों खड़ी हो गईं। लिफ्ट का काम करने वाले लोग आ गए थे। लिफ्ट ठीक की गई और उन दोनों को बाहर निकाला गया। इला ने अपना फ्लैट खोलते हुए कहा, आज तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अच्छा हुआ लिफ्ट खराब हो गई। अमला कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा कर अपने फ्लैट में चली गई। शाम 7 बजे इला के फ्लैट की घंटी बजी। आमिर ने दरवाजा खोला। विजय, अमला और अर्णव

हाँ, पहले चाय फिर आज खाना भी खाकर जाएंगे। तुम भी थकी होगी, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ शॉर्टकट में बना लेना, पुलाव भी चलेगा। इला, आमिर, स्वरा और हर्षिल हैरानी से नए मेहमानों का मुंह देख रहे थे। बस इला जानती थी कि ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। जब आपस में बैठकर मन की बात की जाएगी तभी तो बात बनेगी ना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी प्यार की जीत। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: दिल के सूने आंगन को जो सुरों से सजा दे, रूठे हुए जज्बातों को एक बार फिर जगा दे। संगीत वो पावन जुबान है इस कायनात की, जो बिना कुछ बोले ही हर दर्द को मिटा दे। सांसों की लय में जब कोई साज बजता है, खामोश धड़कनों में भी फिर एक राग सजता है। शब्द कम पड़ जाते हैं हाले दिल कहने के लिए, तब संगीत ही रूह की आवाज बनकर बहता है। तब संगीत ही रूह की आवाज बनकर बहता है।
2: जिंदगी के शोर में जो अजब सा सुकून दे जाए, खोई हुई खुशियों को जो वापस मोड़ लाए, ये संगीत ही है जो तन्हाइयों का साथी बनकर आंखों की नमी को भी सुरों में मुस्काना सिखाए। सुर, ताल और शब्दों का ये वो हसीन संगम है जिसके बिना जिंदगी का हर एक रंग मध्यम है। जो डूब गया एक बार संगीत के समंदर में, उसकी रूह के लिए फिर हर मौसम खुशनुमा सा शबनम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए हैं एक खुशनुमा सा मौसम कह लें, शबनम कह लें, या फिर रात के सफर का वो जादू भरा नगमा कह लें। मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: लेकर के आए हैं एक नए संगीतकार, एक नए संगीत को सजाने वाली शाम को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रात के सफर को एक बहुत ही प्यारे संगीतकार के साथ। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

सलिल चौधरी ऐसे पहले संगीतज्ञ थे जिन्होंने 13 भाषाओं में संगीत दिया, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती और इसके सहित कई सारी भाषाओं में। उन्हें इसीलिए जाना जाता है कि भाषा कोई भी हो पर हर भाषा पर उनकी एक पकड़ और अपने शास्त्रीय संगीत के लिए उनका लगाव कुछ अलग ही है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को ही अपनी पूजा माना और हमेशा उनके गीतों में इसकी एक झलक भी हमने देखी है। सलिल चौधरी जी की बात करें तो वो हमेशा जमीन से जुड़ी हुई कहानियों में कुछ ना कुछ ढूंढ लिया करते थे। जमीन से जुड़ी हुई कहानियों का मतलब है कि एक बार एक ऐसी चीज हुई कि सलिल चौधरी जी जो थे वो अपने गांव में थे और वहां पर दो लोग जो थे वो अपनी 2 बीघा जमीन के लिए लड़ाई कर रहे थे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 2 बीघा जमीन के लिए उनके बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी। सलिल चौधरी जी ने जब उसे देखा तो उन्होंने अपनी एक फिल्म के लिए, जिसका नाम भी उन्होंने 2 बीघा जमीन ही रखा, जो कि 1953 में रिलीज हुई, उसकी कहानी को बिल्कुल उन्हीं के झगड़े को देखते हुए उन्होंने लिखा। तो कुछ ऐसा ही अंदाज था उनका कि वो हमेशा जिन चीजों को देखते थे, सुनते थे, उन्हें अपनी फिल्मों में और अपने संगीत में ढाल लिया करते थे। और कुछ अलग ही था उनका ऑरा, कुछ अलग ही था उनका जुनून, उनका नशा, उनके गीतों का नशा, जो बिल्कुल ही कुछ अलग था। तो आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक प्यारा संगीत।

कहा जाता है कि जो जादूगर होता है वो किसी न किसी कला के साथ में अपनी जादूगरी दिखाई देता है। बिल्कुल, संगीत को महसूस करने वाले लोग, संगीत को अपनाने वाले लोग कुछ यूं ही होते हैं, जिनके स्वरों में ऐसा जादू होता है कि उनकी आवाज हर किसी में फिट हो जाती है, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो वतन को समर्पित। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसा ही गीत जो कि सलिल जी की आवाज में बहुत ही प्यारा आज भी हम सभी के लफ्जों में है, ए मेरे वतन, ए मेरे प्यारे वतन। फिल्म काबुलीवाला 1961 में ये फिल्म आई थी। इनके पीछे भी एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है इस गीत के पीछे। जब ये गीत रिलीज हुआ था, जब ये गीत गाया गया था, एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। मन्ना डे द्वारा गाया गया यह गीत देशभक्ति भी आज भी लोगों को रुला देता है। इस गाने को बनाते समय सलिल दा खुद अपने देश और अपने घर असम के बागानों की यादों में खोए हुए थे। उन्होंने इस गाने में अफगानी संगीत यादों में इस तरीके से उसे पिरोया कि रबाब, वाद्य यंत्र और भारतीय शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया गया कि यह गाना हर उस व्यक्ति का राष्ट्रगान बन गया जो अपने घर से दूर रहता है, यानी कि सैनिक, हम और आप। आइए इस प्यारे से गीत को सुनेंगे, लेकिन एक गीत और है जो कि हम सभी को बहुत प्यारा है, कोई होता जिसको अपना कहते, फिल्म मेरे अपने जो कि 1971 में रिलीज हुई थी। इस गाने के पीछे भी एक छोटी सी याद है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये गाना किशोर कुमार के सबसे बेहतरीन उदास गानों यानी कि सैड सॉन्ग में से एक है। इस गाने के पीछे की कहानी यह है कि सलिल दा आम तौर पर गंभीर धुनों के लिए जाने जाते थे, जबकि किशोर कुमार अपने चुलबुली गायकी के लिए मशहूर थे। सलिल दा ने किशोर कुमार को बिना किसी बड़े वाद्य यंत्र के बिल्कुल शांत होकर गाने को कहा। फिर क्या था, किशोर कुमार ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि रिकॉर्डिंग के बाद स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक संगीतकार की आवाज में, दिल में, जहन में एक प्यारा सा, एक जादूगर वाला इंसान छिपा होता है जो अपनी आवाज के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से हर किसी को जीत लेता है। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को और हम फिर मिलते हैं आपको एक छोटे से इस गीत के बाद।

वो गाना तो आप सभी ने सुना होगा, आनंद का मशहूर गाना, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। सलिल दा ने पहली बार आके ये गाना दिया था। मन्ना डे को लगा कि वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन सलिल दा ने कहा जो जादू पहली बार आया है वो दोबारा नहीं आएगा। और उनकी ये बात कुछ अलग सी भी थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी किसी काम को हम पहली बार करते हैं तो पहली बार में वो कुछ अलग सा ही होता है। इसलिए सलिल दा का भी कहना यही था कि मुझे ये गाना बिना रीटेक के शूट करना है और मैं बिना रीटेक के शूट करके दिखाऊंगा। और उन्होंने दिखाया भी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जिनके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, उनकी अपनी बातों पर जुड़े रहने की और अड़े रहने की जो एक काबिलियत होती है ना, वो भी कुछ अलग होती है कि मतलब अगर ठान लिया है तो फिर तो हम करके ही रहेंगे। और कुछ ऐसे ही मानना हमारे सलिल दा का भी था, जिनका कहना था कि भाई अब कह दिया है तो अब तो मैं करके ही रहूंगा। एक किस्सा और बहुत मशहूर है कि आप जानते हैं, फिल्म मधुमती के गाने आ जा रे परदेसी की कंपोजिशन हो रही थी, जो कि इतनी खूबसूरत थी कि रिहर्सल के दौरान ही लता मंगेशकर जी बेहद तनाव में आ गईं। रिकॉर्डिंग रूम में ही कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इसे कैसे करूंगी, क्या करूंगी, किस तरीके से करूंगी। लेकिन जब सलिल दा ने उन्हें समझाया, उनसे बात की, तो उन्होंने तुरंत ही उस गाने को रिकॉर्ड कर लिया। उनका सारा डर, उनका सारा जो भी वो सोच रही थी, डर रही थी, घबरा रही थी, वो सब खत्म हो गया। तो कहते हैं ना कि हमें हमेशा हमारी लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, कोई तो चाहिए जो आपको आपकी जब भी आप डरें तो आपको मोटिवेट कर सके। और ऐसे ही स्टार्स को मोटिवेट करने वाले, हर किसी को आगे ले जाने वाले और सबके डर को अपने संगीत और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से खत्म करने वाले थे हमारे सलिल दा। तो आइए चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक प्यारा सा सॉन्ग।

बिल्कुल, ये मैं क्या सोच रही थी आपको पता है? मैं सोच रही थी कि हर उस इंसान को सम्मान पाने का अधिकार होता है जो पूरी शिद्दत से काम करता है, पूरे तत्परता से काम करता है, अपने देश को समर्पित, अपने लोगों के प्रति बहुत गंभीर प्यार और अपने काम को ही पूजा करने वाला इंसान। तो ऐसे इंसानों को पुरस्कार और सम्मान तो जरूर मिलना चाहिए। उनमें से ही एक सलिल चौधरी हैं, जिनके अद्भुत योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे पहली फिल्म जो कि मधुमती आई थी, उनके सदाबहार गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार भी फिल्म संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने जीता। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान के लिए एक सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। महाराष्ट्र का गौरव पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। अब आते हैं वो क्षण जो हर किसी के लिए जीवन में आता ही है, यानी कि जीवन का अंत। मरणोपरांत भी बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके क्रांतिकारी गानों और योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार ने उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा था। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसे हम आज भी देखते आ रहे हैं। आइए चलते एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर और सुनते हैं उनके प्यारे से नगमों को। मैंने

समसी। ये गाना तो आप सभी ने सुना होगा, सुना भी होगा और कभी कभी हम इस गाने पे झूमते भी हैं, क्योंकि भाई गाना ही कुछ ऐसा है, सुहाना सफर और उस पर मौसम हसी। तो मतलब सफर भी सुहाना है और मौसम भी हसीन है, तो फिर तो क्या ही कहना। तो चलिए अब जानते हैं कि इस गाने के पीछे की कहानी आखिर क्या है। तो इस गाने को गाया है मुकेश ने, और सलिलदा चाहते थे कि इस गाने में वो पूरी तरीके से ये दिखाएं कि हमारी जो मदर नेचर है वो कितनी खूबसूरत है। यानी कि अगर आप जाते हैं प्रकृति के बीच तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है और वो आपसे कितना कुछ कहती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। क्या है ना, हम इंसानों में एक क्वालिटी होती है, क्या होती है आपको पता है? मैं बताती हूँ, हम सिर्फ शोरगुल सुनना चाहते हैं, इतनी प्यारी सी मीठी सी डिसेंट सी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन सुनाने का काम इस गाने ने किया है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम में किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बजाय मुकेश जी को सीधा कहा कि आप माइक से थोड़ा दूर और पास खड़े होकर गाने गाएं, जिससे वो ऐसा लगे उसमें एक गूंज पैदा हो और ऐसा लगे कि वो हमारी नेचर से जुड़ी हुई है, जो आज भी हमारे कानों में मतलब ऐसे मिठास घोलती है ना कि उसके आगे आम की मिठास भी कम पड़ जाती है। तो कुछ ऐसे ही गाने हैं और कुछ ऐसी है इन गानों की मिठास। तो भाई हम भी खोना चाहते हैं ना इन गानों की मिठास में, आप खोना चाहते हैं या नहीं? मुझे तो लगता है खोना चाहते हैं। तो चलिए खोते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: ओ सजना बरखा बहार आई, भाई फिल्म परख। अगर आप फिल्म परख के इस गाने को याद करेंगे ना, तो बरखा आई या नहीं आई पर बहार तो जरूरी आ जाएगी। और बहार कहाँ आएगी पता है आपको? बहार आएगी आपके चेहरे पे, क्योंकि इतना प्यारा सा गाना अगर कोई मेरे सामने चलाएगा तो भाई मैं तो रोते रोते भी हंस दूं। तो चलिए जानते हैं कि ये गाना है क्या, क्या कहानी है और क्या जुड़ा हुआ है इस गाने में जो ये गाना इतना ज्यादा खूबसूरत है। तो ये गाना भारतीय सिनेमा में सबसे बेहतरीन बारिश के गानों में से एक है। सलिल दा ने इस गाने में सितार और संतूर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है जो बारिश की बूंदों के गिरने का एहसास हमें ऐसा कराता है ना कि ऐसा लगता है कि बस बारिश में ही खड़े हैं और बस बारिश ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस गाने को गाते समय उन्हें सचमुच ऐसा लगा जैसे वो बारिश के बीच खड़ी होकर भीग रही हों। तो आप भी करना चाहते हैं बारिश का एहसास? भाई देखिए गर्मियां बहुत ज्यादा है, अब इन गर्मियों में कौन नहीं करना चाहता है बारिश का एहसास? आप करना चाहते हैं, मुझे तो यहीं से बैठे बैठे ऐसा महसूस हो रहा है लिसनर्स कि आप करना चाहते हैं। तो चलिए इस प्यारे से गाने के साथ करते हैं भीगी भीगी भीनी भीनी प्यारी प्यारी बारिश का एहसास और खो जाते हैं इस प्यारे से गाने में।
1: ओ सजना

0: बिखरे जो स्वर अनगिनत उन्हें पिरोया साज में, हर एक लय हर एक ताल डूबी हो जैसे राज में। छोड़कर दुनिया की बातें संगीत की धुन में खो गया, पत्थर भी पिघल जाए ऐसा संगीतकार वो हो गया।
1: जब उंगलियां चलती हैं तारों पर तो जादू छाता है, हर एक गीत हर एक सुर सीधे दिल को छू जाता है। कभी धीमी सी गूंज कभी तूफान सा संगीत है, इस कला की साधना में ही छिपी उसकी हर जीत है। मंजिलें मिले न मिले उसे परवाह नहीं इस बात की, वो तो बस तलाश में है एक नई और मीठी रात की। धड़कनों को अपनी उसने संगीत का रूप दे दिया, दुनिया को जीने का एक नया सुरूर दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जो इंसान हमारे बीच न रह करके भी हमारी धड़कनों में धड़कते हैं, कहीं आवाज बनकर तो कहीं साँच बनकर और कहीं मीठी सी याद बनकर। सलिल जी ने भी हमारे संगीत को यूं पिरो दिया कि हमारी धड़कनों में उनका नाम आज भी कहीं ना कहीं वाजिब है। आइए अब हम लेते हैं आपसे विदा रात के सफर में भूले बिसरे गीत में। मैं हूं आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूं आरजे गुमसुम।
1: फिर मिलेंगे एक नए दौर और एक नए संगीतकार के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का